0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: अभी तो जरा ओढ़ो हूँ, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: RM2 Radio Musti in the mix. Radio Musti.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: सोमवार 18 मई की सुबह हो चुकी है और इस वक्त ठीक 5 बजे है।
4: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
0: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: भला आपको छोड़कर हम जाएंगे कहाँ. सो आपका स्वागत 5499-1294 पर आपके मैसेजेस के जरिए. नीतू का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें. सुबह के 5:04, इट्स योर राइज एंड शाइन रेडियो मस्ती के साथ इस समय आप जुड़े हुए हैं. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल माय डियर लिसनर्स. मंडे मॉर्निंग 18 मई की सुबह हो चुकी है. रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है. बस मौसम का असर पड़ने लगा है, हमारी आवाज़ भी थोड़ी सी ख़राब होने लगी है. बस आप अपना ख्याल रखिएगा. हैव प्लेंटी ऑफ लाइक विटामिन सी. अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कीजिएगा और आपके मूड को बूस्ट करने के लिए द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक एवरग्रीन सदाबहार गाने. सो नंबर तो आपको बता ही दिया है. सैंक कत नफ नफ दूज नफ कत. आपके नाम आपके अपनों के नाम पैगाम.

0: जिंदगी में अकेले आए हैं, जिंदगी से अकेले ही चले जाएंगे। बस बीच रास्ते में इतने सारे हमसफर मिल जाते हैं, कुछ अपने बन कर रह जाते हैं, कुछ बिछड़ भी जाते हैं। दैट्स लाइफ ना, आगे बढ़ते चले जाना है।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.

0: जी और महेंद्र कपूर की आवाजों में नई रोशनी फिल्म का सदाबहार गाना। ये नया दिन नई रोशनी आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: कुछ आपके मैसेजेस की ओर बढ़ते हैं। 5499129 for a very good morning आपको। नमस्ते, रंभा दाकोना from लापे पीटो एंड आपकी बहन माला मुरचोरिया को हैप्पी बर्थडे, जो रहती है पिचित रिविएरा, और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार एंड रेडियो मस्ती टीम की तरफ से, ढेर सारा प्यार आपको भी। गुड मॉर्निंग आपको, नमस्कार। ज्योति फ्रॉम शातु बिनागस, गाना आपके नाम आशनी रेखा सुरेखा माधव परिवार के लिए, साथ ही साथ ताबाडू फैमिली फ्रॉम गोश्तवा, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको, प्रणाम आपको। भाई यहाँ पर है सजादा फैमिली, सूरज शर्मा एंड आपके सभी डियर वंस के नाम, हाय अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। आयुष, धीरज, विदिशा, आश्विन, ज्योति, हरक परिवार, मौजार बैसे, हर हर महादेव आपको शुभ सोमवार। शीला जी है लेस्पेरेंस ट्रिब्यूशे, आपके नाम पूरे परिवार के लिए। यहाँ पर है कुमार एंड डेविशन फैमिली, थैंक यू। सुप्रभात आपको भी, अंजनी जी, आपके नाम पूरे परिवार के लिए। एंड मिस्टर टोनी फ्रॉम घोषवा कहते हैं, वन समवन डज समथिंग रॉन्ग, डोंट फॉरगेट ऑल द राइट्स दे डिड राइट। यस, ये तो है ज़िंदगी के फलसफाना, जब कभी कभी हम लोग अच्छाई करते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन एक गलती पर हम पूरी ज़िंदगी उनको याद करते हैं। तो जितना हो सके बुराइयों को भुलाकर अच्छाइयों पर ही फोकस करें। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती टीम, गुड मॉर्निंग अब्दुल, सारा बानू, हैव अ नाइस डे अहेड, एंड गुड मॉर्निंग नीतू। वेल, कैसे, मैं ठीक ठाक हूँ, बस मौसम का असर है, कुछ गला ख़राब थोड़ा हो रहा है, लेकिन आप ही अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, एंड आपके लिए सरोज, राजन, मोनिका, जय, पूनम, शिया एंड हाँ जी सैफ्रन यानी कि हल्दी वाला दूध वगैरह ये सब तो ले ही रहे हैं, आप ही अपना ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज मेरा बेटा आकाश सजना का बर्थडे है, 24 ईयर्स के हुए हैं, तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं पूरे परिवार एंड डियर वंस के नाम। वो भी थोड़े से बीमार है, गेट वेल सून एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे फ्रॉम मामा सरिता। भाई आदर्श, आपकी बहन आशिका, दादी है शारदा, चाचा मंगल, दादा सुरेश, राज, मोसेलमों से तौद्रे से पूरे परिवार की ओर से आपको ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: All right, आपके messages on 5499-1294 and यहाँ पर. All right, अगला गाना आपके लिए है पॉइंट डी लास्को से पापा ऋषि ममसीता और दादी है साबित निजल निष्ठी जश नक्ष गियाना राकेश दिशा आयुष सभी परिवार को अ वेरी गुड मॉर्निंग. साथ ही साथ यहाँ पर नमस्कार नीतू हर हर महादेव एंड आप हैं मीला रामदिकल मोता ब्लॉश से आपके सभी दोस्त पूरे परिवार के नाम. कैसे आकाश एंड मनसुख फैमिली फ्रॉम बाबू रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं. गुड मॉर्निंग और एमटी टीम विशिंग हैप्पी बर्थडे टू माय नीस अवनी फुलचंद. ये है रिया आंशी केशनी कविता बर्टन नपोज डिफ्लैक्स से पूरे परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं. प्लीज नेक्स्ट गाना गुजार टू पापा बलराम गंगवा मामा इंदो ओजबेल से और आप है कौन यहाँ पर आप है दुलारी चली पूरे परिवार के नाम.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: साथ देते रहिएगा, दिल से पुकारते रहेंगे आपके मैसेजेस के जरिए, एंड थोड़ी देर में आपका होरोस्कोप।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Masti.
1: चलिए जी शुरुआत करते हैं आपके साथ।
2: एरीज मेष राशि।
1: आज भागदौड़ और तनाव आपको थोड़ा थका सकते हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखना वो भी जरूरी है। किसी पुराने रोग को दोबारा उभरने से परेशानी बढ़ सकती है, दैट्स व्हाई सेहत को नजरअंदाज ना करें।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: ऑलराइट, आज का दिन खुशियों, मौज मस्ती और नई शुरुआतों से भरा रहेगा। आपकी क्रिएटिव सोच लोगों को आकर्षित करेगी और नए दोस्त भी बन सकते हैं। खर्च बढ़ने से बजट थोड़ा बिगड़ सकता है, इसलिए समझदारी जरूरी होगी। अविवाहित लोगों के जीवन में प्यार की नई दस्तक दिल को खुश कर सकती है।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज शब्दों पर नियंत्रण रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम में कही गई बात गलत समझी भी जा सकती है, इसलिए सोच समझकर बोलें। एंड प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले पूरी जांच पड़ताल के बाद ही ले। मन बार बार भटक सकता है, दैट्स व्हाई खुद को फोकस में रखने की पूरी कोशिश करें।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज सुख सुविधाओं और खुशियों में बढ़ोतरी आने के संकेत हैं। परिवार के लोग आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और दूर रहने वाले रिश्तेदार से कोई खुशखबरी, शुभ समाचार मिल सकता है।

0: है, मेहनत के दम पर सफलता आपके करीब आएगी।
1: लियो सिंह राशि,
0: राइट, यहाँ पर आज आपकी किस्मत आपके पक्ष में रह सकती है और मनचाहा लाभ मिलने के संकेत हैं। सेहत पर ध्यान देना जरूरी होगा, वही विद्यार्थियों को पढ़ाई में अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन बनाए रखना होगा। आपकी अच्छाई को लोग गलत समझ सकते हैं, लेकिन आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: मन की उलझनों को बड़ों के साथ साझा करने से राहत मिलेगी। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि दुर्घटना का योग भी बन रहा है। जीवन साथी के लिए खरीदारी की गई कोई खास चीज रिश्तों में मिठास बढ़ाएगी एंड परिवार आपके सम्मान में कोई खास सरप्राइज प्लान भी कर सकता है।
1: लीब्रा तुला राशि,
0: आज घर परिवार में खुशियों और शुभ कार्यों का माहौल बना रहेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और रुका हुआ धन मिलने से आपको राहत महसूस होगी। विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, बट आपकी समझदारी उन्हें शांत कर सकती है।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आपके दिमाग में नए और शानदार आइडियाज जन्म ले सकते हैं, जो बिजनेस में बड़ा फायदा दिला सकते हैं। विदेश से जुड़े व्यापार में अच्छी खबर मिलने की संभावना है। नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगी।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: वेल, आज का दिन मिला जुला असर देने वाला रहेगा। लाइफ पार्टनर किसी बात से नाराज हो सकते हैं, इसलिए रिश्तों में प्यार और समझदारी बनाए रखें। आय के मामलों में सतर्क रहना जरूरी है। स्टूडेंट्स को मानसिक तनाव से राहत मिलेगी और शिक्षकों को पूरा सहयोग मिलेगा।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज सकारात्मक बदलाव आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा भर सकते हैं। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलने के संकेत हैं। आपकी मेहनत रुके हुए कामों को पूरा करने में मदद करेगी। लाइफस्टाइल में सुधार लाने की कोशिश आपको सफल दिलाएगी एंड सेहत को नजरअंदाज ना करें।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज का दिन उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ सकता है। यात्रा या घूमने के दौरान कोई खास जानकारी आपको मिल सकती है, जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगी। कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति बन सकती है, दैट्स व्हाई धैर्य और समझदारी से काम लें।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: फाइनली आज बिजनेस में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लेने पर रास्ते निकल आएंगे। दूसरों की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। सरकारी कामों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है एंड बड़ों की सेहत, अपनी सेहत, खासकर आंखों से जुड़ी समस्या आपको चिंता दे सकती है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। विशिंग यू ऑल अ लवली डे अहेड एंड बेस्ट ऑफ लक।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: छह बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार. तब तक लेट मी विश अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी बर्थडे. जन्मदिन की बधाइयां आपको माला जी फ्रॉम पिट्स त्रिविये और रंभा पीतों से भाई विजय, बहन ललिता, ओ माँ जीजू सब परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार. नेक्स्ट गाना आपके नाम भी है सरोजनी नेगी ओजुल नायडू प्रीति विवेश योगेश अपादू एंड डियर वंस अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. यहाँ पर है बलजो परिवार प्लेंदी पपाय से स्पेशली अनीता राकेश अनिकेश सिद्धिता एंड सब डियर वंस के नाम. ओम नमः शिवाय आपको भी सोनम भोला आपकी माँ भाई बहन एंड आपकी बहन आ रही है कल मॉरिशस तो चलिए इन एडवांस उनको वेलकम कहेंगे.

0: सुदेन संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता, नमस्कार।
1: नमस्कार। सोमवार 18 मई 2026 के इस प्रातकालीन पहले फ्लैश न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। कल रात कोंटुगेल में हिंसा की आग भड़क गई। गोलीबारी और आगजनी से पूरा इलाका दहल गया। क्वाड बाइक को लेकर विवाद ने वहां पर खूनी रूप ले लिया और हालात संभालने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती रही। और एमएमएम के भीतर सोशल मीडिया को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। फेसबुक पेज को लेकर गजा उतीम और जुआना बेगौजी आमने सामने हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा भी गर्म हो गई है। गंगा तालाब में इटालियन पर्यटकों से जुड़ी एक घटना के बाद स्थल की पवित्रता के सम्मान को लेकर बहस फिर से शुरू हो गई है। पर्यटकों के पहनावे और उनके व्यवहार को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने चिंता व्यक्त की। और आईबीएल तथा ईओ ग्रुप ने वित्तीय वर्ष 2026 के पहले 9 महीनों में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है, जो देश की निजी क्षेत्र की आर्थिक मजबूती और वृद्धि का संकेत माना जा रहा है। मॉरिशस ने ऑनलाइन व्यापार से जुड़ी अवैध तस्करी पर कार्रवाई सख्त करते हुए बढ़ती पार्सलों की निगरानी के लिए दक्षिण कोरिया के सीमा शुल्क विभाग से सहयोग लेकर सीमा नियंत्रण और प्रतिबंधित वस्तुओं की रोकथाम को मजबूत करने का फैसला किया है। विदेश में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों के कॉन्सुलेट चुनावों की प्रचार मुहिम शुरू हो गई है, जिसमें मॉरिशस सेशल्स क्षेत्र में 5 सूचियां मुकाबले में हैं और मतदान 31 मई को लिसे दी मस्काइन में होगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आगामी स्वीडन यात्रा को लेकर व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से स्वदेश नेताओं, उद्योग जगत और भारतीय समुदाय में उत्साह है, जहां गोटेनबर्ग में एआई, ग्रीन ट्रांजिशन और उन्नत निर्माण पर उच्च स्तरीय वार्ताएं निर्धारित हैं। वहीं लुइजियाना के रिपब्लिकन सेनेट मुकाबले में ट्रंप समर्थित उम्मीदवारों ने बड़ा उलटफेर करते हुए मौजूदा सेनेटर बिल कैसिडी को पहले चरण में बाहर कर दिया है और अब जूलिया लेटवो जॉन फ्लेमिंग के बीच रन ऑफ होगा, जिसका

0: चैता आम चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार से भिड़ेगा। तो इसके साथ ये पहला फ्लैश समाप्त हो चला। बढ़ते हैं अब हम मौसम के हाल की ओर। मौसम का हाल आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा का बहाव है और अस्थिर दबाव से जुड़े बादल हमारे स्थानीय मौसम को आज शाम से प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आमतौर पर सुबह के समय और रात और दिन के दौरान मौसम सुहाना होगा। शाम के समय तथा रात में बादल विकसित होंगे, विशेषकर पूर्वी और ऊंचाइयों पर, और थोड़ी वर्षा होगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 3 मीटर के जुवार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है, विशेषकर पश्चिम और दक्षिण लगूनों में। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान ऊंचाइयों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:32 पर और सूर्यास्त शाम 5:40 पर। इसके साथ लिए फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। हमारी और आपकी मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.
2: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
3: Radio Musti.

कोई और आए ना आए, लेकिन हम तो सुबह शाम रात एनी टाइम चले आते हैं आपके दिल में दस्तक देने। थैंक यू सो मच हमारे हम सफर बनने के लिए। इट्स ऑलरेडी 10 मिनट्स पास 6 इन द मॉर्निंग। 18 मई की सुबह हो चुकी है। वंस अगेन प्रणाम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। रियली होप आपकी मॉर्निंग की शुरुआत बेहतर से बेहतरीन तरीके से हो चुकी है। एंड बों को आज टू ऑल दोज जो रास्ते पर हैं, काम पर जा रहे हैं, एंड अगर आप ट्रैफिक जाम को अवॉइड करना चाहें तो एटलीस्ट 30 मिनट्स तो बनता ही है भाई, आप निकल जाओ। लेकिन उससे पहले हैव योर ब्रेकफास्ट, पेट भर के घर से निकलेंगे तो एटलीस्ट फोकस कर पाएंगे, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ पाएंगे। 5499 1294 पर छोगालाल परिवार, बेस्ट विशेज आपको फ्रॉम गुड लेंस। एंड यहाँ पर है गुड मॉर्निंग हर हर महादेव आपको प्लेंदी पपाई से, प्रेमिला जी आपके पति रंजीत एंड पूरे परिवार के नाम। आपका नाम जोड़े जाते हैं बदवा गब्बिदेसी एंड फैमिली अनुषा के लिए। एंड धनेश्वर जी फ्रॉम बॉम्बू, पत्नी सुनीता, संजीव, निशा देव, रेखा दवे परिवार के नाम। गुड मॉर्निंग।

0: आपके मैसेजेस ना 5499 1294 पर, तो आपकी सूरत भी, आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं और आपके दिल के अल्फाज भी। थैंक यू सो मच यहाँ पर साथ देने के लिए। थैंक यू विशाल, आप ड्राइव कर रहे हो फ्रॉम गुडलैंड्स टू फ्लैक, सो ड्राइव केयरफुली, ड्राइव सेफली, आपकी वाइफ माधवी की ओर से। थर्ड बर्थडे सेलिब्रेशन आज है।
1: रेडियो मस्ती।
2: अपना बिजनेस शुरू करना है या अपने करंट बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो याद रखिए SBM SME बैंकिंग सिर्फ बैंक नहीं, आपका ग्रोथ पार्टनर है। अब खर्चों को अपनी तरक्की में रुकावट ना बनने दे, अपने लोन्स को रीफाइनेंस कीजिए और अपने खर्चों पर बेटर कंट्रोल पाइए, या फिर अपने स्टार्टअप ड्रीम को आज ही एक्शन में बदलिए। चाहे इक्विपमेंट फाइनेंसिंग हो, कैश फ्लो सपोर्ट हो या एक्सपेंशन प्लान्स, हमारे कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस और एक्सपर्ट सपोर्ट के साथ आपका बिजनेस उड़ान भरेगा। आज ही कॉल कीजिए ऑन 2070111 या विजिट कीजिए sbmgroup.mu। SBM SME बैंकिंग, साथ है तो ग्रोथ है। ये ऑफर कुछ शर्तों के साथ आता है। SBM बैंक ऑफ मॉरिशस के लाइसेंस के तहत ऑपरेट करता है।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
0: सुबह कहाँ थी?

Saviana Lashamot of Gombe, happy birthday to you. Blessings to you from Ranish, Riva, Ravish, Prisha, Lavsha and dear ones. 5499-1294 पर आपके messages का इंतजार. Thank you so much. Good morning, जी. Good morning. आप है कौन यहाँ पर? ओ, आप ही हो कविता. कैसी है? ठीक ठाक? साथी.

जुदा तो होंगे नहीं, बस थोड़ी देर के लिए हम हाँ डेफिनेटली आपसे अलग हो रही है, क्योंकि 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन। साथ दीजिएगा।

सोमवार 18 मई के प्रातकालीन पहले समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कल कौतुगल में हिंसा की आग, गोलीबारी और आगजनी से दहला इलाका। क्वाडबाई विभाग ने लिया वहां खूनी रूप। हालात संभालने के लिए भारी पुलिस तैनात। एमएमएम के भीतर सोशल मीडिया को लेकर छिड़ा नया विवाद। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। फेसबुक पेज को लेकर गिजाउतीम और जुआना बेगौजे आमने सामने। राजनीतिक हलकों में चर्चा गर्म। मॉरिशस की कला जगत में शोक छाया हुआ है। प्रसिद्ध चित्रकार मूर्ति नगालिंगम का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे अपने पीछे छोड़ गई कला और संस्कृति की अमिट विरासत। गंगातलाव में इटालियन पर्यटकों से जुड़ी एक घटना के बाद स्थल की पवित्रता के सम्मान को लेकर बहस फिर शुरू हो गई है। पर्यटकों के पहनावे और उनके व्यवहार को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने चिंता व्यक्त की। और आईबीएल तथा ईओ ग्रुप ने वित्तीय वर्ष 2026 के पहले 9 महीनों में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है, जो देश की निजी क्षेत्र की आर्थिक मजबूती और वृद्धि का संकेत माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नेदरलैंड दौरा सफल रहा। कई अहम समझौतों पर सहमति। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देती हैं। कौतुगल में कल शाम एक स्वास्थ्य ट्रक हिंसा और अफरा तफरी का केंद्र बन गया। इस इलाके में उस समय भारी तनाव फैल गया जब हिंसक झड़पों ने पूरे क्षेत्र को दहशत में डाल दिया। वहां मौजूद लोगों के अनुसार सड़क पर कई धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दी, जिन्हें गोली चलने की आवाज बताया जा रहा है। तनाव की मुख्य वजह इस वॉकिंग ट्रक पर क्वाड बाइक की मौजूदगी थी, जिसका स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया। पहले कहा सुनी हुई, फिर मारपीट शुरू हो गई और देखते ही देखते स्थिति बेहद हिंसक हो गई। झड़प के दौरान तलवार और बंदूक का इस्तेमाल किया गया। एक वाहन को आग के हवाले भी कर दिया गया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

0: जिसमें स्पेशल सपोर्ट यूनिट की एलिट टीमों को भी शामिल किया गया। कल रात 9 बजे तक पुलिस इलाके में शांति बनाए रखने और हालात काबू करने की कोशिश में जुटी हुई थी। गोलीबारी और तोड़फोड़ की इन गंभीर घटनाओं की जांच जारी है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके। हमारे संवाददाता प्रणव बिहारी ने कल रात कौतुगल के ग्राम परिषद सदस्यों से बात की। विजयानंद तिलोकी को सुनते हैं। इसे एक राजनीतिक जुबानी जंग कहा जा सकता है। कल रात गिजाउद्दीन ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि एमएम का फेसबुक पेज अब पुल बेरांजे के फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस का पेज बन गया है। उन्होंने कहा, जुल्फिन कोके नुपास फेसबुक, यानी उन्होंने हमारा फेसबुक पेज चुराया है। एमएमएम के अध्यक्ष ने भी इस दावे का समर्थन करते हुए फेसबुक का एक स्क्रीनशॉट साझा किया जिसमें पेज का नाम मूवमेंट मिलिटेंट मॉरिशियन से बदलकर फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस और एडमिन के रूप में जोआना बेरांजे का नाम दिखाई दे रहा था। हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ कि ये एमएमएम का आधिकारिक फेसबुक पेज नहीं बल्कि एक निजी समूह था। इसके जवाब में जोआना बेरांजे ने भी तंज कसते हुए कहा कि गिजाउद्दीन को दोनों पेजों के बीच फर्क समझना चाहिए था। उन्होंने अपनी निजी फेसबुक पोस्ट में लिखा, जुटपाज एमएमएम ओंको ऐता लिकापाव अगत प्लोगे। फिलहाल ये मामला राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। मॉरिशस का कला जगत शोक में डूब गया है। प्रसिद्ध चित्रकार मूर्ति नागालिंगम का एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद कल 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मूर्ति नागालिंगम केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि कला और संस्कृति के सशक्त निर्माता थे। वे एमजीआई के फाइन आर्ट्स स्कूल के पूर्व निदेशक थे और 43 वर्ष पहले स्थापित किए गए मशहूर सालों दो में के संस्थापक भी थे। उन्होंने पोस्ट कॉलोनियल कला को आम जनता तक पहुंचाकर देश की सांस्कृतिक इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। हाल ही में उन्हें कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की सम्मान से नवाजा गया था। उन्होंने सादगी भरा जीवन जिया और अपने पीछे अनुशासन तथा भावनाओं से प्रेरित एक समृद्ध कलात्मक विरासत छोड़ गए। मूर्ति नागालिंगम का अंतिम संस्कार आज दोपहर किया जाएगा। अंतिम यात्रा दोपहर 3:30 बजे एलियंसन सेंटर से निकलेगी। दो बड़े समूह और हर साल बढ़ते हुए प्रभावशाली आंकड़े। आईबीएल और ईआर ग्रुप ने अपने वित्तीय वर्ष के पहले 9 वित्तीय महीनों के परिणाम सार्वजनिक किए हैं जो 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए। दोनों ही मामलों में स्पष्ट और मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। ये दोनों स्थानीय और क्षेत्रीय निजी क्षेत्र के बड़े समूह हैं जो वैश्विक अस्थिरता, भू राजनीतिक तनाव और व्यापार युद्ध जैसी चुनौतियों के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ रही है। इन दोनों समूहों के पास मिलकर 53,000 से अधिक कर्मचारी हैं और वे कई दर्जन देशों में सक्रिय हैं। उनके परिणाम केवल आंकड़े नहीं माने जा रहे हैं बल्कि इन्हें देश की आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण संकेतक यानी थर्मोमीटर और बारोमीटर कहा जा रहा है। इस पर प्रस्तुत है प्रणव बिहारी की रिपोर्ट पर यह विवरण।
1: आईबीएल ने अपने वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों में 94.8 बिलियन रुपए का कारोबार दर्ज किया है जो 15% की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी का परिचालन लाभ भी 25% बढ़कर 7.1 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है। समूह के सभी प्रमुख क्षेत्रों ने इस वृद्धि में योगदान दिया है जिनमें रिटेल क्षेत्र शामिल है जिसमें केनिया की नेवास और मॉरिशस की विनर्स श्रृंखला प्रमुख है। औद्योगिक क्षेत्र में विशेष रूप से जहाज निर्माण ने अच्छा प्रदर्शन किया है जबकि सेवाओं के क्षेत्र में लक्स होटल्स में ऑक्यूपेंसी दर में सुधार दर्ज किया गया है। कंपनी ने अपने कर्ज ढांचे में भी सुधार किया है जहां शुद्ध कर्ज और EBDTA का अनुपात 3.8 से घटकर 2.8 हो गया है। दूसरी ओर ईओ

0: ग्रुप ने 22% की वृद्धि के साथ 3.8 बिलियन रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। इस वृद्धि में होटल क्षेत्र का अहम योगदान रहा है, जहां लाभ 43% तक बढ़ा है। हालांकि समूह का कुल कारोबार स्थिर रहते हुए 34.3 बिलियन रुपए पर बना रहा। कंपनी ने क्षेत्रीय विस्तार को जारी रखते हुए नैरोबी में अपनी मौजूदगी मजबूत की है और जांजिबा में एक 5-स्टार होटल के अधिग्रहण की योजना की पुष्टि की है। वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर 1.38 रुपया का डिविडेंड घोषित किया है। दोनों समूहों ने अपने वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही को लेकर भरोसा जताया है। ईआर ग्रुप का शेयर मूल्य 19.90 रुपए और IBL का 26 रुपए दर्ज किया गया है। गंगा तालाब में इटालियन पर्यटकों के एक समूह से जुड़ी घटना के बाद स्थल की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा के सम्मान को लेकर बहस तेज हो गई है। विशेष रूप से पर्यटकों के पहनावे और उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारी सहयोगी निर्मा नारायण रेड्डी ने मौके पर पहुंचकर श्रद्धालुओं, आगंतुकों और पर्यटक गाइड्स की प्रतिक्रिया ली।
1: गंगा तालाब आस्था, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमुख प्रतीक, जहां हर दिन बड़ी संख्या में स्थानीय और विदेशी श्रद्धालु तथा पर्यटक पहुंचते हैं। लेकिन हाल ही में इटली से आए एक पर्यटक पर हुए हमले के बाद गंगा तालाब के पवित्र स्वरूप और वहां सम्मानजनक व्यवहार को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है। पहनावे, आचरण और कुछ पर्यटकों में जागरूकता की कमी जैसे मुद्दे अब चर्चा के केंद्र में है।
2: Les jambes, si possible, être en tenue ben, correcte, tout simplement, respecter le lieu. Hein.
3: Yeah, but I think like this is the closest religion to my religion. It's like where I find the peace when I go visit the place. It's super nice.
4: C'est que j'ai conseillé à mes amis de s'habiller convenablement et aussi je leur ai dit de foutre les chaussures avant de rentrer à l'intérieur.
1: गंगा तालाब ले जाने से पहले पर्यटकों को इस पवित्र स्थल के नियमों, मर्यादित पहनावे और इसके धार्मिक महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है। कुछ मामलों में अनुचित पहनावे वाले पर्यटकों को पहले उपयुक्त वस्त्र उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि स्थल की गरिमा बनी रहे।
5: Caraval pour un affaire, soit si nous pouvons passer le magasin, soit acheter un linge, soit couvrir.
6: Nous devons respecter. Ici, c'est interdit. Manger, même non-veg et l'alcool aussi. Nous, tout le temps, nous guidons nos clients.
1: गंगा तालाब मॉरिशस की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां हर वर्ष बड़ी संख्या में स्थानीय और विदेशी लोग पहुंचते हैं। लेकिन हालिया घटना के बाद इस पवित्र स्थल की गरिमा, सम्मान और जागरूकता को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है।
0: विवरण आस्था गोविंदमन की रही। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। ऑनलाइन व्यापार से जुड़े अवैध तस्करी नेटवर्क के खिलाफ मॉरिशस ने अपनी कार्रवाई को और मजबूत कर दिया है। इंटरनेट पर खरीदारी में तेज बढ़ोतरी और देश में आने वाले पार्सल्स की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए अब मॉरिशस को दक्षिण कोरियाई सीमा शुल्क विभाग की विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। इस सहयोग का उद्देश्य जांच और नियंत्रण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना तथा प्रतिबंधित उत्पादों की बेहतर पहचान सुनिश्चित करना है। इस पर प्रस्तुत है संतना पोंसुनु की रिपोर्ट पर आस्था गोविंदमन का विवरण।
1: ऑनलाइन खरीदारी के तेजी से बढ़ते चलन के साथ मॉरिशस में अब तस्करी और अवैध कारोबार के नए खतरे भी बढ़ने लगे हैं। हर दिन 4 से 5 हजार पार्सल देश में पहुंच रहे हैं और इसी बढ़ते दबाव के बीच नशीले पदार्थों, हथियारों और प्रतिबंधित सामान की तस्करी को रोकना अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में पोर्टलुई में जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर दामरी, दक्षिण कोरिया कस्टम सर्विस के प्रतिनिधियों और MRA के महानिदेशक रोहित रामनवास के बीच एक अहम बैठक लगाई गई, जहां निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने, खतरा पहचान प्रणाली को आधुनिक करने और पार्सलों की जांच के लिए नई टेक्निक अपनाने पर चर्चा की गई। अधिकारियों के अनुसार बढ़ते ऑनलाइन व्यापार के साथ सीमा शुल्क विभाग को अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क रहना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में आने वाले पार्सलों के बीच अवैध सामान छिपाकर भेजे जाने का खतरा भी बढ़ रहा है। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी पहले से ही अधिक सक्षम स्कैनिंग सिस्टम्स पर काम कर रही है ताकि ड्रग्स, हथियारों और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की पहचान और तेजी से की जा सके। दक्षिण कोरिया के साथ यह सहयोग मॉरिशस की सुरक्षा और निगरानी क्षमता को और मजबूत

0: मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
1: आज सोमवार 18 मई से देश विदेश में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों के कौंसुलेट चुनावों के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत हो गई है। ये मतदान 31 मई को लिसे दे मस्कारेन में आयोजित किया जाएगा। मॉरिशस और सेशल्स क्षेत्र के लिए कुल 5 सूचियों में 7-7 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन सूचियों में से एक उम्मीदवार शकील अली महमूद की अगुवाई वाली रासेंब्लेमेंट डी पैट्रियट दे मॉरिस ए दे सेशेल्स सूची विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर रही है। ये सूची स्पष्ट रूप से मारीन लुपेन और जोर्डन बर्देला के रासेंब्लेमेंट नेशनल द्वारा समर्थित बताई जा रही है। शकील अली महमूद को सुनते हैं।
2: J'ai constaté en fait pour moi une aberration. Quand je regarde les autres listes, on parle beaucoup de candidats indépendants, d'élections plutôt apolitiques, etc. Alors qu'il y a des liens directs avec la politique. Et du coup, moi, ça se passe bien parce que ben on a échangé, on a un discours de vérité. On fait pas la politique de l'autruche. Il faut pas confondre le Front National de Jean-Marie Le Pen avec le Rassemblement National de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et déjà, est-ce que vous connaissez d'autres partis pour lesquels la fille a mis dehors son propre père? Ça, c'était un message fort. Pour dire, ben non, moi je ne suis pas du tout dans cette phase-là. Et elle s'est battue depuis toujours pour les Français et l'ensemble des Français. Il faut arrêter, on va dire, avec la diabolisation du RN. Force est de constater que les villes qui sont gérées par le RN ben, sont bien gérées, qu'elles ont été réélues.
1: अन्य खबरों में, सर्दी की शुरुआत के साथ ही मॉरिशस में ठंड का असर महसूस किया जाने लगा है और इसका प्रभाव केवल तापमान तक सीमित नहीं, देश में तीव्र श्वसन संक्रमण के मामलों में चिंताजनक वृद्धि दर्ज की गई है। 4 से 10 मई के बीच 3,400 से अधिक मामले सामने आए, जबकि उससे पहले सप्ताह में ये संख्या लगभग 3,000 थी। ये वृद्धि स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। डॉक्टर फाजिल कुदाबकस के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और कई मौसमी वायरसों के प्रसार के कारण ये प्रवृत्ति और बढ़ सकती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पहले फ्लू होना किसी व्यक्ति को नई संक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित नहीं करता, क्योंकि इस समय कई प्रकार के वायरस सक्रिय हैं जिससे आबादी अभी भी जोखिम में है। डॉक्टर फाजिल कुदाबकस ने स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी। सुनते हैं रजनी बेकर के विवरण के साथ।
3: डॉक्टर फाजिल कुदाबकस ने कहा, सर्दी जुकाम के कई वायरस हैं, H1N1, H3N2। अगर किसी व्यक्ति ने एक वायरस से बचाव कर लिया है, टीका लगवाया है, संभवतः एक अन्य वायरस से प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं। जब सर्दी हो जाती है तो टीका नहीं लगवाया जा सकता। एक दो सप्ताह बाद जब स्वस्थ हो जाए तब वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जब उसके डॉक्टर ने कहा कि वो टीका लगवा सकता है तब ऐसा कर सकता है। इससे व्यक्ति अन्य वायरस से सुरक्षित रहेगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि चिकुनगुनिया के मामले भी फैल रहे हैं। अतः अगर किसी व्यक्ति को चिकुनगुनिया है, सर्दी है, तो अच्छा नहीं है। इन दोनों बीमारियों से प्रभावित हो सकते हैं, परेशानियां भी हो सकती हैं। अतः सर्दी जुकाम से बचने के लिए टीका लगवाना चाहिए, तो इससे हमें मदद मिलेगी।
1: जैसा कि आपने सुना, फ्लू और मौसमी संक्रमणों से बचाव के लिए टीकाकरण को सबसे प्रभावी उपायों में से एक माना जाता है। हालांकि विशेषज्ञों ने यह भी स्पष्ट किया कि टीका सही समय पर लगवाना जरूरी है, यानी बीमारी के लक्षण दिखने से पहले न कि बाद में। टीकाकरण के साथ साथ कई सरल दैनिक आदतें भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकती है और संक्रमण के जोखिम को कम कर सकती है। इनमें संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, नियमित पानी का सेवन और एक स्वस्थ जीवन शैली शामिल है। इस पर ज्यादा जानकारी न्यूट्रिशनिस्ट वंदना गजाधर दे रही है रजनी बेकर के विवरण के साथ।
4: Quand nous mangeons bien équilibré et varié avec beaucoup de fruits et des légumes de différentes couleurs avec
3: nutritionist Vandana Gajada ne kaha jab hum theek se khate hain santulit bhojan karte hain alag alag rang ke phal evam sabziyan khate hain to protein se bharpur khadya padarthon ka bhi sevan karte hain to in sab se hame vitamin C zinc aadi prapt hota hai hamari pratirodhak kshamta mazboot hoti hai isse bhari sankhya mein aur achhi kism ke immune cells ka होते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि नींद बहुत जरूरी है। इससे हम आराम करते हैं, हमारे शरीर को आराम मिलता है, सेल्स भी फिर से मजबूत होते हैं। इससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मदद मिलती है। इसके अलावा व्यायाम से भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अतः संतुलित भोजन

0: करना, अच्छी तरह से सोना और व्यायाम करना आवश्यक है।
1: और उच्च स्तर की गोपनीयता के लिए प्रसिद्ध मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीग्राम का मॉरिशस में कुछ लोग कथित तौर पर अवैध गतिविधियों के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्लेटफॉर्म पर कई निजी समूह सक्रिय हैं जिनमें हजारों सदस्य शामिल हो सकते हैं और जहां अश्लील तस्वीरें तथा वीडियो साझा की जाती हैं। कुछ आरोपों के मुताबिक इन समूहों में मॉरिशस की महिलाओं और यहां तक कि नाबालिगों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री भी प्रसारित की जा रही है। इन समूहों में प्रवेश के लिए संचालकों द्वारा 500 से 2000 रुपए तक का मासिक शुल्क मांगा जाता है, जबकि पेमेंट की व्यवस्था इस तरह की गई है कि बिना सीधे बैंक कार्ड लेन देन के रकम प्राप्त की जा सके। इसी बीच गुरुवार को एक नाबालिग लड़की ने अपने पूर्व साथी पर टेलीग्राम पर उसकी निजी तस्वीरें बेचने का आरोप लगाया। हालांकि 25 वर्षीय युवक ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह इसके सबूत देखना चाहता है। अद्रिये वाले की रिपोर्ट पर आस्था गोबिन का विवरण।
2: मोबाइल पर इस्तेमाल होने वाला टेलीग्राम अब सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं रह गया। मॉरिशस में इस एप्लीकेशन पर चल रहे कुछ निजी ग्रुप्स को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। आरोप हैं कि इसकी गोपनीयता व्यवस्था और पहचान छिपाने की सुविधा का गलत इस्तेमाल कर निजी और अश्लील तस्वीरों तथा वीडियो का अवैध कारोबार चलाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ ग्रुप्स बेहद संगठित तरीके से संचालित किए जाते हैं। पहले सार्वजनिक ग्रुप्स में प्रचार संदेश या धुंधला वीडियो साझा कर लोगों को आकर्षित किया जा रहा है। इसके बाद इच्छुक लोगों को निजी भुगतान वाले ग्रुप्स में शामिल होने का निमंत्रण दिया जाता है। इन ग्रुप्स में प्रवेश के लिए 500 से 2000 रुपए तक मासिक शुल्क लिया जाता है। भुगतान के लिए कार्डलेस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें व्यक्ति बैंक खाते से रकम भेजकर एक विशेष कोड साझा करता है और उसी कोड के जरिए दूसरा व्यक्ति ATM से पैसा निकाल लेता है। कुछ मामलों में पूर्व साथी की निजी तस्वीरें साझा कर मुफ्त प्रवेश या पैसों के बदले कंटेंट उपलब्ध कराने के आरोप भी सामने आए हैं। इसी मामले से जुड़े एक घटनाक्रम में गुरुवार को एक नाबालिग लड़की ने अपने पूर्व साथी पर आरोप लगाया है कि उसकी निजी तस्वीरें टेलीग्राम ग्रुप्स पर बेची गईं। हालांकि 25 वर्षीय युवक ने इन आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया और आरोपों के समर्थन में सबूत मांगे हैं।
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नेदरलैंड दौरा रविवार को संपन्न हो गया। दोनों देशों के बीच 17 महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी। रक्षा, व्यापार, ग्रीन हाइड्रोजन और टेक्निक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। भारत और नेदरलैंड ने संबंधों को नई रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाने पर जोर दिया। दौरे को भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। बढ़ते मौसम के हाल की ओर। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा का बहाव है। अस्थिर बादलों से जुड़े बादल हमारे स्थानीय मौसम को आज शाम से प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। सुबह के समय और दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। शाम के समय और रात के दौरान विशेषकर पूर्वी और ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और वर्षा होगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 3 मीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है, विशेषकर पश्चिम और दक्षिण लगूनों में। तापमान, अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:32 पर और सूर्यास्त शाम 5:40 पर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार व फ्रेंच डेस्क का सहयोग मिला है तथा कंसल पर हमारे सहयोगी कादर का भी, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए।

0: बिगन लेन कथो कोको में, बिगन लेन कथो कोको में 58 साल लक्की 58 ईयर्स ओल्ड के श्री संजीव कुमार सुबनुत, श्री संजीव कुमार सुबनुत जिन्हें सनातन के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज 2 बजे उनकी माँ प्रभावती सुबनुत के घर कथकोको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इस रोज की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टूडिया 2 PM। Avenue Liston, Quatre-Bornes में, Avenue Liston, Quatre-Bornes में 91 साल के 91 ईयर्स ओल्ड के श्री महेंद्र परसान, श्री महेंद्र परसान जो पहले पुलिस सर्जन थे और जिन्हें विष्णु सेजों महाज के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टिडी एट 1 PM। रॉयल रोड बुबासें में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड की श्री न्याना प्रगासा मूर्ति नागालिंगम, श्री न्याना प्रगासा मूर्ति नागालिंगम जो पहले MGI के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और जिन्हें सनराज के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे और कस्कादेल बोबासें के रहने वाले थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3:30 बजे लाशा पेलाओ दौतिलियन सन बोबासें से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टू डियर हाफ पॉस 3 PM। जगनॉथ रोड रिविया जोरोंपो में, जगनॉथ रोड रिविया जोरोंपो में 59 साल की 59 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धुरी मदा रामदास, श्रीमती धुरी मदा रामदास जिन्हें चिमन के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, पैदाशी नाम पांचू, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12:30 बजे उनके बेटे संजू रामदास के घर रिविया चौंपो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टू डी एट हाफ पॉस नून। बैतका रोड मोंगू में 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मिंत्रा आनंदनी मतापलत पैदाशी नाम भगमुनिया और जिन्हें सिला के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 11:00 बजे उनके बेटे बिनेश मतापलत के घर मोंगू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमाशा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। वालोरी मुकामे 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री सिपरसाद एमराज जिन्हें दाना के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज 8:00 बजे उनके घर वालोरी मुका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकों सौ सैंपिया की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टू डे एट 8 AM। एवेन्यू कोलविल बेलरोज में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री श्याम चिनिया जिन्हें श्याम के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर बेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। क्रिमेशन रोड प्लेन दी रोश में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड की श्री देवानंद जक्तू की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 11:30 बजे उनके घर प्रंदेवर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। रूट बाउंडेरी रोजिल में सेंट पैट्रिक गिरजाघर के पास 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती भगमनिया सिबालक पैदाश नाम काली और जिन्हें फीफी के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 11:00 बजे उनके घर रूट बाउंडेरी रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमोत्तय मोहोश की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। ग्रैंड पो रोड रेस्टोरेंट पेयर के करीब नोवेल फ्रांस में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अनीता जालिम पैदाशी नाम परबोतिया जिन्हें संता के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे सेवन जालिम के घर नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामजीन की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: रेडियो मस्ती।
2: योर लाइफ इज नॉट कंप्लीट अंटिल यू हैव अ लिटिल मस्ती इन योर लाइफ। रेडियो मस्ती ऑल द वे।

0: the latest news and the greatest mix of music. Radio Masti.
1: Radio Masti.
2: घड़े मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 7 बजे हैं।
3: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
0: RM2 Radio Musty in the mix.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musti.
3: वैसे गाने वाले आयु में और हमारे मॉर्निंग वाले आयु में काफ़ी फ़र्क है ना। हम सुबह जैसे उठते हैं, अलार्म बजता है, हम कहते हैं आयो, यानी कि क्या हो गया, उठने का टाइम हो गया, काम पर जाने का टाइम हो गया, जी स्कूल जाने का टाइम हो गया, वीकेंड ख़त्म हो गया। सुबह के 7:05 हुए हैं, गुड मॉर्निंग। एक प्यारी सी स्माइल तो दे दो भाई, इतना हक तो हमारा भी बनता है कि एक प्यारी सी स्माइल के साथ हमारा भी आप वेलकम करो। तो विदित आ गई है साथ देने के लिए, हम साथ साथ हैं भाई, साथ साथ 9 तक आपके लिए खूबसूरत गाने लेकर आए हैं ताकि आपका मूड अच्छा रहे। देखो भाई, हमारे प्रोग्राम में भी स्पोर्ट्स होने वाला है और साथ ही साथ हमारी बातें तो होती रहती हैं, क्या पता कुछ और सरप्राइजेज हो जाए। वैसे आपको अगर कुछ करना है तो आपको क्या करना है, आपको मुझे अपने मैसेज भेजने 54991294 आपके साथ और साथ रहेंगे हम। चले भाई, अब मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग हमेशा मैं कहती हूँ मंडे में अगर मन लग गया ना तो पूरा वीक जबरदस्त जाता है ना।
0: RM2
2: Radio Musti.
4: Malou la caisse, me tiens en plus. Mal pay mobile, me tiens en plus. Mal restaurant, me tiens en plus.
5: Hé, calmé! Avec le Tri Mighty Money, tu es capable de gagner des millions de roupies in the pocket. Jusqu'à le 10 juillet, tout au paiement et top up te fait à l'eau Mighty Money, donne-toi sens, gagne des millions, 500 000 ou 300 000 roupies cash et plein les autres cadeaux.
4: Allô, qui te dit? Et avec Mighty, in the pocket.
6: Mighty Money est un service de Cell Plus Mobile Communication Limited qui opère sous licence de la Banque de Maurice. Termes et conditions applicables.
7: Mighty, Mighty, c'est ça.
8: Comme là, elle a senti bon que toi là. Qui? Te baignes de parfum? De l'auto aussi baignes de parfum? De salle de bain si baignes de parfum toi? De comique toi deux? Check ça, sandales à le kick? Mais toi, les sandales 24/7, toi.
9: Celle-là, tu peux en trouver ça. Fait que t'es beau, que celle-là.
8: Allo, kick gel air fresh no pocket sized. Astier, me comprends. Tu mets air fresh no dans ton poste, mon sport, tout.
9: Vrai, même, t'es bien comique, toi. Hein? Allez, essaye tout. Allo, kick, peine à ce deuxième, ça me sert.
10: Allo, kick, freshness anytime, anywhere.
11: Ou gagne sa bon parfum popcorn là là? Aster! Si me dis ou qui popcorn, c'est une nouvelle façon pour gagner cashback le shopping. Ou sautez tellement content non? Et sa cashback là? Ou capable de transférer direct le compte la banque et l'air là? Ou décider qui ça n'a pour faire content avec sa petite casse là? Allons, pas tarder! Download application popcorn depuis Play Store ou App Store, scan ou ban récissi permanent et si dans le panier la man produit qui rapporte tout popcorn. Ça fait bon! Popcorn! Fais la bouse doux! Vite, follow popcorn mon slow Facebook.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Morning Beat.
2: RM2 Radio Musti in the mix.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2
1: Radio Musti.
2: कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी और हमारे प्यारे लाइन लिसनर्स आप हैं और आपकी आरजे उवेदिता मैं। जी हाँ बिल्कुल, रेडियो मस्ती की मैं हूँ आपकी मस्त मस्त गर्ल। अब मैं क्या बोलूँ, यही बोल सकती हूँ ना, मस्त मूड में। आपको बस इतना कहना है कि आप भी अपने मूड को थोड़ा बदल लीजिए, जो सो रहे हैं प्लीज़ जाग जाओ। कभी तो जल्दी उठ लिया करो, कभी तो अपनी मम्मी का हाथ बटा लिया करो। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों में मम्मी मम्मी ऐसे थोड़े ना चलेगा। अभी वैसे भी हम मदर्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, मम्मी की थोड़ी सेवा अभी से ही करना शुरू कर दो, या तो फिर मदर्स डे पे जाओगे गिफ्ट खरीदोगे और बोलोगे हैप्पी मदर्स डे, ऐसे थोड़ी ना चलता है। थोड़ा सा प्यार अभी से ही दिखाना शुरू कर दो, थोड़ा जल्दी उठ लिया करो, थोड़ा अपना काम कर लिया करो, अपने सॉक्स ढूंढ लिया करो, अपने रुमाल ढूंढ लिया करो, है ना, इतना तो कर ही सकते हो। चलो भाई, मॉर्निंग मॉर्निंग में सबका मूड ठीक रहे, यही हमारा काम है और हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ भाई थोड़ा सा आप मैसेज टाइम निकाल के भेज सकते हो। नंबर बहुत सिंपल है, हम तो पता नहीं कितने सालों से आपको बता रहे हैं, इट्स 5499 1294। तो जमानी याद आ गई है ना। चलिए इसी के साथ आपका मुंह मीठा करते हैं, आई मीन एक स्वीट गाना लेकर आए हैं आपके लिए। इस गाने को आप सुनिएगा और ज़रूर हमारे साथ झूम उठिएगा। और आपको ये भी बता दूं कि थोड़ी देर में हमारा बर्थडे ऑफ द डे होने वाला है।

0: फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड सर्कल्स में कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या? याद करो, जल्दी करो, भूल मत जाना, कहीं ऐसा ना हो कि आप पिट जाओ। इससे तो अच्छा है कि आप उनका नाम और फोन नंबर हमें भेज दो, क्या पता आज आपकी वजह से उनका दिन खास हो जाए।
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Pour la fête des mères côte métrique, fais au maman plaisir avec un joli moment de bien-être. Énergie jusqu'à 50% réduction jusqu'au 7 juin dans tout bain showroom métrique pour Mama Deals. Métrique, une enseigne du groupe Karimji.
3: Envie de vous faire plaisir sans vous priver? Du 8 au 21 mai, chez Winners, profitez des prises en beauté sur une large sélection de vos produits du quotidien. Des offres irrésistibles pour remplir votre panier plus facilement et toujours au meilleur prix. Le gel douche 500 ml Uva à 79,95 € et 5 kg de riz basmati Mahal 1121 à 289,95 €. Et profitez-en, la fête du pain a déjà commencé chez Winners et ça continue jusqu'au 31. Des prises en beauté, plus d'économies et toujours plus de plaisir chez Winners.
4: On est tous Winners.
1: RM2
2: Radio Musti. RM2 Radio Musti.
5: Hit music only.
6: Radio Musti feels a musti.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musty.
3: झूम रहे हैं आप, घूम रहे हैं हम, और बस करना क्या है आपको, ये तो करना है लाइफ में टेंशन न लेने का, न देने का, खुश रहने का, मस्त रहने का। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और आज का बर्थडे वो कौन है जिसको हम करेंगे सरप्राइज, वो होगा लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से एक वाउचर भी है, एंड आपके फैमिली मेम्बर्स में से, आपके फ्रेंड सर्कल्स में से, आस पड़ोस में, आपको पता है आज किसी का बर्थडे है और उनका बर्थडे आज ही है, ऐसा नहीं कि कल है या परसों था, आज ही है। तो आपको करना क्या है, उनका नाम और फ़ोन नंबर आपको हमें भेजना है 54991294 पर, और फिर उसके बाद हम नंबर घुमाएंगे, रिंग रिंग, उनको फ़ोन करेंगे, उनको हैप्पी बर्थडे विश करेंगे, और लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से उनको दिया जाएगा वाउचर।
2: वेलकम वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती।
4: रेडियो मस्ती
5: हिट म्यूजिक ओनली
4: फील्स अ मस्ती।

0: अखियों से गोली मारे, लेकिन यहाँ पर झटके देने का टाइम आ गया है। जी बिल्कुल, फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड सर्कल्स में, कोई आस पड़ोस में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हो और हम उनको सरप्राइज ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो भाई, यहाँ पर लकी ड्रॉ भी हो गया है और नंबर भी आ गया है, बात कर ले।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: तो चलिए जानते हैं आज कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग
3: गुड मॉर्निंग
0: गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
3: Yes.
0: आपको पता है आपसे कौन बात कर रही है?
3: नहीं।
0: अच्छा जी, वो क्या है ना कि मुझे

0: फोन किया गया है पूछने के लिए कि आप 2 दिन से काम पे क्यों नहीं गई।
1: ठीक में है।
0: अच्छा, सिक में है।
1: हाँ
0: पर मुझे तो पता चला है कि आज आपके घर में पार्टी है, इसीलिए आप काम पे नहीं गई।
1: हेलो, मूवी बना ले आस्ते हो गए मूवी को तो आवाज रहा
0: अच्छा, तो आप घर पे हैं,
1: नहीं। रोते हैं।
0: रोड पे हैं?
1: हाँ
0: रोड पे क्या कर रही हैं आप?
1: वो कह रहा भाई।
0: अच्छा, काम पे जा रही हैं। लेकिन
1: हाँ
0: मुझे तो पता चला कि आज आपने ऑफ लिया हुआ है, आप काम पे नहीं जा रही हैं।
1: नहीं, हाँ
0: जा रही हैं?
1: जा रही है।
0: अच्छा ठीक है, अपने बॉस से बात कर लीजिए।

0: from Radio Masti.
1: विदुषी जी रिलैक्स कीजिए, आपको काम पर जाना है. मैं वेदिता हूँ, रेडियो मस्ती की पूरी टीम की ओर से आपको हैप्पी बर्थडे विश करने आई हूँ. और आपको मैं बताऊँ कि आप डर तो नहीं गई? ये सचमुच में बॉस आपको ढूंढ रहा है, आपको डर नहीं लगा ना?
2: नहीं डर लगा.
1: पहले से पकड़ लिया था मुझे, पता था वेदिता बात करी. सोच ही रही हुई सुबह सुबह ये कौन बात करी है, ऐसी शरारत तो बस वेदिता ही करती है. हाँ यही होगी लड़की, मुझे फंसा रही है, चलो मैं फंसाती हूँ उसको. सो मैं आपको बताती हूँ विदुषी, आपको मिल रहा है लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से एक वाउचर जो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा या तो फिर आज या तो फिर कल, लेकिन आपको अपने आईडी कार्ड के साथ आना है. ठीक है, तो कल आ जाइएगा और अपने आईडी कार्ड के साथ आइएगा. हाँ जी बिल्कुल, ये है आपका रेडियो मस्ती. हाँ जी, पोर्टमिस नहीं, आपको आना पड़ेगा मुक्का. ठीक है, हमारी जो प्रोडक्शन असिस्टेंट है वो आपको कॉल करेंगी थोड़ी देर में, सारे डिटेल्स आपको देंगी. आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी टीम की तरफ से. थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय. मॉर्निंग
3: बीट RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.

0: भाई भुमरो तो नहीं, लेकिन यहाँ पर आया जरूर कोई है जो लेकर आए हैं आपके लिए स्पोर्ट्स न्यूज।
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
2: स्पोर्ट्स न्यूज लेटेस्ट अपडेट्स।
3: स्पोर्ट्स न्यूज
4: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: एंड यस, वेलकम करने का टाइम आ गया है। चलिए मिलते हैं अरविंद से, जानते हैं कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है। गुड

0: Good morning, Arvind.
1: Good morning, Apko. Good morning, RM2 listeners. Let's check out the latest from the sports world. Premier League के अंतिम मैचों में अभी तक सस्पेंस बरकरार है. रिलेगेशन के लिए वेस्ट हैम यूनाइटेड की स्थिति नाजुक है. न्यूकासल यूनाइटेड ने कल वेस्ट हैम को 3-1 से हराया. मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ओल्ड ट्राफर्ड में नॉटिंघम फॉरेस्ट को 3-2 से हराया. लुक शो, मैथ्यूस कुन्हा और एम्बुमो ऑन टारगेट. ब्रूनो फर्नांडिस का रिकॉर्ड 20वां प्रीमियर लीग असिस्ट, 20th प्रीमियर लीग असिस्ट. और अंत में ओल्ड ट्राफर्ड का काजिमीरो को अलविदा कहने के लिए स्टैंडिंग ओवेशन. फर्नांडिस ने प्रीमियर लीग के असिस्ट रिकॉर्ड को इक्वलाइज किया थिएरी हेनरी और केविन डे ब्रुइन के साथ 20 असिस्ट. आखिरी मैच में फर्नांडिस ये रिकॉर्ड अपने नाम कर सकता है. अन्य मैचों में ब्रेंटफोर्ड 2 क्रिस्टल पैलेस 2, एवर्टन 1 सन्डरलैंड 3. एवर्टन के लिए यूरोप में जाने के लिए ये एक झटका है. लीड्स ने ब्राइटन को 1-0 से हराया. वुल्व्स 1 फुलहम 1 और न्यूकासल यूनाइटेड 3 वेस्ट हैम 1. आज आर्सेनल बर्नले के खिलाफ खेलेगा. कल बोर्नमुथ मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी टोटनहम हॉटस्पर. फिर संडे 24 मई को प्रीमियर लीग फाइनल. सभी मैच एक साथ चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग में जाने के लिए फाइनल काउंटडाउन. वेस्ट हैम यूनाइटेड के फैंस बहुत नाराज हैं. रेलिगेशन से बचना लगभग मुश्किल हो गया है. एक मैच खेलना है, सेफ्टी से 2 अंक नीचे. टोटनहम हॉटस्पर के पास 2 मैच हैं. गोल डिफरेंस टोटनहम हॉटस्पर का कहीं बेहतर है. बचे 2 मैचों में 1 ड्रॉ काफी होगा बचने के लिए. कल चेल्सी के यहां जाना है. फिर अंतिम दिन एवर्टन के खिलाफ होम मैच. वेस्ट हैम को बचाना, उसका बचा मैच लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ होगा. तो एडवांटेज टोटनहम हॉटस्पर. कल के मैचों के बाद ब्राइटन के लिए टॉप 5 में आने का दरवाजा बंद हो गया. एवर्टन यूरोप के लिए क्वालिफाई नहीं होगा. अभी के लिए 6 पोजीशन पर बोर्नमुथ और 7 पोजीशन पर ब्राइटन यूरोपा लीग क्वालिफिकेशन के लिए सज है. 8वां पोजीशन अभी ब्रेंटफोर्ड के पास है. कॉन्फ्रेंस लीग का टिकट हो सकता है ये. पर सन्डरलैंड और चेल्सी के चांसेस हैं यूरोपा लीग या कॉन्फ्रेंस लीग में जाने के लिए. अगर एस्टन विला 5वें स्थान पर आता है और यूरोपा लीग जीतता है तब 6 पोजीशन की टीम चैंपियंस लीग टिकट ले जाएगी. मतलब इंग्लैंड की 6 टीमें चैंपियंस लीग में. उधर क्रिस्टल पैलेस कॉन्फ्रेंस लीग जीतकर यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई हो सकता है. अगर आर्सेनल चैंपियंस लीग जीतता है तो प्रीमियर लीग से यूरोपियन क्वालिफिकेशन स्पॉट पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि आर्सेनल पहले से ही टॉप 4 में है. ऐसे में ये टिकट कोएफिशिएंट यूईएफए कोएफिशिएंट के आधार पर शक्ता दोनेस्क को मिल सकता है, इंग्लैंड की टीम को नहीं. स्पेन के ला लीगा के मैच कल. एथलेटिक 1 सेल्टा वीगो 1. फिर एथलेटिको मैड्रिड 1 जिरोना 0. एल्चे 1 रेताफे 0. लेवेंटे 2 मालोका 0. ओसासुना 1 एस्पान्योल 2. रायो वालेकानो 2 विलारेयल 0. ओविएडो 0 अलावेज 1. रियल सोसिएदाद 3 वेलेंसिया 4. सेविला 0 रियल मैड्रिड 1 विनिशियस जूनियर का गोल. और चैंपियन बार्सिलोना ने बेटिस को 3-1 से हराया. राफिना का डबल, कांसेलो का 1 गोल. इटली के सेरी आ में कोमो 1 पार्मा 0. जेनोआ 1 एसी मिलान 2. यूवेंटुस 0 फ्लोरेंटिना 2. पिसा 0 नापोली 3. रोमा 2 लाजियो 0. इंटर मिलान 1 वेरोना 1. अटलांटा 0 बोलोन्या 1. कागलियारी 2 टोरिनो 1. सासुओलो 2 लेचे 3. यूडिनीजे 0 क्रिमोनेजे 1. अभी के लिए इंटर मिलान, नापोली, एसी मिलान और एस रोमा चैंपियंस लीग स्पॉट में है. फ्रांस के लीग 1 में पारी डर्बी में पारी सेंट जर्मे की हार. पारी एफसी ने उसे 2-1 से हराया. अन्य मैचों में ब्रेस्ट 1 अंजे 1, लील 0 ओसेर 2, लोरियन 0 ले हावर 2, मार्सेई 3 रेन 1. नांट टूलूज वाला मैच सस्पेंड कर दिया गया. फिर नीस 0 मेट्स 0, लियो 0 लांस 4, स्ट्रासबूर 5 मोनाको 4. पारी सेंट जर्मे, लांस और लील चैंपियंस लीग स्पॉट में है. टेनिस रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड यानिक सिनर के नाम. इटालियन ओपन जीतकर सिनर 9 ATP मास्टर्स

0: टाइटल का फुल सेट जीतने का रिकॉर्ड बनाया। इसे कार्यो गोल्डन मास्टर्स कहते हैं। ये रिकॉर्ड सीना के अलावा केवल जोकोविच के पास है। फाइनल में सीना ने कास्पर रूड को हराया। क्रिकेट आईपीएल में कल दो मैच खेले गए। पहले मैच में राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को 23 रनों से हराया और दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत पाई। वैभव सूर्यवंशी केवल 21 गेंदों में 46 रन बना पाया, 21 बॉल 46 रन। अभी के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 18 अंक लिए पहली पोजीशन पे हैं। उसके बाद आते हैं गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स टॉप फोर पूरा करता है। आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से है। एथलेटिक्स मॉरिशस के लिए दूसरा मेडल, इस बार ट्रिपल जंप में लिलियान पोटिरो सिल्वर मेडल जीत पाई। एडेल क्यूपिडो ने मॉरिशस के लिए पहला मेडल जीता था, सिल्वर मेडल। किकबॉक्सिंग के जूनियर वर्ल्ड कप में दो मेडल मॉरिशस के लिए, जादेन ड्राक सिल्वर मेडल जीत पाया और वेन पेरिन ब्रॉन्ज मेडल। बधाई हमारे नौजवानों। डोंट फॉरगेट आज आर्सेनल वर्सेस बर्नले, लीग टाइटल की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है द गनर्स के लिए, पर बर्नले से जलने का खतरा है, डरना होगा। अब देखेंगे आज क्या होगा। फिर डोंट फॉरगेट अभी थोड़ी देर बाद विल कम विद द वर्ल्ड कप रोड टू वर्ल्ड कप। टिल देन बाय बाय।
1: यस ऑफ कोर्स, सी यू अगले आओ में 8 बजे के बाद। ओके अरविंद, थैंक यू सो मच।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Radio Musti. Hit music only. Feels a musti. Radio Musti. Hey yo, I'm

यस माय डियर फ्रेंड्स, इसी गाने के साथ हम बढ़ने जा रहे हैं 8 बजे की भोजपुरी समाचारों की ओर। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको शायद पता है कि MBC ने अपना एक नया MBC प्ले जो ऐप है उसको अभी उन्होंने लॉन्च किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिए नाउ। जी हाँ, MBC प्ले का जो नया

ऐप है अभी जो हम लोगों ने लॉन्च किया है, अगर अभी तक आपने उसको डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं सेकेंड आवर में आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है, जहां पर आपको मौका मिलेगा एक बहुत बड़े प्राइस का। जी हाँ, वो जीतने का मौका मैं आपको दूंगी। सबसे पहले आप ये करो कि आप एमबीसी प्ले का जो ऐप है नया वाला, उसको आप अभी डाउनलोड करो। इसको आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी कीजिए, मिलते हैं हम सेकेंड आवर में।

8 बजे के समाचार में आप सब लोग की स्वागत करल जाता। सबसे आगे हमने देश के बारे में बतियाओ। अब जा काल सांझ के कौ तुगैला में एगो स्वास्थ्य ट्रक हिंसा और अफरा तफरी के केंद्र बन गल। इलाका में उ बखत भारी तनाव फैल गल जब हिंसक झगड़ा पूरा क्षेत्र में दहशत में डाल दिलक, यानी कि पूरा क्षेत्र के दहशत में डाल दिलक। हुआ परी जो आदमी रलन जाऊ लोग बोलन जा कि सीमा पर कई गो धमाका जैसन आवाज सुनाल, जोन गोली चलाई निखन रहल। आ तनाव के मुख्य कारण एगो वॉकिंग ट्रक यानी कि चली के एगो जगह पर क्वाड बाइक के मौजूदगी रहल, जिकर से हुआ के आदमी कड़ा जिकर करा विरोध करलन जा। पहले कहा सुनी भइल, फिर मारपीट शुरू होल आर दिखत दिखत में स्थिति बहुते हिंसक हो गल। झगड़ा के बखत तलवार आर बंदूक के इस्तेमाल भी कर गर एगो गाड़ी में आग लगावल गल। आर स्थिति के नियंत्रण में करे खातिर भारी पुलिस बल की तैनाती रहल, जिकर में स्पेशल सपोर्ट यूनिट SMF के एलीट टीम भी शामिल रहल। काल रात 9 बजे ले पुलिस इलाका में शांति बना के रखे के आर हालात काबू करे की कोशिश में जुटल रहल। गोलीबारी आ तोड़फोड़ के ई गंभीर घटना के जांच जारी बाते, जिकर से पूरा मामला के सच्चाई सामने आई। अब बात करी ला जा एगो ऐसन राजनीतिक जुबानी जंग के बारे में। काल रात गजाऊ टीम सार्वजनिक रूप से अपन नाराजगी जतैलक आर आरोप लगैलक कि MMM के फेसबुक पेज अब पुल बेरांजे के फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस के पेज बन गल बाटे। उ बोलन कि जोतफिन कोके नुपाल, यानी कि उ लोग हमनी के पास के चोरी करलन जा। MMM के अध्यक्ष ई दावा के समर्थन करे खातिर एगो स्क्रीनशॉट यानी कि फोटो खींच के दलक, जेकर में पेज के नाम मूवमेंट मिलिटेंट मॉरिशियन से बदल के ओकरा फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस डाल गल। आर एडमिन के रूप में यानी कि जे एकर संचालन करेला ओ जुआना बेरांजे रहल, ओकर नाम लौकल। हालांकि बाद में ई स्पष्ट भइल कि MMM के ई आधिकारिक फेसबुक पेज नहीं है बल्कि एगो निजी समूह है। एकर जवाब में रोआना बेरांजे तंज कस के बोलक कि रेसा उतिम के ई दोनों पेज के बीच जोन अंतर बाते ओके समझे के चाही। वो अपन निजी फेसबुक पोस्ट में लिखल कि जुतपाज MMM ओको एताक लिकापाव आरेत प्लोरे, यानी कि ओकर उलोक के MMM पेज जोन बाते अभिले हुए बाते उलोक के रोय के नहीं चाही। फिलहाल ई मामला राजनीतिक गलियार आर सोशल मीडिया के चर्चा के विषय बनल बाटे। मॉरिशस के कला जगत शोक में डूब गल बाटे। प्रसिद्ध चित्रकार मूर्ति नागालिंगम के एगो सड़क दुर्घटना में घाव लगला के बाद काल 90 बरिस यानी के 4 कोरी 10 बरिस के उम्र में निधन हो गल। मूर्ति नागालिंगम खाली एगो शिक्षक नहीं बल्कि कला और संस्कृति के सशक्त निर्माता रलन। UMGI के फाइन आर्ट स्कूल के पूर्व निदेशक रलन। 43 बरिस आगे मशहूर सालों दो में के संस्थापक भी रलन। उ पोस्ट कोलोनियल कला के आम जनता ले पहुंचा के देश के सांस्कृतिक इतिहास पर गहरा छाप छोड़ ले हवन। हाल ही में उनकरा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की सम्मान भी देवल गल। उनकर सादगी भरल जीवन रहल आर अपन पाछे अनुशासन आर भावना से प्रेरित एगो समृद्ध कलात्मक विरासत उ छोड़लन। उनकर अंतिम संस्कार आज दिन में होई, यानी कि सांझ के 3:30 होई एलियन संत बोबा से उनकर अर्थी निकालल जाए। दुगो बड़ा समूह आर हर बरिस बढ़त प्रभावशाली आंकड़ा। IBL आर ईओ ग्रुप अपन वित्तीय बरिस के

0: पहिलानो महीना के परिणाम सार्वजनिक करलन जा जोन 31 मार्च 2026 के समाप्त भइल। दुनो ही मामला में स्पष्ट और मजबूत वृद्धि दर्ज कर गल बाटे। ई दुनो स्थानीय और क्षेत्रीय निजी क्षेत्र के बड़ा समूह जोन वैश्विक अस्थिरता, भू राजनीतिक तनाव और व्यापार युद्ध जैसन चुनौती के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ते जात हुआ जा। ई दुनो समूह के पास इन दोनों समूह में कुल मिला के 53,000 आदमी काम करे लन जा और उ लोग कई दर्जन देश में अभी सक्रिय हवन जा। उकर परिणाम खाली आंकड़ा नहीं माना जाता बल्कि देश के आर्थिक स्थिति के महत्वपूर्ण संकेतक यानी थर्मोमीटर और बारोमीटर भी बोला जाता। दूसरे देश के समाचार में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेदरलैंड के अपन दौरा काल दिमास के समाप्त करलन। दोनों देश के बीच 17 महत्वपूर्ण समझौता पर सहमति बनल। रक्षा, व्यापार, ग्रीन हाइड्रोजन और टेक्निक जैसन क्षेत्र में सहयोग बढ़ी। भारत और नेदरलैंड अपन अपन संबंध के नवा रणनीतिक साझेदारी ले पहुंचाए पर जोर दिलन जा। दौरा के भारत के बड़ा कूटनीतिक सफलता मानल जाता। ते ही संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भइल। संगे रह अभी बढ़ब जा मरनी के समाचार देने।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. A good beat for your morning show. Come on. Morning Beat, RM2. Radio.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musti.
2: फिलहाल तो आपके दिमाग में जो फजूल की टेंशन भरी हुई ना उसको धोने का टाइम आ गया है। सुबह के 8:10 हुए हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम मंडे 18th of May और आप विदिता का साथ दे रहे हैं। आप मॉर्निंग बीट के साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मस्ती पर। उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा सा आपका मूड अभी थोड़ा सा सेट हो गया होगा। ज़्यादा टेंशन न लेने का, न देने का, खुश रहने का, मस्त रहने का हमारे साथ रेडियो मस्ती, इसीलिए तो हम लेकर आते हैं आपके लिए हर तरह के गाने ताकि आपके चेहरे पर स्माइल हो। देर न करते हुए जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। मिलते हैं शीता से।
0: It's the weather broadcast with winners.
3: On est tous winners.
4: मौसम का हाल, आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा का बहाव है और अस्थिर दबाव से जुड़े बादल हमारे स्थानीय मौसम को आज शाम से प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आमतौर पर सुबह के समय और रात और दिन के दौरान मौसम सुहाना होगा। शाम के समय तथा रात में बादल विकसित होंगे, विशेषकर पूर्वी और ऊंचाइयों पर, और थोड़ी वर्षा होगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 3 मीटर के जुवार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है, विशेषकर पश्चिम और दक्षिण लगूनों में। तापमान, अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान ऊंचाइयों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:32 पर और सूर्यास्त शाम 5:40 पर।
0: Your weather forecast on RM2.
1: Radio Musti.
5: Envie de vous faire plaisir sans vous priver? Du 8 au 21 mai, chez Winners, profitez des prix en beauté sur une large sélection de vos produits du quotidien. Des offres irrésistibles pour remplir votre panier plus facilement et toujours au meilleur prix. Le gel douche 500 ml Uva à 79,95 € et 5 kg de riz basmati Mahal 1121 à 289,95 €. Et profitez-en! La fête du pain a déjà commencé chez Winners et ça continue jusqu'au 31. Des prix en beauté, plus d'économies et toujours plus de plaisir chez Winners.
6: On est tous winners.
3: Radio Musti
1: in the mix.
3: Radio Musti feels a musty
1: in the mix.
0: RM2
1: Radio Musti.
7: À kilomètre à pied, on s'amuse, on s'amuse.
8: Et oui, en ce moment, ton Tiki Fun Meal t'emmène en forêt à l'Ebony Forest de Chamarelle. Découvre en pleine nature les plus beaux panoramas, un musée d'histoire naturelle ainsi qu'une visite guidée de 30 minutes. Alors, en avant, marche !
7: 2 km à pied, on s'amuse.
9: KFC. Dans le cadre AI Video Contest 2026, Mauritius Telecom peut inviter tout Mauricien pour voter pour votre vidéo préférée. Après qu'ils aient fait une choisie à 10 plis bon création l'eau thème l'île Maurice de demain, à Steyr, c'est où qui décider. Check pas Facebook Mauritius Telecom pour plus de détails ou soit al direct l'euro videocontest.telecom.mu pour get vision du top 10 finalistes, l'eau la santé, l'innovation, la vie communautaire et l'environnement. Date limite pour voter les 20 mai 2026. Mauritius Telecom AI Video Contest 2026, votez pour faire sa man vision la briller.
0: RM2
1: Radio Musti.
0: Morning Beat.
10: Oh God, one more remix.
0: A good beat for your morning show.
1: RM2 Radio Musti in the mix.

0: avant le défi de Long Shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: ये गाना मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, तो अपनी कहानी कभी आप लिख नहीं पाओगे ना, अगर यही सोचते रहोगे। जो लोग आज जज कर रहे हैं, कल वही लोग आपकी तरक्की देखकर आपकी तारीफ भी करेंगे। तो लोग क्या कहेंगे एक ऐसा डर है जो बहुत लोगों को अपने सपने पूरा करने के लिए रोक देता है। रियलिटी ये है कि लोग हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो ज़रूर बोलेंगे। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तब भी, अगर आप करोगे तब भी, अगर आप जीतोगे तब भी, अगर आप हारोगे तब भी। सो अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी दो, हर ओपिनियन को इम्पोर्टेंस मत दो। जो आपके गोल्स और पीस को सपोर्ट करे उनकी सुनो। आपकी लाइफ की जो स्टीयरिंग है ना, दूसरों के हाथ में मत दीजिए। भले आप अभी ड्राइवर अच्छे नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगे, और जब सीख गए ना तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता।
0: Avant le défi de Long Shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
3: Radio Musty.

0: एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं इस समय रेडियो मस्ती पर आपका अपना मॉर्निंग बीट। मैंने आपसे कहा था 7 बजे के आसपास कि अगर आप लोगों ने अब तक एमबीसी प्ले का जो नया ऐप है डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। क्यों कहा था जानिए।
1: À l'occasion lancement MBC Play, préparez-vous pour décoller. MBC en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited POV.

0: et à la sens des grands gagnants pour un pot des tickets de Sakhen pour un hélicoptère Joyride exceptionnel dans région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et crée un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, reste à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voir un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé un compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi ban finalistes et que vous pouvez dans la sens, participe dans grand final les 29 mai. MBC Play avec ou partout. Pour plus d'informations, téléphone l'eau 400D 8000. Conditions applicables.
1: A good beat for your morning show. Come on. RM2
2: Radio Musty.
3: लो भाई, अब आपको पता चल गया कि हम क्यों कह रहे थे आपको कि MBC प्ले जो है उसका जो नया ऐप है उसको क्यों डाउनलोड करना है। हेलो, गुड मॉर्निंग विकास।
4: गुड मॉर्निंग।
3: इसको भी चाहिए राइड, है ना?
4: हाँ, मेरे को चाहिए। तेरा पीछे ना मैं छोड़ूंगा, मुझे वो याद आ गया गाना। वो भी कमाल था।
3: अच्छा, अभी हमारे लिसनर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
4: हाँ, देखो ऐसा है कि आपको खाली MBC प्ले डाउनलोड करना है, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप के जरिए और फिर बस स्टे ट्यून्ड अपने चांस के लिए। हो सकता है कि आपको सिलेक्ट कर लिया जाए और उसके बाद जीतिए एक अनफॉरगेटेबल हेलीकॉप्टर एक्सपीरियंस राइड मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के साथ। MBC प्ले हमेशा आपके साथ हर जगह।
3: अब मैं सोच ही रही हूँ कितना मजा आएगा ना कि हमारे जो लिसनर्स है उनको मौका मिलेगा हेलीकॉप्टर राइड के लिए।
4: हालांकि तुम मत जाना, देखो ये हमेशा जब जाती है कहती पंखा बंद कर दो, पंखा ठंड लग रही है।
3: तो सर्दी का मौसम है ना, क्या करें, यही तो करना पड़ेगा। देखो भाई, हमारा हेलीकॉप्टर तो इधर आ गया। ऐसा करते हैं, हमारे विकास पहले चेक कर लेते हैं सब बाहर ठीक है कि नहीं, फिर उसके बाद हमारे जो लिसनर्स हैं उनका वेट करें। जल्दी करो, स्क्रीनशॉट करो और भेजो 549 1294।

0: माय डियर फ्रेंड्स, यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती विदिता के साथ। ये है आपका मॉर्निंग बीट। चलिए इसी के साथ समय हो गया है, मिलते हैं अरविंद से। वर्ल्ड कप में क्या चल रहा है जानते हैं उनसे।
1: Get ready for the biggest World Cup ever!
2: 2026 FIFA World Cup.
1: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ
2: चलिए
1: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
2: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप।
3: डाई डाई लेट्स गो वर्ल्ड कप 2026 काउंटडाउन जारी है। आज ग्रुप एफ पर फोकस है। इस ग्रुप में है नेदरलैंड्स, जापान, स्वीडन और ट्यूनिजिया। सभी टीमों की अलग अलग पहचान और अस्तित्व है, यूनिक फुटबॉल लेगेसी, कंट्रास्टिंग स्टाइल ऑफ प्ले और मार्की प्लेयर्स। नेदरलैंड्स टोटल फुटबॉल डच टीम, तीन बार रनर अप, 2022 में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच पाई थी। हिस्टोरिक पेनाल्टी शूटआउट पर वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना से हारी थी नेदरलैंड्स की टीम। कप्तान है वर्जिल वैन डाइक, साथ में है फ्रंकी डी योंग, कोडी गाकपो। जापान की टीम एशिया पावर हाउस, पिछले वर्ल्ड कप में जापान ने पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन जर्मनी को हराया था। खिलाड़ियों में है रियल सोसिएदाद का ताकेफुजा कुबो, साथ में वाताहो एंडो और तोमियासु। स्वीडन की टीम 13 बार वर्ल्ड कप अपीयरेंस, 2018 में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच पाई थी स्वीडन की टीम। खिलाड़ियों में है विक्टो ग्योकेरेस, इसाक कुलुजेवस्की। और चुनिजिया अफ्रीका का प्रतिनिधि, सातवा पार्टिसिपेशन। अभी तक चुनिजिया की टीम ग्रुप स्टेज नहीं पार कर पाई है, पर 2022 में इस टीम ने फ्रांस को 1-0 से हराया था। की प्लेयर्स यूनियन बेले का मिडफील्डर खेदीरा, फिर हनीबाल मिच ग्रिब ही हैं। इस ग्रुप ई में नेदरलैंड्स, जापान, स्वीडन और चुनिजिया। मामला टाइट होगा नॉकआउट क्वालिफिकेशन के लिए। वर्ल्ड कप 2026, हमारे साथ जुड़े रहिए फॉर द लेटेस्ट न्यूज, व्यूज एंड रिव्यूज।
1: फीफा वर्ल्ड कप 2026।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty.

0: एंड यस, चलिए यहाँ पर अभी हम आ गए हैं साथ में. विकास ने बोला बस तुम्हारे प्रोग्राम में तुम एक ही गिफ्ट दे रहे हो,
1: पिज्जा. पिज्जा पिज्जा
0: पिज्जा खाना है या देना है?
1: देखो पहले उसका मजा ले लो. ऐसा होता है कि इससे पहले कि तुम कुछ दो, उसका एहसास करो, उसको समझो क्या है. Right, ladies and gentlemen, अभी मौका है जीतने का 1,000 rupees का gift voucher. Domino's pizza की तरफ से.
0: Exactly. और ये बोलो ना, हम खेल रहे हैं रॉजर्स कैपिटल के साथ. और अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको डोमिनो पिज्जा की तरफ से 1,000 rupees का ये वाउचर मिल सकता है, जो आपको पोस्ट कर दिया जाएगा. आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पोस्ट कर दिया जाएगा. लेकिन पहले सवाल तो हो जाए.
1: हाँ ये भी ठीक है, लेकिन मैं सुन रहा हूँ वो 1,000 rupees का वाउचर भी आएगा डिलीवर होके, फिर पिज्जा भी आएगा डिलीवर होके.
0: मतलब करो, बस करो, कूल डाउन, रिलैक्स. रिलैक्स करो, मंडे है, अच्छा है ना, एक्साइटमेंट बहुत अच्छी होती है. चलो ठीक है, हमारे जो लिसनर्स हैं उनसे कहेंगे कि आप हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए. कैन वी बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम ड्रैगन इलेक्ट्रॉनिक्स यूजिंग नूला? कैन वी बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम ड्रैगन इलेक्ट्रॉनिक्स यूजिंग नूला? ये एक ऐप है, आपको पता है इसके बारे में. तो आप मुझे सही जवाब दीजिए, यस और नो, ऑन 5491294.
1: राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, द गेम पावर्ड बाय रॉजर्स कैपिटल. और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, रॉजर्स ने बनाया नूला एप्लीकेशन, क्या इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं? आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है, भेजे अपने जवाब जल्दी जल्दी. ऑल द बेस्ट.
2: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो. मॉर्निंग बीट RM2
3: रेडियो मस्ती.

0: वैसे मधुगाला का तो पता नहीं, लेकिन मैं और विकास स्टूडियो में बड़े डांस कर रहे हैं और खुशी के मारे नाचेंगे कौन?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: जी हमारा लकी ड्रॉ हो गया। हमारा सवाल क्या था विकास?
3: ये तो ने पूछा था, मैं कैसे कहूँ?
0: पूछ लेना, चलो ठीक है, मैं खुद पूछ लेती हूँ। हमने आपसे पूछा था कैन वी बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम ड्रैगन इलेक्ट्रॉनिक्स यूजिंग नूला ऐप, और सही जवाब है यस
3: यू कैन। बहुत ही आसान है। देखिए ये याद रखिए कि जब आप ड्रैगन इलेक्ट्रॉनिक्स जाते हैं तो वहां पर नूला एप्लीकेशन के जरिए आप खरीदारी कर सकते हैं। रॉजर्स कैपिटल ने बनाया नूला एप्लीकेशन और बिल्कुल सही, बहुत सारे फायदे हैं। डाउनलोड कीजिए और फिर पता लगेगा।
0: विनर है कौन? तो विनर बनी है ज्योति सुखन फ्रॉम लेस्पेरांस ट्रिबोशे। कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आपने रॉजर्स कैपिटल के साथ खेला। आपको मिल रहा है डोमिनोज पिज्जा की तरफ से एक वाचर वर्थ 1,000 रुपीज जो आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है।
3: इतनी खुशी,
0: हम डांस कर रहे थे और वो खुशी के मारे अभी रो रही होगी। मिल गई,
3: कमाल है। राइट, ऐसे ही आप पार्टिसिपेट करते जाइए और RM2 की ये खुश रहेगी कि आपके दिन को बनाए सुहाना, फिर चाहे गाना या फिर गरम गरम पिज्जा खाना। राइट, रॉजर्स कैपिटल की तरफ से आपको मिलता है इनाम 1,000 रुपीज का। ये गिफ्ट वाउचर आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। आपको याद रहा था कि रॉजर्स कैपिटल होल्ड्स अ लाइसेंस फ्रॉम द फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन। कंग्रेचुलेशंस।
1: मॉर्निंग बीट चेंज
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musti.
2: And yes, my dear friends, a very good morning. मैं हूँ विदिता आपके साथ आपकी मॉर्निंग बीच में ऑन रेडियो मस्ती। चलो भाई, ट्रैफिक में फंसे हो तो रेड लाइट को देखकर अपनी आंखें लाल ना करो। बेचारा अपना काम कर रहा है, करने दो। और वैसे भी हॉर्न बजाने से ये जो रेड है ना लाइट, वो ग्रीन नहीं हो जाएगी, इसलिए आपको तो बस वेट ही करना पड़ेगा। चलो भाई, आपका मूड अगर ख़राब है तो उसको ठीक करने के लिए आप मुझे अपने 10 सेकेंड्स दे दीजिए। आई वॉन्ट 10 seconds from you. ऐसी आंखें बड़ी बड़ी मत करो। जायदाद में हिस्सा नहीं मांग रही हूँ, बस 10 seconds मांग रही हूँ। इस 10 seconds में मैं आपको सिखा सकती हूँ कि इंसान खुश हो सकता है, स्माइल कर सकता है, टेंशन को दूर भगा सकता है। कैसे? बस आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको मेरे लिए 10 सेकेंड के लिए स्माइल करना है। जी हाँ, 10 सेकेंड के लिए स्माइल करना है। नहीं नहीं नहीं, कोई जोक नहीं है, मैं सीरियसली बता रही हूँ। अभी आप टेंशन में हो, कैसे भी हो, आपका जो भी मूड है, आप मुझे 10 सेकेंड के लिए स्माइल करा, 10 सेकेंड के लिए, ओके? And your time starts now. चलो, give me a smile. हाँ बिल्कुल, smile को बरकरार रखो 10 सेकेंड के लिए। और जैसे 10 सेकेंड ख़त्म होते हैं, इस गाने पे आपको जहाँ भी हो, घर पे हो, ऑफिस में हो, गाड़ी चला रहे हो, बस आपको मेरे लिए 10 सेकेंड के लिए डांस करना होगा।

0: अभी भी स्माइल कर रहे हो ना?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: मैंने कहा था ना इतना भी मुश्किल नहीं है. देखो अरविंद भी स्माइल कर रहा है, कहते हैं मुझे भी स्माइल करा दिया मॉर्निंग में. चलो अच्छी बात है, सबको स्माइल करना चाहिए. और जब गाना आया दीदी दीदी, बड़ी बहन की याद तो आई होगी, है ना? कान पकड़ती थी आपकी. नहीं नहीं, ये दूसरा वाला गाना है, ये अगला वाला दीदी था. तो चलिए अभी मैं भी चलती हूँ, मेरे जाने का टाइम हो गया है. अब आपको स्माइल कराने के लिए आ रहे हैं विकास,
3: क्योंकि मैंने अगला गाना बनाया है दीदी के बाद. दादा दादा दादा दादा,
0: इसका कुछ नहीं हो सकता. मैं चलती हूँ इससे पहले कि मेरा दिमाग और खराब हो जाए. मैं चलती हूँ, मिलती हूँ कल मॉर्निंग में 7 बजे. बाय बाय गाइस, लव यू.
1: A good beat for your morning show. Come on. Morning Beat. RM2
2: Radio.

0: से पहले स्थानीय खबरें। गंगा तालाब में इटालियन पर्यटकों के एक समूह से जुड़ी घटना के बाद इस स्थल की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा के सम्मान को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है। विशेष रूप से पर्यटकों के पहनावे और उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऑनलाइन व्यापार से जुड़े अवैध तस्करी नेटवर्क के खिलाफ मॉरिशस ने अपनी कार्रवाई को और मजबूत कर दिया है। इंटरनेट पर खरीदारी में तेज बढ़ोतरी और देश में आने वाले पार्सल्स की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए अब मॉरिशस को दक्षिण कोरियाई सीमा शुल्क विभाग की विशेषज्ञताएं का लाभ मिलेगा। इस सहयोग का उद्देश्य जांच और नियंत्रण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना तथा प्रतिबंधित उत्पादों की बेहतर पहचान सुनिश्चित करना है। और आज सोमवार 18 मई से विदेश में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों के कौंसुलेट चुनावों के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत हो गई है। ये मतदान 31 मई को लिसे दी मस्काइन में आयोजित किया जाएगा। मॉरिशस और सेशल्स क्षेत्र के लिए कुल 5 सूचियों में 7-7 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन सूचियों में से एक उम्मीदवार शकील अली महमूद की अगुवाई वाली रासेंब्लेमेंट दे पैट्रियट दे मॉरिस ए दे सूची विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर रही है। ये सूची स्पष्ट रूप से मारीन ले पेन और जोर्डन बाउदेला के रासेंब्लेमेंट नेशनल द्वारा समर्थित बताई जा रही है। सर्दी की शुरुआत के साथ ही मॉरिशस में ठंड का असर महसूस किया जाने लगा है और इसका प्रभाव केवल तापमान तक सीमित नहीं, देश में तीव्रता श्वसन संक्रमण के मामलों में चिंताजनक वृद्धि दर्ज की गई है। 4 से 10 मई के बीच 3,400 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि उससे पहले सप्ताह में ये संख्या लगभग 3,000 थी। ये वृद्धि स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। डॉक्टर फाजिल कुदाबकस के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और कई मौसमी वायरसों के प्रसार के कारण ये प्रवृत्ति और बढ़ सकती हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कहा कि पहले फ्लू होना किसी व्यक्ति को नई संक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित नहीं करता, क्योंकि इस समय कई प्रकार के वायरस सक्रिय है जिससे आबादी अभी भी जोखिम में है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के लुइजियाना राज्य में हुए रिपब्लिकन सेनेट चुनाव में ट्रंप समर्थित उम्मीदवारों ने महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है, जिसमें मौजूदा सेनेटर बिल कैसिडी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस वुमेन जूलिया लेटवो और ट्रंप समर्थित राज्य ट्रेजरर जॉन फ्लेमिंग दोनों रन ऑफ के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं और अब उनके बीच निर्णायक मुकाबला होगा। ये परिणाम उस राजनीतिक तनाव की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें बिल कैसिडी ने 2021 में ट्रंप के महाभियोग के दौरान उनके खिलाफ वोट किया था। अब अंतिम विजेता जून के अंत में होने वाले मुकाबले के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार से आम चुनाव में भिड़ेगा। चलते चलते हम आपको याद दिला देते हैं कि बुलेटिन के तुरंत बाद आज की चर्चा कार्यक्रम आप सुन पाएंगे और देख पाएंगे फेसबुक तथा AM2 रेडियो चैनल पर। और आज के लिए विषय चुना गया है पशुपालन। आज के लिए मुख्य मेहमान हैं फागे के अधिकारी जो कि है गायत्री जालिम बिसिसर और रेखानन विदेशी, और प्रस्तुतकर्ता हैं नीतुषा रामप्रोगस। इसी के साथ ये संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Welcome to RM2.
2: Musty Mornings, Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नौ मिनट हो चला है ना आप कनेक्टेड हो चुके हैं मस्ती मॉर्निंग के साथ.
3: राइट, गुड मॉर्निंग एंड यस, इट्स टाइम टू मूव ऑन विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक. और हम तो चाहेंगे कि आप ऐसे हमारे साथ जुड़ें और यही करें कि साहब मॉर्निंग में जहां पर वेदा ने शुरुआत कर दी, गियर चेंज करने का वक्त आ गया. यस, इट्स टाइम टू गो ऑन विद 9 से 12 तीन घंटे का शो. और वीकेंड के बाद तो सब होता है थोड़ा स्लो. अब तुम्हारा हाल चाल कैसा निर्मली?
2: मेरा हाल चाल तो ठीक है. आज आपको बता दूं कि है इंटरनेशनल म्यूजियम डे.
3: राइट, वहीं पर मानुषी छिल्लर और अली जफर का भी बर्थडे है. आप भी अपना बर्थडे मना रहे हैं, सो ऑल द बेस्ट. चलिए, म्यूजिक बात हो गया.

0: अपनी मस्ती जारी रहेगी, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, हाउस होल्ड डेको स्टेप्स, और साथ में होंगी आपकी राशियां थोड़ी देर में।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: और जाप के लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं वेदर।
1: एरीज मेष राशि,
0: आज आपकी एनर्जी फुल ऑन रहेगी, काम जल्दी कंप्लीट होगा और कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा। लकी कलर है रेड और नंबर है आपका 9।
1: टॉरस वृषभ राशि,
0: थोड़ा सेल्फ केयर और रेस्ट जरूरी है, ओवरथिंकिंग से दूर रहो और पॉजिटिव वाइब्स को मेंटेन करो। लकी कलर आज आपका है ग्रीन और नंबर है 6।
1: जेमिनी मिथुन राशि,
0: आज कम्युनिकेशन से फायदा ही फायदा है, किसी पुराने दोस्त या स्पेशल पर्सन का मैसेज भी आ सकता है। लकी कलर है येलो और नंबर है 5।
1: कैंसर कर्क राशि,
0: इमोशंस को नियंत्रण करना सीखिए, फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए परफेक्ट दिन है। लकी कलर आपका है व्हाइट और नंबर है 2।
1: लियो सिंह राशि,
0: स्पॉटलाइट आज आपके नाम ही रहेगी, कॉन्फिडेंस और चार्म से आप सबको इम्प्रेस कर सकेंगे। लकी कलर आपका है गोल्डन और नंबर है 1।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: इन्हें आज प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा ही बेनिफिट मिलेगा, छोटे छोटे स्टेप्स भी बड़े सक्सेस ला सकता है। लकी कलर है नेवी ब्लू और नंबर है 4।
1: लीब्रा तुला राशि,
0: बैलेंस मेंटेन करना है आपको लव लाइफ और रिलेशनशिप्स में भी, गुड वाइब्स रहेंगी। लकी कलर आपका है पिंक और नंबर है 7।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, बस अपने इंस्टिंक्ट्स जो है उनको फॉलो कीजिए। कल आपका है मरून और नंबर है 8।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: एडवेंचर और एक्साइटमेंट का मूड रहेगा, नए आइडियाज या प्लान्स आपको मोटिवेट करेंगे। लकी कलर है पर्पल और नंबर आपका है 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आपकी जो हार्डवर्क है वो फाइनली नोटिसेबल होगा, आपको बस पेशेंस रखना है। लकी नंबर आपका है 3 और कल आपका है ब्लू।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: एंड यस हमारे जो पाइसेस लोग हैं, आज आपको बस लव पर फोकस करना है, क्योंकि आज आपकी लव लाइफ रंगीन होने वाली है। लकी नंबर है 4 और कल आपका है समुद्री हरा।
1: पाइसेस मीन राशि,
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेड।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 9:32 हो चला है ना, आज एक्वेरियस राशि के लिए जैसे सस्पेंस का माहौल बना दिया, ऐसा नहीं है कि हमने आपको भुला दिया। तो जानना चाहते हैं आप अपना राशि, तो सुनिए आज के दिन आपके जो क्रिएटिव आइडियाज है वो शाइन करने वाले हैं। बत्ती ऑन हो चुकी है, आपको बस मेंटेन करना है अपना रिदम। लकी कलर आज आपका है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 11।
3: Radio Musti.
0: Hit music only.
3: Feels a musty. Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Alrighty, it's time to go on with technology. वैसे बात करें तो हर कोई कोशिश कर रहा है कि ऐसी मशीन्स बने, ऐसा AI integrated support system जो आने वाले टाइम में लोगों के हेल्थ के लिए अच्छा हो. और अभी बात करते हैं कुछ टाइम पहले निर्मणि CPR के बारे में. अभी एक रोबोट आ गया है CPR, एंड इसको कह रहे हैं Luca 3.

0: बहुत इंटरेस्टिंग है। आयशा बताएं कि ये है क्या होता है कि जब किसी इंसान की जान बचाने का इकलौता तरीका रह जाए होता है सीपीआर। तो बस इसमें होता है कि अगर आप ट्रेन हैं तो आपको छाती को दबाना होता है लगभग 2 इंच तक एंड आप उसको रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी बार ये होता है कि आप जब उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जब आप उसको हॉस्पिटल ले आ रहे हैं, तो ऐसे है एम्बुलेंस के अंदर उसको हिलने डुलने की वजह से आप उसको सीपीआर नहीं दे पाते। डिवाइस की बात करें तो छाती पर एक फ्रेम की मदद से फिट हो जाता है और इसे मरीज की पीठ के नीचे एक सपोर्ट बोर्ड लगाकर छाती के ऊपर फिट कर दिया जाता है। इसके बाद एक सक्शन कप होता है जो सीधे छाती के बीच बैठ जाता है। ऑन होने पर मशीन ऊपर नीचे होने लगती है, नॉर्मल सी बात है, जैसे आप एक नेचुरल एक रिदम पकड़ते हैं, और मरीज की छाती को ठीक उसी रफ्तार लगभग 100 से 120 बार पर मिनट दबाती है और गहराई लगभग 2 इंच, जैसे कि मेडिकल गाइडलाइंस में डॉक्टर को सिखाया जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप चाहते हैं कि बंदे को रिवाइव कर पाएं और इंसान सीपीआर देते हुए 5 से 10 मिनट में जहां पे थक जाता है मशीन जस्ट कैरीज ऑन। और ऐसे में रोबोट बेहतर साबित होता है क्योंकि ये बिना रुके बिना थके घंटों तक परफेक्ट सीपीआर दे सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि इंसान को होना ज़रूरी है कि देखे कितने पैरामीटर्स ठीक हो रहे हैं, लेकिन रोबोट के इस्तेमाल से डॉक्टरों के हाथ खाली हो जाते हैं और वो मरीज को दूसरी जगह जो दवाइयाँ हैं जो देनी हैं वो दे पाते हैं। चलती गाड़ी या मरीज को स्ट्रेचर पर सीढ़ियों से उतारते समय भी रोबोट बिना रुके परफेक्ट तरीके से सीपीआर दे सकता है।
1: ये तो काफ़ी लाभदायक है।
0: बहुत लाभदायक है और मेरे ख्याल से जिसने सोचा है बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि इंसान को ट्रांसपोर्ट करने में ही उसकी जान जा सकती है और यहाँ पर ये पूरा मददगार साबित होता है।
2: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: सभी के लिए चलते हैं बी टाउन की ओर
2: और वहीं पर कुछ मूवी रिलीज हुई। जब मंडे की बात होती है तो फ्राइडे की मूवीज की बात होती ही है और वी टॉक अबाउट पति पत्नी और वो दो। अच्छा वो दो अभी कौन है पता नहीं, लेकिन साथ साथ में आखिरी सवाल ये भी जिसमें संजय दत्त नजर आए। चलिए बात करते हैं रविवार को बॉलीवुड फिल्म पति पत्नी और वो दो और आखिरी सवाल को छुट्टी का फायदा मिला। होता है कि वीकेंड में लोग प्लान बनाते चलो मूवी देखने आते हैं, कलेक्शन में बस जो वृद्धि है वो बढ़ती चली गई
0: एंड अभी के लिए वो क्रॉस कर रही है 24 crores।
2: क्या बात है, वाह भाई वाह,
0: स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के साथ
2: स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। और मजा आया क्योंकि अगर हम बात करें तो दो दिन में ही मूवी ने कमा लिए थे 5.75 एंड 7.75 करोड़, यानी कि पहुंच गए थे 12-15 करोड़ के पास। फिर वीकेंड खत्म होते होते 20 करोड़ के आसपास फिल्म पति पत्नी और वो दो। भाई कहानी की अगर बात करें तो इसमें आयुष्मान खुराना है, साथ साथ में सारा अली खान, वामी खान गब्बी, रकुलप्रीत सिंह राइट ये भी हैं। और वहीं पर जैसे हमने कहा कि आखिरी सवाल ये है संजय दत्त की मूवी, संडे को रिलीज हुई और उसको भी कुछ अच्छा कलेक्शन देखने का मौका मिला। तीसरे दिन 80 लाख रुपए कमाए जबकि दूसरे दिन आखिरी सवाल ने 75 लाख कमाया, तो धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, अच्छी बात है। एंड चाहे वो रफ्तार इतनी नहीं पकड़ पा रही हो इन फेज ऑफ पति पत्नी और वो दो, लेकिन फिर भी संजय दत्त अपने आप में एक अलग ही कहानी है। चलने दो बाबा बाबा, देखते हैं क्या होता है, क्या करता है बॉलीवुड का ढाबा। बात करें कुछ और हम थोड़ी देर में, स्टे ट्यून्ड। आपके मैसेजेस साथ में बी टाउन की खबरें और कुछ होम देखो, कुछ घर की बातें।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बता दें कि अभी यहाँ पर एक गेम चल रहा है जहाँ पर आपको मिल सकता है एक राइड. वी टॉकिंग अबाउट मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड की तरफ से आज से शुरुआत हो चुकी है. सो डोंट फॉरगेट, अगर आप सुनते हैं एमबीसी रेडियो को, एंजॉय करते हैं और डाउनलोड करते हैं एमबीसी प्ले और नया वाला एप्लीकेशन, तो बस आपको मौका मिलेगा टू पार्टिसिपेट. बस डाउनलोड कीजिए एमबीसी प्ले एप्लीकेशन, अपना एक एमबीसी प्ले अकाउंट बनाइए और व्हाट्सएप के जरिए हमारे नंबर पर यानी कि 5491294 पर एक स्क्रीनशॉट भेजे जहां पर दिखेगा एक्टिव एमबीसी प्ले अकाउंट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, और जो नंबर कम्युनिकेट किया गया है आपको यानी कि 5491294 पर. बस आपको बता दें कि आपका नाम हम शॉर्टलिस्ट कर लेंगे और उसके बाद दोपहर के शो में यानी कि 4 to 6 के बीच में आपको बताया जाएगा कि कौन बनता है आज का शॉर्टलिस्टेड इंसान जो पहुंचेगा सीधा फाइनल्स में. देखते हो सकता है ये हेलीकॉप्टर राइड आपकी हो जाए. तो बस डोंट फॉरगेट, अभी आपको थोड़ा प्रोमो सुनाते हैं, आपको वहीं पर ले जाते हैं.
1: À l'occasion lancement MBC Play, préparez-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir la chance des grands gagnants pour un pot d'étiquette Saken pour un hélicoptère Joyride exceptionnel dans région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et créez un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, restez à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voir un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé un compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la chance, participez dans le grand final le 29 mai. MBC Play, avec vous, partout. Pour plus d'informations, téléphone-le 400D 8000. Conditions applicables.
2: Kuch kuch hota hai Rahul, tum nahi samjhoge.
3: Ladki badi anjaani hai.
4: Radio Musti, all the way.
5: Jab tak tiger mara nahi, tab tak tiger hara nahi.
6: Allah bachaye mujhe tere war se.
4: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.
7: RM2 Radio Musti.
0: The time is brought to you by
8: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
9: North, South,
10: 103.5.
9: East, West,
10: 96.4.
9: Center,
10: 99.4.
4: RM2
7: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
9: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
11: सुबह के 10 बजे है

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अर्षिता। नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। कौतूहल में कल शाम एक स्वास्थ्य ट्रक का हिंसा और अफरा तफरी का केंद्र बन गया। इलाके में उस समय भारी तनाव फैल गया जब हिंसक झड़पों ने पूरे क्षेत्र को दहशत में डाल दिया। वहां मौजूद लोगों के अनुसार सड़क पर कई धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दी, जिन्हें गोली चलने की आवाज बताया जा रहा है। तनाव की मुख्य वजह इस वॉकिंग ट्रक पर क्वाड बाइक की मौजूदगी थी, जिसका स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया। पहले कहासुनी हुई, फिर मारपीट हुई, फिर और देखते ही देखते

0: ये स्थिति बेहद हिंसक हो गई। झड़प के दौरान तलवार और बंदूक का इस्तेमाल किया गया। एक वाहन को आग के हवाले भी कर दिया गया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिसमें स्पेशल सपोर्ट यूनिट के एलिट टीमों को भी शामिल किया गया। कल रात 9 बजे तक पुलिस इलाके में शांति बनाए रखने और हालात काबू में करने की कोशिश में जुटी हुई थी। गोलीबारी और तोड़फोड़ की इन गंभीर घटनाओं की जांच जारी है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके। अब बात एक ऐसे राजनीतिक जुबानी जंग के बारे में करें। कल रात गजाउद्दीन ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि एमएमएम का फेसबुक पेज अब पुल बेरोजे के फ्रों मिलिटों प्रोग्रेसिस का पेज बन गया है। उन्होंने कहा कि जुदफिन कुक का नू पास फेसबुक, यानी उन्होंने हमारा फेसबुक पेज चुराया है। एमएमएम के अध्यक्ष ने यह भी दावे का समर्थन करते हुए फेसबुक का एक स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें पेज का नाम मूवमेंट मिलिटों मॉरिशियन से बदलकर फ्रों मिलिटों प्रोग्रेसिस और एडमिन के रूप में जोआना बेरोजे का नाम दिखाई दे रहा था। हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ कि एमएमएम का आधिकारिक फेसबुक पेज नहीं बल्कि एक निजी समूह था। इसके जवाब में जोआना बेरोजे ने भी तंज कसते हुए कहा कि गजाउद्दीन को दोनों पेजों के बीच फर्क समझना चाहिए था। उन्होंने अपनी निजी फेसबुक पोस्ट में लिखा, पास एमएमएम ओंकू इंटैक्ट लिका पाव आरेट प्लोरे, यानी कि उनका एमएमएम फेसबुक पेज अभी भी वहीं पर है और वे रोना बंद कर सकती हैं। फिलहाल ये मामला राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दो बड़े समूह और हर साल बढ़ते हुए प्रभावशाली आंकड़े, आईबीएल और ईओ ग्रुप ने अपने वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों के परिणाम सार्वजनिक किए हैं, जो 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए। दोनों ही मामलों में स्पष्ट और मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। ये दोनों स्थानीय और क्षेत्रीय निजी क्षेत्र के बड़े समूह हैं, जो वैश्विक अस्थिरता, भू राजनीतिक तनाव और व्यापार युद्ध जैसी चुनौतियों के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। इन दोनों समूहों के पास मिलकर 53,000 से अधिक कर्मचारी हैं और वे कई दर्जन देशों में सक्रिय हैं। उनके परिणाम केवल आंकड़े नहीं माने जा रहे हैं, बल्कि इन्हें देश की आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण संकेतक, यानी थर्मोमीटर और बैरोमीटर कहा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नेदरलैंड दौरा रविवार को संपन्न हुआ। दोनों देशों के बीच 17 महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी। रक्षा, व्यापार, ग्रीन हाइड्रोजन और टेक्निक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। इस दौरे को भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। सात्रे सुन पाएंगे शोक समाचार। नंबर 74 एवेन्यू दी जीरोंडेल सुदनाक में, इकहत्तर साल की 71 साल की श्रीमती वीरामा जोगिया पैदा श्रीनाम कुतिदा सन्यासी और जिन्हें बामा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके घर एवेन्यू दी जीरोंडेल सुदनाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टूटियर 2:30 PM। ओलिविए स्ट्रीट पॉइंट सब्ल में 73 साल के 73 साल के श्री प्रेमनाथ रंगेन जिन्हें भाई के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2 बजे एलियनसन लातोकेनिक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेंदी पापाई की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टिडिया 2 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Welcome to RM2.
3: Musty Mornings, Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: यस 10:10 हो चला है रूम एक क्वेश्चन वापस स्वागत करते हैं आपका आरम जो वीडियो मस्ती पर
3: राइट वीकेंड की बात होता है कि आप बहुत

0: मुश्किल में आ जाते हैं, स्नूज पे स्नूज, और फिर लगता है कि कब करूंगा एनर्जी लूज, लेकिन फाइनली होता है कि आप मंडे को शुरू नहीं कर पाते, वार्म अप नहीं हो पाता नहीं। और मंडे मॉर्निंग द मोटिवेशन थ्रू म्यूजिक इज राइट हियर ऑन RM2, लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरा घंटा निर्मणि विकास आपके साथ।
1: Radio Musti. Hit music only.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: And as it's your musty morning, and अभी के लिए पढ़ लेते हैं आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस. आप हैं सुरिनाम से यालिश, हमारे बड़ी जो इन्जॉय कर रहे हैं रेडियो को, गानों को भी वाइब कर रहे हैं. एंड वी हैव आप हैं सिस्टर इन लॉ नीलव और आपके लवली ब्रदर इन लॉ कुणाल. आपका वेडिंग एनिवर्सरी था कल और विशेज आपके लवली बहन ने भेजा है. एंड वी ऑल्सो हैव आप हैं रमेश सिंह पंजाब से सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं गानों को. ऐसे ही कीप लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती, क्योंकि अमेजिंग गानों के साथ साथ टिप्स भी आने वाले हैं. तो यही पर स्टे ट्यून, कीप वाइबिंग.
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अक्सर हमने मूवीज में देखा कि निकल पड़ता है इंसान अपना एक्टर हेलीकॉप्टर राइड लेकर अपनी हीरोइन को ढूंढने, लेकिन अब अपनी हीरोइन को लेकर आप हेलीकॉप्टर राइड में ही जा सकते हैं। नेल मनी, इट्स अ बिग चांस। हम बात कर दे रहे हैं।
3: एग्जैक्टली exactly, हाँ, आप बता रहे थे कि हम जब MBC प्ले आपको डाउनलोड करेंगे तो हमें चांस मिल सकता है
2: टू बी ऑन द हेलीकॉप्टर
3: राइड
2: मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड की तरफ से और एमबीसी के साथ के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बता दें कि एमबीसी प्ले का नया ऐप आ चुका है। बस आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है या फिर आप गैलरी के अंदर जा सकते हैं, वहां पर जाकर आप पता लगाइए, उसको डाउनलोड कीजिए। आप जिसको डाउनलोड करते हैं तो आपको एक कन्फर्मेशन मिलेगी अपने फोन पर। जब आप रजिस्टर करते हैं उस ऐप को तो आपको एक कन्फर्मेशन मिलेगी आपके नाम के साथ कि प्लीज टू हैव यू ऑन बोर्ड विद एमबीसी प्ले एंटरटेनमेंट। तो बस वो जो स्क्रीन शॉट है ना अपने नाम के साथ, वो भेजिए ऑन 5499-1294 पर। राइट, आपके नंबर के साथ, आपके नाम के साथ आपको हम एक मौका देंगे कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाए। इसलिए आपको सुनना होगा रफ्तार वाइब्स। ये होगा 4 से 7 के बीच में, जहां पर पता लगेगा कि आज के दिन का वो कौन इंसान है जिसको हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, और आपको फिर फोन किया जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने सही जवाब दिया देन यू कुड बी द फाइनलिस्ट। और ये 28th तक गेम चलने वाला है और 29th को आपको पता चलेगा कि आपने जीता है हेलीकॉप्टर राइड की नहीं। सो डोंट फॉरगेट, एमबीसी प्ले ऐप आपको डाउनलोड करना है। जब आपको रजिस्ट्रेशन करने पर एक मैसेज आएगा एमबीसी ओटीटी का, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेजना है 5499-1294, और यहां पर शॉर्टलिस्ट हम करेंगे। शाम के शो में आपको फोन करेंगे क्वेश्चन के साथ, आपने सही जवाब दिया शुक्रिया, और आपको इंक्लूड कर लेंगे फॉर द फाइनल्स जो होगा ऑन द 29th। किसको मौका मिलेगा देखेंगे, लेकिन अभी इट्स टाइम टू डाउनलोड द एमबीसी Play app.
4: À l'occasion lancement MBC Play, prépare-vous pour décoller.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: थैंक यू सो मच इतने सारे मैसेजेस के लिए, लेकिन आपको बता दूं एक बार फिर से, एमबीसी प्ले का एक पुराना एप्लीकेशन है भाई, आप जानते हैं आपने डाउनलोड कर रखा है, तो उसकी फोटो मत भेजिए। आपको बता दें कि उसको तो हटाया जाने वाला है जून के महीने से ही, लेकिन आपको ये जरूर मैं याद दिला दूं कि आपको डाउनलोड करना है एमबीसी प्ले 1.0। राइट, सही सुना, एमबीसी प्ले 1.0। तो जब आप उसको डाउनलोड करते हैं और रजिस्टर करते हैं तो फिर आपको एक मैसेज आता है, आपको उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर भेजना है, उसमें आपका नाम होगा और आपको बताया जाएगा कि वी प्लीज टू हैव यू ऑन बोर्ड एमबीसी प्ले। तो वो जो मैसेज है आपके फोन पर, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर भेजना है ऑन 5499-1294 व्हाट्सएप पर। और फिर सुनना ना भूलें, पूरे दिन कोशिश कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बताइए, अपने कलीग्स को बताइए, पूरे परिवार को बताइए और ढेर सारे मैसेजेस भिजवाइए, क्योंकि भाई यहाँ पर एक चांस है जीतने का फॉर अ कपल फॉर अ हेलीकॉप्टर राइड, ये पता चलेगा ऑन द 29th ऑफ मे। तो बस भूलिए मत, आपके पास टाइम है, डाउनलोड कीजिए एमबीसी प्ले 1.0। आपको जो मैसेज मिलता है रजिस्टर करने पर एमबीसी ओटीटी, वो आपको भेजना है स्क्रीनशॉट ऑन 5499-1294 व्हाट्सएप। और फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपका नाम आया कि नहीं 4 to 7 के शो के अंदर, जो होगा रफ्तार वाइब्स। तो बस तैयार हो जाए इसके लिए, लेकिन पहला काम, डोंट फॉरगेट टू सेंड इन द स्क्रीनशॉट। ऑल द बेस्ट।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: करोना।
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: टाइम फॉर योर मंडे फैशन टिप। दोस्तों, वीक की शुरुआत करो सिंपल लेकिन क्लासी लुक के साथ। लाइट कलर्स जैसे कि बेज, वाइट, पास्टल ब्लू या फिर सॉफ्ट पिंक मंडे मूड को फ्रेश और एलिगेंट बनाते हैं। अगर ऑफिस या यूनिवर्सिटी जा रहे हो भी, पेयर योर आउटफिट विद क्लीन स्नीकर्स, स्टाइलिश भी है और कंफर्टेबल।

0: भी। एंड रिमेंबर कि कॉन्फिडेंस होता है आपका बेस्ट एक्सेसरी। अगर आप खुद को अच्छा फील कराते हो तो आउटफिट ऑटोमेटिकली अमेजिंग लगता है।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। RM2
2: रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Oh yes, lovely ladies, haven't forgotten you. क्योंकि घर पर बैठे बैठे म्यूजिक के साथ दे रही, लेकिन काम भी चल रहा है. Nil money, it's not easy, हाँ, घर का काम करते करते.
3: हाँ,
2: और ये भी होता है कि बहुत सारी मुश्किलें आती है ना. उफ, ये स्टेन दे दें, कितने सारे पेन, स्क्रब स्क्रब स्क्रब, ये दाग जाएंगे कब कब कब. ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं. राइट, टॉकिंग अबाउट जो टाल्स होते हैं ना, किचन टाल्स, कभी कभी एंग्री यंग मैन की तरह काफी कड़क हो जाते हैं.
3: ये सच है.
2: हाँ, और उनको सॉफ्ट करना बहुत जरूरी है. तो ऐसे में करें क्या, बस ऐसा कीजिए कि सॉफ्टनेस लाने के लिए आपको उसके अंदर डालना होगा साफ करते हुए व्हाइट विनेगर, थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, उसमें रिंस कर लीजिए, और फिर देखिए बॉलीवुड जैसे स्लो मोशन में आ जाएगा, यानी सॉफ्ट वाला सीन आ जाएगा. ओए हो, क्योंकि कहते ना कि साहब, अगर चीज़ें आसपास अच्छी हों तो काम करने का मज़ा आता है. वहीं पर खाने पीने के चक्कर में कभी कभी तुमने कभी आंसू निकाले प्याज काटते काटते?
3: हाँ, ये तो हर बार होता है.
2: हाँ, ये तो अनिन का इमोशनल अत्याचार है जो तुम्हें रुलाता है, और काटने के बाद ही प्याज में स्वाद आता है. राइट, टॉकिंग अबाउट अनिन, तो अनिन को काटने से 10 मिनट पहले फ्रिज में रख दीजिए. आंखों का जो ड्रामेटिक क्राइंग सीन है ना, वो कम हो जाएगा. हाँ, ये सच बात है. बस नाइफ को शार्प रखिए, क्योंकि ब्लंट नाइफ प्याज को भी इरिटेट कर देता है, इसलिए आपको काफी आंसू देगा. चलिए, बात कर रहे हैं हम धीरे धीरे ट्रांजिशन की, गर्मी से सर्दी की तरफ. तुमने अपने गर्म कपड़े निकाले वार्डरोब में से?
3: नहीं, अभी तक नहीं.
2: अरे क्या कर रही हो, विंटर वेयर निकालने का सीजन आ चुका है. स्वेटर्स जैकेट्स को पहनने से पहले थोड़ी देर हवा और सनशाइन की एंट्री जरूर कराइए, क्योंकि वही हमारी पिक्चर का हीरो जो सारी जो स्मेल है उसको दूर कर देता है. कवर्ड में नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं, या फिर लैवेंडर के साशे. वो इसलिए क्योंकि वो स्मेल बहुत बढ़िया आती है, स्मेल मस्त, और कपड़े भी फ्रेश जबरदस्त.
1: Welcome to RM2 Radio Musty.
4: Radio Musty.
5: Hit music only.
4: Feels a musty.

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अशिता नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी का स्वागत किया जाता है। उच्च स्तर की गोपनीयता के लिए प्रसिद्ध मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीग्राम का मॉरिशस में कुछ लोग कथित तौर पर अवैध गतिविधियों के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्लेटफॉर्म पर कई निजी समूह सक्रिय हैं जिनमें हजारों सदस्य शामिल हो सकते हैं और जहां अश्लील तस्वीरें तथा वीडियो साझा किए जाते हैं। कुछ आरोपों के मुताबिक इन समूहों में मॉरिशस की महिलाओं और यहां तक कि नाबालिगों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री भी प्रसारित की जा रही है।

0: समूहों में प्रवेश के लिए संचालकों द्वारा 500 से 2000 रुपए तक का मासिक शुल्क मांगा जाता है, जबकि पेमेंट की व्यवस्था इस तरह की गई है कि बिना सीधे बैंक कार्ड लेन देन के रकम प्राप्त की जा सकती है। इसी बीच गुरुवार को एक नाबालिग लड़की ने अपने पूर्व साथी पर टेलीग्राम पर उसकी निजी तस्वीरें बेचने का आरोप लगाया। हालांकि 25 वर्षीय युवक ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह इसके सबूत देखना चाहता है। दो बड़े समूह और हर साल बढ़ते हुए प्रभावशाली आंकड़े। आईबीएल ने अपने वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों में 94.8 बिलियन रुपए का कारोबार दर्ज किया है, जो 15% की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी का परिचालन लाभ भी 25% बढ़कर 7.1 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है। समूह के सभी प्रमुख क्षेत्रों ने इस वृद्धि में योगदान दिया है, जिनमें रिटेल क्षेत्र शामिल है, जिसमें केन्या की नेवास और मॉरिशस की विनर्स श्रृंखला प्रमुख है। औद्योगिक क्षेत्र में विशेष रूप से जहाज निर्माण ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि सेवाओं के क्षेत्र में लक्स होटल्स में ऑक्यूपेंसी दर में सुधार दर्ज किया गया है। कंपनी ने अपने कर्ज ढांचे में भी सुधार किया, जहां शुद्ध कर्ज और IBTDA का अनुपात 3.8 से घटकर 2.8 हो गया है। दूसरी ओर ईओ ग्रुप ने 22% की वृद्धि के साथ 3.8 बिलियन रुपये का लाभ दर्ज किया है। इस वृद्धि में होटल क्षेत्र का अहम योगदान रहा, जहां लाभ 43% तक बढ़ा है। और मॉरिशस का कला जगत शोक में डूब गया है। प्रसिद्ध चित्रकार मूर्ति नगालिंगम का एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद कल 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मूर्ति नगालिंगम केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि कला और संस्कृति के सशक्त निर्माता थे। वे MGI के फाइन आर्ट स्कूल के पूर्व निदेशक थे और 43 वर्ष पहले स्थापित किए गए मशहूर सालों दो मे के संस्थापक भी थे। मूर्ति नगालिंगम का अंतिम संस्कार आज दोपहर किया जाएगा। अंतिम यात्रा दोपहर 3:30 बजे एलियंसन सेंटर से निकलेगी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्हाइट हाउस ने रविवार को अमरीकी राष्ट्रपति से जुड़ा एक नया फैक्टशीट जारी किया, जिसमें सरकार की प्रमुख नीतियों और हालिया फैसलों की जानकारी दी गई है। दस्तावेज में आर्थिक योजनाओं और विदेश नीति पर भी प्रकाश डाला गया। प्रशासन ने इसे पारदर्शिता और जन जागरूकता की दिशा में अहम कदम बताया। फैक्टशीट को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रही सुन पाएंगे एक शोक समाचार। नंबर 71 रू दे रोंडू पेरिस फ्रांस में 64 साल की 64 years old की श्रीमती सिल्का राजा, जिन्हें सरोज के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहले बंजन रोज सूरीनाम रहती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 1:00 बजे उनके घर रू दे रोंडू पेरिस फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए जुपे अला शेज रू दे रोंडू पेरिस की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM इन फ्रांस। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: Welcome to RM2.
3: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: Yes, Musty Morning के तीसरे और आखिरी आवर में आपका फिर से स्वागत करती है।
3: Right, we're right here. और हम तो मॉर्निंग से ही आपके साथ जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग हमारे साथ दे रहे हैं, इंटरनेशनल लिसनर्स, अ बिग हेलो एंड इट्स योर टाइम टू डाउनलोड MBC Play 1.0। और जैसे आप जानते हैं कि अभी जीतने का मौका है, यू कुड बी विनिंग अ हेलीकॉप्टर राइड। तो इस मौके को मत गवाओ, जल्दी से अपने स्क्रीनशॉट पहुंचाओ। जैसे हमने कहा कि MBC Play 1.0 डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करना होता है, तो फिर आपको जो मैसेज मिलता है अपना नाम देखकर, वहीं पर MBC OTT का जो मैसेज आया उसको स्क्रीनशॉट करके भेजो 54991294 एंड हियर्स योर चांस। हो सकता है कि आपको इनाम मिल जाए, क्या पता। चल, इस घंटे में कुछ और मस्ती होगी, बॉलीवुड की बात करेंगे, हाउसहोल्ड देखो, कुछ और
2: क्यों नहीं
3: जरूरी है, फ्रॉम एक्सरसाइजेस टू ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, म्यूजिक देगा आपको फुल ऑन एनर्जी, नो डाउट।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only. Welcome to RM2.
2: Musti Mornings. Radio Musti.
3: हाँ, ये सच बात है कि इंसान सुबह उठकर भाग दौड़ी में लगता है, लेकिन खाना पीना बिकम्स द कोर। यानी कि आपको ये तो सोचना है कि ब्रेकफास्ट में क्या, लंच में क्या, डिनर में क्या। हाँ, लेकिन थोड़े से चेंजेस लाएंगे तो काफ़ी मज़ा आता है। देखा कि अब इंटरनेट के जरिए बहुत सारे लोग खाना पीना बनाना सीख रहे हैं,
4: बहुत सारे रेसिपीज होते हैं
3: एंड काफ़ी लोग हेल्दी चॉइसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, यू नो। एंड ये देखना कि नट्स शामिल करें अपने खाने पीने में, हेल्दी स्नैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
4: सीड्स भी डालते हैं।
3: हाँ, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स और इवन वॉलनट से लेकर आलमंड से लेकर कैशू से लेकर, ओह लिस्ट काफ़ी लंबी है। सो जस्ट गिव इट योर चॉइस। अच्छा, खाने पीने की बात हो रही है तो तुमने सुशी ट्राई की कभी?
4: हाँ, की है।
3: मैंने सुना कि तुम्हारे नाक में घुस गया था।
4: वो जो सॉस होता है।
3: अच्छा, ये बताओ, अगर सुशी और हनी भी दोनों मिले तो सुशी ने बी से क्या कहा? सुशी ने बी से क्या कहा? उसने कहा वसाबी वसाबी।
1: Welcome to RM2.
2: Musti Mornings. Radio Musti.
3: अच्छा, तुम्हें पता है कि जो बी आती है अमेरिका से उसको क्या कहते हैं?
4: पता नहीं।
3: USB.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: बॉस, आपने नोटिस किया है कि आजकल के भागा दौड़ी में लोग अपने हेल्थ को नजरअंदाज कर देते हैं।
3: और जाने किसके पीछे भाग रहे हैं, इतना भागना दौड़ना किस चीज के लिए? और अगर हेल्थ ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? I mean, finally you realize इंसान को अपना टाइम लेकर सब कुछ करना चाहिए। अच्छा, खाने पीने की बात करते हैं। खाने पीने में भी इतनी जल्दबाजी, इसलिए मेरे ख्याल से नाम आ गया फास्ट फूड। बस पकड़ के जल्दी से खाओ और निकल जाओ। भाई स्लो ईटिंग मतलब जल्दी का काम, शैतान का काम। और स्लो ईटिंग यानी कि डाइजेशन का हीरो। ये हुई ना बात। सोचो, जब आप खाना धीरे धीरे चबाते हो तो बॉडी को सिग्नल मिल जाता है कि बस सिस्टम रेडी है डाइजेस्ट करने के लिए। और सलाइवा अच्छे से मिक्स होता है फूड के साथ, यानी कि डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है मुंह से ही। ये कमाल की बात है। स्टमक पर लोड कम पड़ता है जब आप आराम से खाते हैं, यानी कि एसिडिटी, ब्लोटिंग कम हो जाती है और आपको जल्दी फुलनेस वाली फीलिंग होती है। नहीं तो आपको टाइम नहीं मिलता कि आप कितना खा रहे हो, कितनी जल्दी चबा रहे हो और कितना

0: और खाएं, मतलब पता नहीं लगता लाइन कहाँ बना है। ओह, अगर आप खाना फास्ट फॉरवर्ड में खाते हो तो बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी, ये इंटरवल है या क्लाइमेक्स। सोचने वाली बात है नहीं, इसलिए जब भी आप खाओ थोड़ा सा टाइम लेकर, क्योंकि बेनिफिट्स जान लो। हेल्थ बेनिफिट्स ये है कि बेटर डाइजेशन, गैस कम, हैवीनेस कम, वेट कंट्रोल में रहेगा क्योंकि आप एक्स्ट्रा नहीं खाओगे, खाने को चबा चबा के उसका स्वाद लेकर खाओगे। न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन बेटर होगा और माइंडफुल ईटिंग यानी कि स्ट्रेस भी कम होता है। इसलिए जब खाओ तो ज्यादा चबाओ और सारी टेंशन को दूर भगाओ।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Mic testing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. हाँ, लगता है कि जिंदगी के अंदर कब होंगे फ्री. हाँ, ये तो सच बात है. काम करते करते थोड़ी सी प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है. तुम भी करती है? क्या करती तुम? कितने पीस?
3: हाँ, 4 पीस होते हैं.
2: 4 पीस? हाँ, बताना.
3: हाँ, ईच का मतलब होता है, पहला वाला पी है प्रायोरिटाइज, दूसरा वाला प्लान, तीसरा वाला प्रिपेयर, चौथा वाला परफॉर्म.
2: अरे क्या बात है. सोचो अगर लाइफ एक बॉलीवुड मूवी हो, हाँ, तो फिर टाइम उसका डायरेक्टर होता है. यानी क्या पता चलता है कि इस टाइम पर क्या करना है. और पहले तो ये है कि प्लानिंग की पावर समझ लो. सुबह उठते डिसाइड करो कि आज का हीरो कौन सा काम बनने वाला है, कौन सी वो चीज़ें हैं जैसे कहा प्रायोरिटाइज, ये बहुत ज़रूरी है. जो टास्क है उनको लिख लो, उसके बाद कल करे सो आज कर, ये वाला मोमेंट करना बहुत डिसाइड है. नहीं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं हाँ टाइम है कल कर लेंगे, लेकिन ये जो आदत है ना ये ख़राब होती जाएगी. इसलिए स्ट्रेस का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वो बजने लगेगा पीछे पीछे. इसलिए काम को ख़त्म करो. दूसरा, डिस्ट्रैक्शन उसको भगाओ, थोड़ा सा फोकस लगाओ. सब अटेंशन का काम है भाई. वैसे सेट टाइम स्लॉट्स के अंदर पूरा काम खत्म करना ये ज़रूरी है. उस टाइम में नो डिस्ट्रैक्शन. बैलेंस यानी कि एक बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी. बैलेंस करना, काम ही काम यानी कि बर्न आउट, सिर्फ चिल करना यानी कि नो ग्रोथ. इसलिए ज़रूरी है कि एक बैलेंस रखें, वर्क रेस्ट फैमिली.

0: सबको इक्वल स्क्रीन टाइम देना जरूरी है कि हर किसी का पिक्चर का हीरो बाहर निकल कर आए, खुशियां बटोर कर सारा पैसा फर्स्ट ले जाए। चलिए तो हम भी कहेंगे कि आप भी अपने मूवी के हीरो बनिए और सोच लीजिए कि कौन सा काम कब करना है, आगे बढ़ने से क्या डरना है।
1: Radio Musti. Hit music only. Feels a musti. Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: यस, इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त. खुश रहिए, हेल्दी रहिए और लाइफ को हर दिन थोड़ा और ब्यूटीफुल बनाते रहिए. मिलेंगे कल सेम टाइम आपके ही फेवरेट स्टेशन पर. सो टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड ऐसे ही स्टे ट्यून्ड योर RM2 रेडियो मस्ती, क्योंकि बाद में आने वाली है गिनेश आर रेट्रो रिदम के साथ आपको एंटरटेन करने के लिए.

0: We've got you the best music selection on RM2 Radio Masti here. So thank you so much, Mara Saad Dene Kile. To chaliye ji filhal ke liye, just check your time. It's exactly noon.
1: RM2 Radio Masti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
4: North, South,
5: 103.5.
4: East, West,
5: 96.4.
4: Center,
5: 99.4.
6: RM2
5: Radio Masti.
6: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
4: Radio Masti.
6: Feel the Masti.
0: आइए सुनते हैं समाचार राशिता के साथ. नमस्कार.
7: नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. कौतुगेल में कल शाम एक स्वास्थ्य ट्रक हिंसा और अफरा तफरी का केंद्र बन गया. इलाके में उस समय भारी तनाव फैल गया जब हिंसक झड़पों ने पूरे क्षेत्र को दहशत में डाल दिया. वहां मौजूद लोगों के अनुसार सड़क पर कई धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दी जिन्हें गोली चलने की आवाज बताया जा रहा है. तनाव की मुख्य वजह इस वॉकिंग ट्रक पर क्वाड बाइक की मौजूदगी थी जिसका स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया. पहले कहा सुनी हुई, फिर मारपीट शुरू हो गई और देखते ही देखते स्थिति बेहद हिंसक हो गई. झड़प के दौरान तलवार और बंदूक का इस्तेमाल किया गया. दो वाहनों को आग लगा दी गई. स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया जिसमें स्पेशल सपोर्ट यूनिट की एलईडी टीमों को भी शामिल किया गया. कल रात 9 बजे तक पुलिस इलाके में शांति बनाए रखने और हालात काबू करने की कोशिश में जुटी हुई थी. गोलीबारी और तोड़फोड़ की इन गंभीर घटनाओं की जाँच जारी है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके. गंगा तालाब में इटालियन पर्यटकों ने एक समूह से जुड़ी घटना के बाद पर्यटकों के एक समूह से जुड़ी घटना के बाद स्थल की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा के सम्मान को लेकर बहस फिर शुरू हो गई है. विशेष रूप से पर्यटकों के पहनावे और उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. दो बड़े समूह और हर साल बढ़ते हुए प्रभावशाली आंकड़े आईबीएल और ईओ ग्रुप ने अपने वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों के परिणाम सार्वजनिक किए हैं जो 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए. आईबीएल ने अपने वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों में 94.8 बिलियन रुपए का कारोबार दर्ज किया जो 15% की वृद्धि दर्शाता है. कंपनी का परिचालन लाभ भी 25% बढ़कर 7.1 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है. और साथ में आपको ये भी बता देती है कि ईओ ग्रुप

ने 22% की वृद्धि के साथ 3.8 बिलियन रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। इस वृद्धि में होटल क्षेत्र का अहम योगदान रहा, जहां लाभ 43% तक बढ़ा है। हालांकि समूह का कुल कारोबार स्थिर रहते हुए 34.4 बिलियन रुपए पर बना रहा। कंपनी ने क्षेत्रीय विस्तार को जारी रखते हुए नैरोबी में अपनी मौजूदगी मजबूत की है और जांजिबा में एक 5-star होटल के अधिग्रहण की योजना की पुष्टि की है। और आज मॉरिशस का कला जगत शोक में डूब गया है। प्रसिद्ध चित्रकार मूर्ति नागालिंगम का एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद कल 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मूर्ति नागालिंगम केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि कला और संस्कृति के सशक्त निर्माता थे। वे एमजीआर के फाइन आर्ट्स के पूर्व निदेशक थे और 43 वर्ष पहले स्थापित किए गए मशहूर सालों दे मेह के संस्थापक भी थे। मूर्ति नागालिंगम का अंतिम संस्कार आज दोपहर किया जाएगा। अंतिम यात्रा दोपहर 3:30 बजे एलियन सन सेंटर से निकलेगी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नेदरलैंड दौरा रविवार को समाप्त हो गया। दोनों देशों के बीच 17 महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी। रक्षा, व्यापार, ग्रीन हाइड्रोजन और टेक्निक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। भारत नेदरलैंड ने संबंधों को नई रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाने पर जोर दिया। दौरे को भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहे सुन पाएंगे चंद शोक समाचार।

0: Shok samacha sunyi. Modesiarud plan manyo me, Modesiarud plan manyo me 54 saal ki, 54 years old ki, Sheila Gazadhar. Shrimati Sheila Gazadhar, Pedasham Nandur aur Janita ke naam se log zyada jante the ki mrityu ho gayi hai. Unki arthi aaj 1 baje unke pati Shri Ravindranath Gazadhar ke ghar panwaniyon se uthakar antim sanskar ke liye wahi shamshan bhumi le jayi jayegi. Cremation today at 1 pm. Number 12 Avenue La Sauce Palma Catrobon mein, number 12 Avenue La Sauce Palma Catrobon mein 87 saal ki, 87 years old ki Shrimati Lakshmi Sonia pedasham itu aur jinhe aji gonu ke naam se bhi log zyada jante the ki mrityu ho gayi hai. Unki arthi kal subah 11 baje unke ghar La Sauce Palma Catrobon se uthakar antim sanskar ke liye Phoenix ki shamshan bhumi le jayi jayegi. ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं. मोदेजिया रोड पैनमानियों में 54 साल की 54 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शीला गजाधर पैदाशाम ननलोल और जिन्हें नीता के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं. उनकी अर्थी कल 1 बजे उनके पति रविंद्रनाथ गजाधर के घर पैनमानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट 1 पीएम. कॉम्बेलैंड नंबर एक वाकुआ में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की श्री रवीन कुमार ताजा जिन्हें तेजा के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं. उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनकी पत्नी श्रीमती श्यामा ताजा के घर वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टिडी एट 3 पीएम. मोसलमो ग्रीग्री सुयाक में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पद्मावती तिहा जिन्हें तायन के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं. उनकी अर्थी आज शाम 3:30 बजे उनके बेटे लेकराम भरत सिंह महेश के घर ग्रीग्री सुयाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांगोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे 3:30 पीएम. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2, Radio Musti. Radio.

0: subscribe to Radio Masti Retro Rhythm.
1: बिल्कुल जी, रेट्रो रिदम में गिनिशा फिर से एक बार वापस आ गई हैं आप लोगों का साथ देने के लिए इन दिस लवली शो, जहां पे हम पुराने गानों का सिलेक्शंस लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. ये था किशोर दा की आवाज़ में झिलमिल सितारों से. बिल्कुल जी, लेके जाएंगे उन सितारों के बीच में जहाँ पे आंखें खूबसूरत सी मुस्कुराहट को आपने छुपा के रखा है. सो माय डियर लवली लिसनर्स, शकील टाइम. अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:11 हो चुके हैं. So wishing all of you a good afternoon. Namaskar ji aur Ganesha ka pranam. Kaise ho? I hope that everything is going good. Of course ji, kyunki aaj hai Monday, aapka khoobsurat sa weekend khatam ho gaya hai. So we are back to a new week. So welcome to this beautiful week and I really wish all of you to have a great time ahead. Of course, jo bhi aapne socha hai, zarur karna. Jo bhi aapke dreams hai, aap usko zarur pura karna. Aur ye jo hafta hai, bilkul positive apne aap ko rakho, apne dimag mein achhi achhi cheeze socho, tabhi के साथ अच्छा होगा. ठीक है. सो टू ऑल दोस हैविंग देयर लंच राइट नाउ, हे आई जस्ट वांट टू विश ऑल ऑफ यू बोन अपेटाइट माय डियर फ्रॉम द एंटायर आरएनटी टीम की तरफ से. और फिलहाल के लिए जस्ट रिमाइंडिंग यू द नंबर, आपको तो पता ही है, 5499

एंड 1294-549-9294, दैट्स द नंबर जहां पे आपको हमें अपने दिल की बातें लिख के ही भेजना है। तो चलिए जी, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर डेडिकेशन एंड फिलहाल के लिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, जो है लता मंगेशकर और बबला मेहता की आवाजों में। यू गोना लव इट, सो हियर वी गो, एंजॉय कीजिए।

Retro Rhythm. I really hope that you guys are really loving and enjoying this beautiful and mesmerizing gaane jo lekar aaye hain aap logon ke liye in this beautiful show, and that's your retro rhythm. कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, काम पे हो? सबको हाश टू यू. आई नो मंडे ब्लूज भी होता है, वी डोंट वांट टू गो टू वर्क, लेकिन करना तो पड़ता है. बट स्टिल जस्ट इमेजिन ऑन आरएनटी रेडियो मैसिव, वी गॉट यू योर फेवरेट गाने जो आपके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब हैं, जो आपको किसी की ये बड़ी खास याद दिलाती है. सो ऐसे गाने जब हम लेकर आते हैं ना, तो वक्त कट ही जाता है और जल्दी जल्दी वक्त कट जाता है, एंड इट्स ऑलरेडी टाइम टू गो बैक होम. तो बस थोड़ा सा सबर कर लीजिए एंड एंजॉय करते रहे हमारा साथ ऑन आरएनटी रेडियो. Yes, I've got your dedications very safely. So here we go. ये अगला गाना रमेश सिंह के लिए जो पंजाब इंडिया से हमारा साथ दे रहे हैं, क्या बात है. And not to forget, just reminding you, the show is live on TikTok, RMT Radio.

0: मस्ती, अगर आप चाहो तो रियल मस्ती वहां पे ज्वाइन कर सकते हो हमारे टिकटॉक जहां पे हम लाइव हैं। जाना, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू योरा की बेटी के लिए। ऑफकोर्स वी डू हैव रीमा जनीता जो सुन रहे हैं, शेषांशिनी, सिल्विया और युविक ऋषि से उसगन परिवार के लिए जो साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हे याले शाम फ्रॉम सुरीनाम, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू। हे रॉकिंग इनी, हाय माई बुलबुल, अरे मेरी जान दागन श्वेता, रविश प्रशा, रविशा आप आर फैमिलीज। वी डू हैव रवीना बंसी जो देख रही हैं लाइव ऑन टिकटॉक, सकीरा एंड प्रवीण। वी हैव आशा लखनऊ, हे तरुण नमस्ते आपको भी। एंड वी हैव समवन जो अभी काम पे जा रहे हैं, चोपा बोलते हैं कि शी इज गोइंग टू वर्क राइट नाउ, सो कुराज टू यू। और तरुण बोलते हैं, दिल की महफिल में तेरे कदमों में आ गए, ओहो कोशिश करेंगे टू प्ले दैट माय डियर। एंड दाऊद सिदीक, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू। इंडिरा एंड वी हैव ओके वसीमा बोलते हैं अभी हम मॉरिशस आ गए, सो वेलकम ऑन बोर्ड माय डियर। एंड हियर वी गो, अगला गाना आप सभी लोगों के नाम है 5499-1294 पर। आपको तो पता है कि हमेशा जब भी आप लिख के भेजते अपने दिल की बात, बड़े ही प्यार से हम पहुंचा देते हैं आपके चाहने वालों तक।
1: RM2 Radio Mastery

0: FM2
1: Radio Musti.
0: Ladies, get ready to shine. Fashion Galaxy is now open in QP. Step into a world of trendy women's wear, fabulous outfits and dazzling jewelry, all specially selected to make you stand out. Find us at Empire Square Mall, Sir Jean-Edouard Rimono Street, Royal Road, QPIP, just after QPIP Road Government School and the New Area Health Center. Visit us today or call on 5794-9466. RM2
1: Radio Musti.
2: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
3: ये क्या? लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
4: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए.
3: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है.
4: हिंदी कविता है ना?
3: हाँ.
4: वो मैं तुमको टीच करता हूँ.
3: तुम और हिंदी कविता?
4: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर. वो इंग्लिश.

0: Retro Rhythm। तो चलिए जी चेक होता है, 12:36 हो चुके हैं और इस स्टूडियो में आ गए हैं विकास जी। विकास, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू यू।
1: गुड आफ्टरनून, क्योंकि मैं मॉर्निंग में आता हूँ सकते हैं, इसलिए तुम्हारी जो बात है वो मॉर्निंग से चली गई। एनीवेज, अभी रेट्रो रिदम एंट्री मार चुके हैं हम और आपको बता दें कि आपके पास ये सुनहरा मौका है कि आप जीत पाए एक हेलीकॉप्टर राइड। आपने बिल्कुल सही सुना, नहीं तुम इतनी एक्साइटेड मत हो, ये हमारे लिसनर्स के लिए। आपको बता दें कि मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड और साथ में MBC प्ले आपके लिए मौका लेकर आया है। करना क्या है आपको बताया कि तो पुराने वाले को अभी आप डाउनलोड ना कीजिए क्योंकि उसको अभी फेज आउट करने वाले हैं जून के महीने में। इसलिए MBC प्ले 1.0 को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद जब आप उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा MBC OTT, उसमें आपका नाम होगा, आपके फोन नंबर पर आएगा, बस उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और आपको भेजना है 54991294 पर। राइट, आपको ऐप का नहीं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर भेजना है
0: जहां पे आपको OTT मैसेज आया है, उसमें नाम भी होगा ना,
1: उसमें नाम भी होगा। तो बस वो होगा कि थैंक यू सो मच एंड इट्स ब्यूटीफुल टू हैव यू ऑन बोर्ड। तो वो जो मैसेज है आप प्लीज
0: उसका स्क्रीनशॉट करें,
1: पहले लॉटरी निकल जाए उड़ने की, फिर उसके बाद निकलेंगे। हाँ, तो बस ये याद रखिए कि हम पूरे दिन में जितने हमारे जो लिसनर्स हैं उनके व्हाट्सएप मैसेजेस जिन्होंने सही भेजा है उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे, उनमें से फिर से शॉर्टलिस्ट करेंगे, एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे फ़ोन करके, और हो सकता है कि 29th को जो फाइनल है उसमें आपका नाम शामिल हो जाए और फिर मिल जाए आपको एक कपल के लिए हेलीकॉप्टर राइड।
0: हेलीकॉप्टर,
1: बहुत आसान है, बहुत आसान है। सोचिए, बस MBC प्ले 1.0 आपको डाउनलोड करना है नया वाला, और उसके बाद स्क्रीनशॉट जब आपको मिलता है MBC OTT ऑन 54991294। ऑल द बेस्ट,
0: बेस्ट ऑफ लक।
2: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती।

0: Retro Rhythm.
1: थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए ऑन आवर एंटी रेडियो में से. फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, 12:49 हो चुके हैं. टाइम तो बीता चला जा रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए आई हैव गॉट योर डेडिकेशन एंड स्पेशली टू ऑल दोस हू आर वाचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक आवर एंटी रेडियो मस्ती. वी डू हैव एचएम एंड मनीषा जी. ये अगला गाना आपके लिए विश्वानी. वी हैव अमेली एंड वी डू हैव पमेला जो भी साथ दे रही है. हाय एसके, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर. रेखा सुकन और वी डू हैव ये अगला गाना कुष्मा के लिए, वरुण के लिए. विश्वानी बोलते हैं उनके प्यार सूरज के लिए जो इस वक्त काम कर रहे हैं. आता बुप लॉन्सो कुराज टू यू एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम रेशमा की तरफ से. वहीदा थैंक यू सो मच जी. ये अगला गाना के लक्ष्मी है. लक्ष्मी हैव अ ब्यूटीफुल एंड अ ब्लेस्ड डे टू यू टू माय डियर. और अगला गाना अवनी के लिए, हस्बैंड रोशन के लिए, दैट्स कमिंग फ्रॉम मनीषा. एंड वी हैव नुश फ्रॉम यूके, शी इज वॉचिंग अस लाइव. थैंक यू सो मच. एंड सूरज सिंह फ्रॉम इंडिया, वो भी हमें देख रहे हैं लाइव ऑन टिकटॉक आवर इनटू रेडियो मस्ती. तो चलिए जी, ये अगला गाना हमारी तरफ से उन तमाम सुनने वालों के नाम जो फिलहाल काम पे है, सो कुराज टू यू एंड टू ऑल दोस जिनका नाम है चांदनी.

दिखाओ तुम्हें अपनी महबूब।

0: Beautiful and lovely Ghana, especially for you on RMT Radio. Merci Filhakili. Just check your time. It's already here, 1 p.m.
1: Welcome to RM2
2: Radio Musti.
3: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5.
2: East, West,
3: 96.4.
2: Center,
3: 99.4.
1: RM2
3: Radio Musti.
1: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti.
1: Feel the Musti.
0: आइए सुनते हैं समाचार पूजा के साथ। नमस्कार।
4: नमस्कार गिरीशा, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। देश के आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अप्रैल 2026 के अंत तक 463.1 बिलियन रुपए तक पहुंच गए, जो एक वर्ष में लगभग 71.1 बिलियन रुपए की वृद्धि दर्शाता है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने आयात स्तर को मापने के लिए एक नई पद्धति भी शुरू की है, जिसमें 2 संकेतकों का उपयोग किया जाएगा ताकि विदेशी मुद्रा की स्थिति और देश की आर्थिक मजबूती को बेहतर तरीके से दर्शाया जा सके। कांटोरेल में कल पेश आई घटना के बाद पुलिस की जांच जारी है। कल एक फिटनेस ट्रैक को लेकर 2 समूहों के बीच झड़पें हुई। प्रारंभिक जानकारियों के मुताबिक पैदल चलने वालों के लिए इस ट्रैक पर कुछ लोग क्वाड बाइक्स चला रहे थे, तभी ये तनाव पैदा हुआ जो गंभीर होता गया और जहां 2 वाहनों को आग लगा दी गई और गोलीबारी भी की गई। मॉरिशस की कुछ अस्पतालों में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रणाली अब समाप्त कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोर्ट लुइस के जीटू अस्पताल में नई ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट का उद्घाटन किया, जिसमें कलर कोड के आधार पर प्राथमिकता देने की प्रणाली लागू की गई है। अब मरीजों का इलाज उनकी स्थिति की गंभीरता को देख कर किया जा रहा है, जहाँ इन्हें लाल, पीला और हरा कोड दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू के अनुसार हर मिनट जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर पैदा कर सकता है, विशेषकर दुर्घटना, स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट के मामले में। इस अस्पताल में एक और नई सुविधा ये है, जो आपातकालीन विभाग में प्रतिदिन 650 मरीजों तक को देखता है। अब सामी के इमरजेंसी डॉक्टर सीधे इमरजेंसी यूनिट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। विदेश में अरब अमीरात में कल रविवार को बाहका न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एक ड्रोन हमला एक ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द यूनाइटेड अरब अमीरात ने

0: इस हमले की निंदा करते हुए इसे खतरनाक बताया है। इसी बीच वहां के राष्ट्रपति के एक सलाहकार ने इसे आतंकी हमले की कड़ी आलोचना की है और संकेत दिया है कि इसमें ईरान शामिल हो सकती है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। मोसलमान ग्रीग्री सुयाक में 77 साल की 77 years old श्रीमती पद्मावती तिहा जिन्हें लोग तायन नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम साढ़े तीन बजे इनके बेटे लेखराम भरत सिंह महेश के मकान मोसलमान ग्रीग्री सुयाक से उठाकर कौ गोपाल शामुनी किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। कौबेला नंबर एक वाकुआ में 64 साल के 64 years old श्री रविन कुमार ताजा जिन्हें लोग तेजा नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे इनकी पत्नी श्यामा ताजा के मकान कौबेला नंबर एक वाकुआ से उठाकर थामा मेर कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टूडे एट 3 PM। और नंबर 74 एवेन्यू द इरोंडेल सुदनाक में 71 साल की 71 years old श्रीमती वीरामा जोगिया पैदाशी नाम कोतेदा सन्यासी और जिन्हें लोग बामा नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान नंबर 74 एवेन्यू द इरोंडेल सुदनाक से उठाकर फिनिक्स कृष्णशाम भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टूडे 2:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2 Radio Musti.

0: Retro Rhythm.
1: Welcome back in the second hour of this beautiful show, and that's your Retro Rhythm with me, Ginisha, on RMT Radio. Masti wishing all of those jinhone abhi abhi hame join kiya hai. A very good afternoon to all of you. Namaskar aur Ginisha ka pranam. I hope that you guys are really loving this beautiful and mesmerizing gaane jo lekar aaye hain aap logon ke liye. So my dear lovely people, the show is live on TikTok, RMT Radio Masti. Jaldi se aap hame follow kar lijiye on TikTok, and of course you're going to be notified every time jab bhi hum live aayenge. Saath dene ke liye bahut bahut shukriya, aur filhal ke liye hum dedicate karna chahenge ki agla gana jisne likha hai, Jaisi Aaram, aapko bhi sundar gaane bahut hi play kar rahe ho, aur यही वो जगह, यही वो फिजा है. ओके, कोशिश करेंगे. ऑलवेज कनेक्टेड टू योर आरएमटी रेडियो मस्ती. माला फ्रॉम क्याट्रो बोन, थैंक यू सो मच. लीना फ्रॉम प्लेन दे रोश. लिटिल प्रिंसेस जिया, जो 4 महीने की हो गई हैं आज, उनके लिए, प्रिंसेस जिया के लिए, आपके हस्बैंड राजीव के लिए, आपकी फैमिली सी वो शंकर के लिए, ऑफ प्लेन दे रोश द नेक्स्ट वन. So here we go, I have ये अगला गाना स्पेशली फॉर तुझे सूरज कहूँ या चंदा. मैं तो बोलती हूँ आप मुझे स्टार्स करो, स्टार्स कहो, चंदा नहीं, सूरज नहीं, बस मुझे तारे ही तारे बन के रहना है. लिटिल परी आतरिया के लिए, दैट्स अ ब्यूटिफुल नेम, दादा आनंद एंड दादी साधना के लिए, जो न्यू गोव के रहने वाले हैं. सो ये अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे बेटी के लिए, जो है अनायशा सुकन. She will turn 20 years old on the 22nd, so advance me happy birthday. Sham Devi Chan of Perebeer, ye agla gana aapke naam, and program is just wow. Swenal, free period hai, aur sun rahi hai, staff room mein kaam pe hai, she's a teacher, of course. Subhai Shravan, Bhabi Kriti, Abhinav, and Kiyan, Navyan, Tilak Parivar ke liye, and Bhai Gulshan ke liye bhi ye agla gana. Thank you so much ji, aur ye agla gana especially for you, Meela, jinhone ek bahut hi pyara sa family picture hame bheja hai, Abdul and Sarah Banu ji. The next one goes out to you as well. To chali, 5499-1294 par. Send me your dedications. 549-912-94. And this one goes out to you, Vima, watching us live on TikTok, Guchina. And we do have this beautiful one for you, Akhil and Nikhil. Waiza, hey Waiza, walaikum assalam kabhi. Ye agla gana aapke liye sanavi. And chaliye ye agla gana for you, mama, papa, Ram Tohar and family ke liye, jo castle ke rehne wale hain, Ansha Ganpat, Purnima Devi. This one goes out to you, my dear.

आरएमटी रेडियो मस्ती रेट्रो रिदम। I really love that song, Kattu Bakattu Baji. हाँ, आशा भोसले की आवाज़ में आपके लिए स्पेशली अली बाबा चालीस चोर से लिया गया ये खूबसूरत सगना जो 1980s में रिलीज हुई थी। जी हाँ दोस्त, और फिलहाल के लिए चलिए जी आपके मैसेजेस को चेक कर लेते हैं। अंदर अगला गाना सारे फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, आज इसके लिए बडवार विदेशी जी और अनुषा के लिए एंड केडन परिवार के लिए जो मातबा से हमारा साथ दे रहे हैं। एंड वी डू हैव ये अगला गाना डेवी के लिए फ्रॉम संजय जो वाकवा के रहने वाले हैं। सीता बलोहा जी, गीता बलोराम जी, शत बनारस से ये अगला गाना आपके नाम। एंड आई हैव एवरीवन जो साथ दे रहे हैं राइट नाउ, जो अभी काम पे है सो कुराजते हो, जो अभी गाड़ी चला रहे हैं हम इतना कहेंगे कि आराम से चलाना। और ये अगला गाना जो है किशोर दा का लिया गया उनकी खूबसूरत सी आवाज में उनके सारे फैंस के लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल ड्यूएट ऑफ किशोर दा एंड आशा भोसले। हियर वी गो, प्यार से दिल मिले, कैसे मिले ये हम जरूर सुनना चाहेंगे। 5491294 पर सेंड मी योर डेडिकेशंस माय डियर।

0: रेट्रो रिदम।
1: वेल गाइस, शुक्रिया जी, शुक्रिया साथ देने के लिए। हमको तुमसे प्यार है, क्या गाना था यार, खींच के लेके गए हमें उन वादियों में जहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत हमारी यादों को हमने सजा के छुपा के रखा है। बिल्कुल जी, एंड दैट वाज स्पेशली फॉर यू कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, टेकन फ्रॉम द मूवी बरसात, 1995 में रिलीज हुई थी, बॉबी देओल एंड ट्विंकल खन्ना, पहली मूवी। हाँ जी, कितना अच्छा था ना उस जमाने में जब हम ये मूवीज देखते थे, तो वाकई होंठों पर मुस्कुराहट आती थी और फिलहाल आंखों में नमी भी और मुस्कुराहट भी दोनों साथ में आ जाते हैं। चलिए, अगर आप मुस्कुराना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक हेलीकॉप्टर राइड पर जाना चाहोगे सो हमारे पास एक ऑप्शन है। हाँ जी, हेलीकॉप्टर राइड पर जाना है। बिल्कुल जी, मैं आपको बता दूं फिलहाल आपको क्या करना है। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द ऐप, एक ऐप है MBC 1.0, पुरानी वाली ऐप नहीं, नई वाली ऐप जो 1.0 है, आपको उसको डाउनलोड करना है अभी के अभी। जब आप डाउनलोड करोगे, यू हैव क्रिएट एन अकाउंट देयर। अकाउंट क्रिएट करते ही आपको एक OTT नंबर आ जाएगा जहां पे आपका नाम भी मेंशन किया जाएगा MBC ऐप से। बिल्कुल, सो यू जस्ट हैव टू स्क्रीनशॉट, आप उस मैसेज पूरा का पूरा मैसेज जो है OTT का जो मैसेज आपको मिला है, आप उसको स्क्रीनशॉट करके मुझे भेजे ऑन 5499-1294 पर 5499-1294 उस नंबर पे स्क्रीनशॉट करके हमें भेजेगा जरूर। एंड देन आपका नाम जो है, आपका फोन नंबर जो है, शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर अ लकी ड्रॉ। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, डाउनलोड द ऐप MBC 1.0 एंड देन क्रिएट द अकाउंट देयर। जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे, आपको एक OTT नंबर मिल जाएगा, OTT का जो मैसेज आपको मिलेगा उसको स्क्रीनशॉट करके पूरा का पूरा मैसेज व्हाट्सएप के जरिए आप हमें भेजिए ऑन 5499-1294 पर 5499-1294 एंड देन ऑफकोर्स आपका नंबर, आपका नाम शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर अ लकी ड्रॉ, जहाँ पे आप घूम सकते हैं हेलीकॉप्टर में। बिल्कुल जी, सो बेस्ट ऑफ लक टू यू।
0: RM2 Radio Masti

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर ओगिनी शातू से गुड बाय टू यू. आने वाली है थोड़ी देर में परी आपका साथ देने के लिए विद सम लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज, गॉसिप्स एंड रिव्यूज एंड ऑफ कोर्स सम लेटेस्ट बॉलीवुड गाने जो लेटेस्टली रिलीज हुए हैं आप लोगों के लिए. तो चलिए जी, फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, फिर कल मिलेंगे सेम टाइम सेम शो. तब तक के लिए टेक केयर.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पड़ी सभी को, मेरा नमस्कार। देश के आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अप्रैल 2026 के अंत तक 463.1 बिलियन रुपए तक पहुंच गए, जो एक वर्ष में लगभग 71.1 बिलियन रुपए की वृद्धि दर्शाता है। मैका वर्सेस ने आयात स्तर को मापने के लिए एक नई पद्धति अभी शुरू की है, जिसमें दो संकेतकों का उपयोग किया जाएगा ताकि विदेशी मुद्रा की स्थिति और देश की आर्थिक मजबूती को बेहतर तरीके से दर्शाया जा सके। मूर्ति नागलिंगम की मौत की खबर कल एक सदमे की तरह सामने आई। कलात्मक समुदाय के भीतर कई लोग इसे बेहद दुखद क्षति बता रहे हैं। मूर्ति नागलिंगम उन कलाकारों में से थे जो साझा करने की भावना और अतुलनीय विनम्रता से प्रेरित थे। इस वर्ष जुलाई में आयोजित होने वाला सालों दो में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, क्योंकि इसी महान कलात्मक आयोजन की स्थापना उन्होंने की थी। कांटोरेल में कल पेश आई घटना के बाद पुलिस की जांच जारी है। कल एक फिटनेस ट्रैक को लेकर दो समूहों के बीच झड़पें हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पैदल चलने वालों के लिए इस ट्रैक पर कुछ लोग क्वाड बाइक से चला रहे थे, तभी ये तनाव पैदा हुआ जो गंभीर होता गया, जहां दो वाहनों को आग भी लगा दी गई और गोलीबारी भी की गई। विदेश में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी स्थित पावर प्लांट पर ड्रोन हमला किया गया। अबू धाबी के अधिकारियों ने इसे खतरनाक उकसावा बताया है। वहां के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि तीन ड्रोन पश्चिमी सीमा की तरफ से संयुक्त अरब अमीरात में घुसे थे। दो ड्रोन को रोक लिया गया, लेकिन तीसरे ने अबू धाबी में स्थित बाहाका परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भीतरी सीमा के बाहर एक बिजली जनरेटर को निशाना बनाया, जिससे आग लग गई। और उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में फैले एबोला को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। ये रोग बुंदीबुग्यो वायरस की वजह से हो रहा है। कोंगो के अलावा युगांडा में भी बुंदीबुग्यो वायरस के मामले सामने आए हैं, वहां भी इसे स्वास्थ्य आपातकाल माना गया है। WHO के मुताबिक कोंगो के इतुरी प्रांत में अब तक 246 संदिग्ध मामले और 80 मौतें रिकॉर्ड की गई है। वहीं युगांडा की राजधानी कंपाला में 15 और 16 मई के बीच महज 24 घंटों में

0: दो मामले सामने आए, इनमें से एक की मौत हो चुका है, हालांकि दोनों के बीच कोई आपसी संबंध नहीं मिले हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए कुछ ही समय में शोक समाचार। मोसलमा घ्रीघ्री सुयाक में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती पद्मावती तिहा, जिन्हें लोग तायन नाम से जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज शाम 3:30 इनके बेटे लेखराम भरत सिंह महेश के मकान मोसलमा घ्रीघ्री सुयाक से उठाकर कौ गोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। कौ बेलन नंबर एक वाकुआ में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड श्री रविंद्र कुमार ताजा, जिन्हें लोग तेजा नाम से भी जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दोपहर के 3:00 इनकी पत्नी श्यामा ताजा के मकान कौबेला नंबर एक वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थौमामैल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3:00 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies,
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: एंड वेल फ्रेंड्स, कहना तो बहुत कुछ है क्योंकि बहुत कुछ हो भी तो रहा है. वेल अभी के लिए तो वेलकम करेंगे आपका. 2:15 हो गए हैं. इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. एंड यहाँ ऑन रेडियो मस्ती आपके लिए बहुत कुछ खास एंड स्पेशल भी हो रहा है. एंड वी आल्सो हैव विकास हमारे साथ. हेलो,
4: गुड आफ्टरनून.
3: गुड आफ्टरनून.
4: सुबह से हम कोशिश करें कि आपको हम जागृत करें, आपको उठाएं, भगाएं, दौड़ाएं और अपने मैसेजेस आप यहाँ पर पहुंचाएं फिर उड़ाएं. सुनो आपके पास चांस जितने भी लेसन है हमारे. अब देखिए आपके पास ये सुनहरा मौका है कि आप पंछी बनो, उड़ के फिरो मस्त गगन में, हेलीकॉप्टर राइड पे जा सकते हैं. आपको बता दूं कि मौका है टू डाउनलोड एमबीसी प्ले 1.0, यानी कि एमबीसी प्ले पहला जो वर्जन था उसको नहीं, ये जो नया वाला है ना 1.0, हाँ उसको आपको डाउनलोड करना है. और जब आप डाउनलोड करेंगे और रजिस्टर करेंगे तो आपको एक मैसेज आता है एमबीसी ओटीटी. बस वो जो मैसेज आया आपके नाम के साथ उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेजना है 54991294, यानी कि डे टू डे होने वाला है. यहाँ से चलेगा फ्राइडे तक और अगले हफ्ते चलेगा थर्सडे तक, वीकेंड्स में नहीं, मंडे टू फ्राइडे. आप भरपूर कोशिश कर सकते हैं, यानी कि एक बारी, दो बारी, जितनी बारी आपका मन करे अगले दिन फिर से रेडी हो जाइए और फिर हम शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसके बाद आपको बताएं कि आज का विनर कौन है. एंड रफ्तार वाइब्स जो मनीषमा करने वाली है वो नाम आपको बताएगी. तो बहुत ही आसान है, आपको डाउनलोड करना है एमबीसी प्ले 1.0, फिर जब आप रजिस्टर करते हैं आपको मैसेज आएगा एमबीसी ओटीटी का, उसको भेजिए 54991294, वो स्क्रीनशॉट करके अपने फोन पर भेजिए 54991294 और उसके बाद हम शॉर्टलिस्ट यहां पर करेंगे और हो सकता है आपका नाम आ जाए और आप उस दौड़ में शामिल हो जाए जहां पर आप हेलीकॉप्टर राइड कर पाए. सो ऑल द बेस्ट. वेदा की स्कूटर तो चालू हो गई लेकिन हम उड़ने की बात कर रहे हैं. चलो उड़े ऑन द वेव्स RM2.
0: Radio Musti. Hit music only. Feels a musti. Radio Musti.

0: Talkies.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: And well friends, it's 2:35 जहां पर बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आते हैं आपके लिए। इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज। एक्टर वीर पहाड़िया इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफी चर्चाओं में है। वो पिछले साल अपनी फिल्म स्काई फोर्स में नजर आए थे, जिनमें उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई थी। और वहीं अब वीर एक बार फिर धमाल मचाने को ऑल सेट ऑल रेडी। वीर फिल्म बेनाम के साथ सिनेमाघरों का सफर तय करने के लिए एक बार फिर तैयार है। वीर पहाड़िया अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म बेनाम में लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं इस प्रोजेक्ट को और दिलचस्प बनाते हुए अनुभवी फिल्म मेकर महेश भट्ट फिल्म के प्रेजेंटर के तौर पर जुड़े हैं। और इस फिल्म में जुड़ने के बाद आपको बता दें दैट काफी मजबूत और क्रिएटिव सपोर्ट मिला है इस फिल्म की टीम को, जहां पर महेश भट्ट का नाम भी इस फिल्म के साथ जुड़ गया है। और माना जा रहा है कि बेनाम एक रूटेड एक्शन एंटरटेनर है, जिसमें दमदार इमोशंस के साथ हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में एक कमर्शियल अपील वाला म्यूजिक एल्बम भी शामिल होने की उम्मीद है। और मेकर्स का गोल एक्शन, इमोशन और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाते हुए दर्शकों को एक दमदार सिनेमाई अनुभव देने का है। सो अभी के लिए तो यहाँ पर चर्चा हो रही है दैट वीर पहाड़िया वंस अगेन इज ऑल सेट और रेडी। फिल्म का टाइटल है बेनाम और इस फिल्म के साथ अब नाम जुड़ चुका है फिल्म मेकर महेश भट्ट का।
0: Radio Musty. Hit music only. Feels a musty. Radio Musty.

0: Radio Mesti in the mix. Radio Mesti feels a Mesti in the mix.
1: So well friends, best mix of music आपके लिए आपके इस मंडे आफ्टरनून को खास एंड स्पेशल बनाने

हम हैं आपके साथ राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती. मैं हूं परी आपके साथ एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स एंड वी आल्सो हैव सम लेटेस्ट सॉन्ग्स. उम्मीद करते हैं हफ्ते की शुरुआत आज एकदम मस्त हुई है. इट्स अ पॉजिटिव मंडे, सो लेट्स कीप इट अ हैप्पी हैप्पी मंडे, जहां पर आपकी गुड विशेस आप हम तक पहुंचा सकते हैं ऑन 5499-1294. योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस, यस इसी नंबर पर है आपका इंतजार. फॉर नाउ एक और ब्यूटीफुल गाना फॉर ऑल द फैंस ऑफ विशाल मिश्रा. एंजॉय दिस वन.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
2: And well, friends, it's 2:56. बादशाह निकिता गांधी की आवाज है, and we have this beautiful song. इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाली हैं समाचारों की ओर. उसके बाद good music continues right here on Radio Musti.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
5: Feel the Musti.
6: Time check, 3 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें अभी उदय से. आपको नमस्कार.
7: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. दोपहर के 3 बजे के संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है. देश के आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अप्रैल 2026 के अंत तक 463.1 बिलियन रुपए तक पहुंच गए हैं, जो एक वर्ष में लगभग 71.1 बिलियन रुपए की वृद्धि दर्शाते हैं. बैंक ऑफ मॉरिशस ने आयात स्तर को मापने की दिशा में एक नई पद्धति भी शुरू की है, जिसमें 2 संकेतों का उपयोग किया जाएगा ताकि विदेशी मुद्रा की स्थिति और देश की आर्थिक मजबूती को बेहतर तरीके से दर्शाया जा सके. मूर्ति नागालिंगम की मौत की खबर कल एक सदमे की तरह सामने आई. कला की दुनिया में कई लोग इसे बहुत ही दुखद नुकसान बता रहे हैं. मूर्ति नागालिंगम उन कलाकारों में से एक थे जो साझा करने की भावना और अतुलनीय विनम्रता से प्रेरित थे. इस वर्ष जुलाई महीने में आयोजित होने वाला सालों दू में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया जाएगा, क्योंकि इस महान कलात्मक आयोजन यानी सालों दू में की स्थापना उन्होंने ही की थी. कोंटोरेल में कल पेश आई घटना के बाद पुलिस की जांच जारी है. कल एक फिटनेस ट्रक को लेकर 2 समूहों के बीच झड़पें हुई. प्रारंभिक जानकारियों के अनुसार पैदल चलने वालों के लिए इस ट्रक पर कुछ लोग क्वाड बाइक्स चला रहे थे, तभी ये तनाव पैदा हुआ जो गंभीर होता गया, जहां 2 वाहनों में आग लगा दी गई और गोलीबारी भी जारी हुई. विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमला हुआ. मध्य पूर्व में तनाव के बीच यूएई में इजरायली की मौजूदगी के दौरान ये हमला हुआ. संयुक्त अरब अमीरात ने इसे आतंकवादी हमला बताया. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में फैल रही इबोला वायरस बीमारी की महामारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया, क्योंकि वर्तमान में फैल रहे इस वायरेंट के लिए न तो कोई वैक्सीन उपलब्ध है और न ही कोई उपचार. इबोला एक बहुत ही संक्रामक बुखार उत्पन्न करता है. पिछले 50 सालों में इस प्रकार के खतरनाक वायरस ने अफ्रीका में 15,000 से अधिक लोगों की जान ली. तो ये थी अब तक की खबरें. आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद. जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार. रॉयल रोड रियोंबेल सुरीनाम में, रॉयल रोड रियोंबेल सुरीनाम में 72 साल के 72 years old के श्री नवरतम इरा जिन्हें सब लोग नान के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर रॉयल रोड रियोंबेल सुरीनाम सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुयाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM. नंबर 12 एवेन्यू लासोस पाल्मा कैट्रोबोन में 87 साल की 87 years old की श्रीमती लक्ष्मी सोनिया पैदा शिनाम इतू, और जिन्हें सब लोग आजी

0: गुनो के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के 11 बजे, कल दिन के 11 बजे उन्हीं के घर नंबर 12 एवेन्यू ला सोसा पाल्मा कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। फ्यूनरल टुमरो एट 11 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music is in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies,
5: Radio Masti,
2: Radio

0: More music in the mix.
1: आज आजादी है.
2: बॉम्बे टॉकीज रेडियो मस्ती.
3: रेडियो मस्ती.
4: और चलिए दोस्तों, कहते हैं हर कोई रीमिक्स खराब नहीं होता व्हेन इट्स डन राइट. तो फिर उसका जो इमोशन है वो हम तक पहुंच ही जाता है. जैसे धुरंधर फिल्म में हमने देखा इतने सारे पुराने गाने, लेकिन द वे दे वर प्रेजेंटेड, ओ माय गॉड. चलिए वेलकम करते हैं आपका. 3:07 हो गए हैं मंडे आफ्टरनून 18th of May, और मैं हूँ परी आपके साथ. इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. लव या पा उसी फिल्म का टाइटल ट्रैक फॉर एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं टू गेट यू इन द मंडे मूड. सो एंजॉय दिस वन दोस्तों. साथ दे रहे हैं आप भी. नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन 5499-1294 पर.

0: रेडियो मस्ती,
1: रेडियो मस्ती।
2: वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे फिल्म पति पत्नी वो दो। जैसे हमने कहा कि इसकी जो फर्स्ट इसका जो फर्स्ट पार्ट आया था इन 2019, वो काफी पॉपुलर रहा था, लेकिन उस हिसाब से अब ये जो फिल्म है इसके लिए ज्यादा जो उम्मीदें थी उस पर ये फिल्म खरी उतरती नजर नहीं आ रही है, लेकिन कुछ लोगों को ये फिल्म काफी अच्छी लग रही है। वैसे एक अच्छी बात यह है दैट काफी पुराने गाने हैं जो इस फिल्म में हमें सुनने को मिले हैं, और उन्हीं गानों को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। सो वेल, सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एज वेल, यानी कि ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, लेकिन एक अलग अंदाज के साथ। एंड साथ ही साथ बी डाउन की लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए, सो कहीं मत जाइए। ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती।
1: वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती।
3: रेडियो मस्ती
4: हिट्स, म्यूजिक ओनली,
3: फील्स अ मस्ती।
5: आज मैं छोड़ूंगा तुझे, तूने क्या समझा है मुझे, आज मैं छोड़ूंगा तुझे,

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.
2: What?

Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: सो वेल फ्रेंड्स, 3:30 हो गए हैं और जैसे हमने कहा कि यहाँ रेडियो मस्ती पर आपको जीतने के मौके काफी मिलते हैं और अभी के लिए तो एक खास गेम हम आपके साथ खेल रहे हैं। सो एमबीसी प्ले एंड मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड आपको दे रहा है चांस टू विन अ हेलीकॉप्टर राइड फॉर अ कपल। अब इसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको डाउनलोड करना है एमबीसी प्ले 1.0। यस, इसे आप ध्यान से सुने, आपको डाउनलोड करना है एमबीसी प्ले 1.0। जो पुराना एमबीसी प्ले है वो आपको डाउनलोड नहीं करना है, मतलब अब आपको एक नया जो उसका वर्जन है वो डाउनलोड करना है, वो है एमबीसी प्ले 1.0। और इसे आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको एक रजिस्टर मैसेज मिलने वाला है जो आपके एमबीसी ओटीटी से आपको मिलने वाला है, और जहां पर आपको ये मैसेज मिलेगा उसे आपको स्क्रीनशॉट करना है और इसे आपको भेजना है ऑन 5499-1294। जी हाँ, जब आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे दोस्तों, सो आपको एक एमबीसी ओटीटी से मैसेज आएगा, इसी मैसेज का एक स्क्रीनशॉट लेकर आपको हमें भेजना है ऑन 5499-1294। मंडे टू फ्राइडे ये गेम होने वाला है जहां पर एवरी डे एक लकी जो हमारे लिसनर है वो शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर द ग्रैंड फिनाले जो होने वाला है ऑन 29th of May। और इसके लिए बस आपको सिंपल सा काम करना है, एमबीसी प्ले 1.0 डाउनलोड करना है और उसके बाद जो आपको ओटीटी मैसेज आएगा उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर 5499-1294 पर भेजना है, और उसके बाद क्या पता आप बन सकते हैं लकी विनर जहां पर आपको ये जो हेलीकॉप्टर राइड है फॉर अ कपल ये मिल सकती है। लेकिन इसके लिए तो आपको पहले शॉर्टलिस्ट होना पड़ेगा और उसके बाद ग्रैंड लकी विनर अनाउंस होगा ऑन 29th of May।
2: वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती।
4: Radio Musti.
5: Hits music only.
4: Feels a musti.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio.

0: Bombay Talkies Radio Musti
1: Radio Musti
2: तो वेल फ्रेंड्स, फटाफट गेम में पार्टिसिपेट करें, स्क्रीनशॉट्स भेजें, और जैसे हमने कहा कि अगर आज आपका नाम नहीं आता है शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट्स में, तो आप इसे कल भी भेज सकते हैं, परसों भी भेज सकते हैं, जब तक आप चाहें इसे आप ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं इन्हें आप भेज सकते हैं। बस आपको डाउनलोड करना है MBC Play 1.0 और उसके बाद जो OTT मैसेज आपको मिलेगा MBC की ओर से, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको हमें भेजना है ऑन 5499 1294 मंडे टू फ्राइडे। ठीक 5:30 बजे के आसपास से यहां पर होने वाला है एक लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ में नाम आएंगे हमारे दो शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट्स के, या फिर तीन, कितने भी यहां पर जो लकी हमारे विनर्स हैं उनका नाम शॉर्टलिस्ट होगा। और आज के लिए आपका नाम अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो ऐसे ही ये गेम होने वाला है टिल 29th, और 29th ऑफ मे को होगा एक ग्रैंड फिनाले जहां पर हमें मिलेंगे हमारे लकी विनर, जिनको मिलने वाला है एक हेलीकॉप्टर राइड फॉर अ कपल। सो वेल फ्रेंड्स, पार्टिसिपेट जरूर करें, दिल खोल कर पार्टिसिपेट करें। और अभी के लिए इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय। जाते जाते यहां पर रोशनी कहती है, खेतों में क्या करने गई थी, कटी रात मैंने खेतों में, तू आई नहीं। हम तो आपका इंतजार कर रहे थे, आप नहीं आई, लेकिन चलिए रोशनी जी आप यहाँ पर आ गई हैं ऑन रेडियो मस्ती, हमेशा ही आती है इतना प्यार लेकर। सो सेंडिंग लोड्स ऑफ लव टू यू एंड हैव अ वंडरफुल मंडे आउट देयर। और ऐसे ही कुछ प्यारे स्वीट मैसेजेस हम तक पहुँचाते रहे ताकि हमारा मंडे जो है वो भी खास और स्पेशल हो जाए। वेल, यहाँ पर हमारी प्यारी से विजया जी भी साथ दे रही हैं, कहती हैं धुरंधर देख ली है ऑन OTT, इट्स ऑनेस्टली सच अ नाइस मूवी, और स्पेशली इसका जो इमोशन है इट्स नेक्स्ट लेवल है। ये तो बिल्कुल सही कहा, तभी तो लोग बार बार लगातार इस फिल्म को देख रहे हैं, और आपने देख ली है तो बस इस फिल्म को मुझे पता है आप और भी देखेंगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली मैसेज। और कहती हैं हेलो बहना, कुमार दिव्यचैन साथ दे रही हैं।

0: आप बैक होम फ्रॉम वर्क एंड अभी इस वक्त घर पर हैं और फुल वॉल्यूम पर सुन रहे हैं रेडियो मस्ती डेडिकेटिंग गाना फॉर लवली पापा श्याम डिविजन ऑफ पेबे लव यू पापा एवरी डे नेवर फॉरगेट यू पापा ये मैसेज है स्पेशली उनके नाम सो वेल गुड विशेज एंड लोड्स ऑफ लव वैसे यहाँ पर कहते हैं लवली मौसम एंड एंजॉइंग द शो दारिन श्वेता रविश प्रीशा लव शाह पारू परिवार फ्रॉम अगोशनोवा सो हैव अ वंडरफुल टाइम अभी के लिए इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय मेरे बाद आ रही है मनीषमा लेकर योर रफ्तार वाइब्स सो कहीं बजाइए स्टे वेल कनेक्टेड
1: Welcome to RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: Hits music only.
2: Feels a musti.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: Loving it.
1: And Alokik, gel air freshener. Freshness, anytime, anywhere.
2: North, South.
0: 103.5.
2: East, West.
0: 96.4.
2: Center.
0: 99.4.
3: RM2.
0: Radio Musti.
3: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti.
3: Feel the Musti.
4: Time check, it's 4 p.m. आइए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ अभी उदय। नमस्कार आपको।
5: नमस्कार मनीष मार, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। 4 बजे के संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। साल की शुरुआत से अब तक देश में चिकनगुनिया के 3,476 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि सर्दी की शुरुआत के साथ मामलों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है। साल की शुरुआत से ही अमरीकी संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन चिकनगुनिया को लेकर यात्रा स्वास्थ्य सलाह जारी कर रही है। पिछले हफ्ते मॉरिशस को लेकर स्तर 2 की स्वास्थ्य सलाह जारी कर दी गई थी। अंतर धार्मिक सम्मेलन का 4th संस्करण इस समय पाया के बहाई केंद्र में हो रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र के विभिन्न देशों से आए कई प्रतिभागी इस 3 दिवसीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य है लोगों के बीच बेहतर समझ बढ़ाना और विविधता में एकता को बढ़ावा देना। इस बातचीत सत्र में अंतर धार्मिक संवाद भी शामिल है। इसमें न केवल मॉरिशस में बल्कि पूरे क्षेत्र में एक साथ रहने और सामाजिक एकता पर चर्चा की जाएगी। MSM की शिक्षा समिति ने आज दोपहर को शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद की कड़ी आलोचना की। ये आलोचना लीला देवी दुखन लक्ष्मण की अध्यक्षता में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। लीला देवी दुखन लक्ष्मण ने विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट की कमी की निंदा की और कहा कि मंत्री को एक सही रोडमैप पेश करनी चाहिए। उन्होंने जनवरी 2027 से पूर्व प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त शिक्षा को समाप्त करने की घोषणा की भी आलोचना की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और मुद्दा उठाया गया, स्कूलों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल। समिति का मानना है कि मोबाइल फोन एक उपयोगी शैक्षिक उपकरण हो सकता है, बशर्ते कि इसके लिए स्पष्ट नियम बनाए जाए। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वीडन के गोथेनबर्ग शहर में यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उनके 5 देशों के दौरे के का एक अहम पड़ाव भी पूरा हो गया, जिसमें इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात और नेदरलैंड्स की उच्च स्तरीय यात्राएं शामिल थी। और उधर अमेरिका के साथ चल रहे युद्ध के बीच ईरान में आम नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी धमकियों और संभावित अमेरिका इजराइल हमलों के डर के चलते तेहरान सरकार अपनी जनता को जमीनी हमले के लिए तैयार कर रही है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। 6 बजे आप विस्तार के साथ सायंकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तब तक अभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और आदाब।
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
0: RM2,
2: Radio Musti.

0: क्या बात है, गुड आफ्टरनून, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू RM2 रेडियो मस्ती। यहाँ पर मंडे का दिन 18 मई, इस स्पेशल डे, थोड़ी देर में बताऊंगी क्यों है स्पेशल, वैसे क्यों ना सिर्फ क्यों, इसको बनाएंगे भी स्पेशल। चलिए, हैव अ वंडरफुल आफ्टरनून, ट्यून इन RM2 रेडियो मस्त। यहाँ पर मनीष माँ वापस आ गई आपका साथ निभाने के लिए टिल 7।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

डी से डांस W फॉर विनर. आप विनर बन सकते हैं फॉर दिस अमेजिंग मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो कि आपको दे रहे हैं a chance to win a helicopter ride for a couple, ladies and gentlemen. How it works, simply aapko download karna padega MBC Play 1.0. yes, 1

0: वर्जन, पिछला वर्जन जो है वो फेज आउट हो जाएगा इन जून में। अभी के लिए आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा एमबीसी प्ले 1.0। आफ्टर डाउनलोडिंग देन यू हैव टू रजिस्टर, एक मैसेज आएगा जो आपके मोबाइल में आ जाएगा और एमबीसी ओटीटी का जो मैसेज है आपको भेजना पड़ेगा ऑन दिस नंबर 5491294। और ये गेम जो है अभी के लिए हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं हमारे विनर जो कि फ्राइडे 29th को प्ले करेंगे हमारे साथ। यहाँ पर आंसर और क्वेश्चन बस रेडी हो जाएगा। अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, एक मैसेज, एक जो स्क्रीनशॉट होता है फॉर द एमबीसी ओटीटी आपको भेजना है ऑन दिस नंबर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 5491294 पर, और आप बन सकते हैं वन ऑफ द यू नो विनर्स इन द पूल, शॉर्ट लिस्टेड पीपल जो कि हमारे फाइनल गेम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे यहाँ पर। ओके, एंड द वन हु आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ द डे विंस द हेलीकॉप्टर राइट ऑन द 29th। अब के लिए आप बस ओटीटी को भेजिएगा, आपने अगर पार्टिसिपेट करिया वेरी गुड। आज एक हमारी जो शॉर्ट लिस्ट होने वाला है ऑन एयर, दो लोगों को हम देखेंगे, वी विल टेक दम लाइव ऑन एयर एंड विल आस्क द क्वेश्चन वेरी क्विकली, जो सबसे पहले जवाब दे देते हैं वो बन जाएगा द शॉर्ट लिस्ट फॉर द पूल। ओके, हैव फन, एंजॉय कीजिएगा, आप ना अभी डाउनलोड कर दीजिएगा अपने एमबीसी प्ले को 1.0 द न्यू वर्जन, मैसेज को आप स्क्रीनशॉट करके हमको भेजिएगा दिस नंबर 5491294 पर।
1: Raftaar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2,
1: Radio Musti.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।
1: 6:32 हुए हैं। विश अ वंडरफुल वंडरफुल आफ्टरनून। डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर राइट नाउ, सेंड मी योर OTT यानी कि MBC OTT का मैसेज। बाय रजिस्टरिंग यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन अवर लकी ड्रॉ जो कि लाइव होने वाला है 5:30।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports news, latest updates.
2: Sports news.
3: Radio Musti in the mix.
4: चलिए 4:45 होने को है, आप जुड़े हैं हम टू रेडियो मस्ती के साथ। हमारे साथ है लाइव स्टूडियो में लेकर स्पोर्ट्स के कुछ खबरें, हमारे साथ है अरविंद जी। गुड आफ्टरनून टू यू।
5: गुड आफ्टरनून आपको, गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रीमियर लीग, जहां पर आज एक निर्णायक मोड़ है। आज आर्सेनल, जो ऑलरेडी रिलेगेटेड टीम बर्नले को होस्ट कर रही है एट द एमिरेट्स स्टेडियम, और ये एक मैसिव मैच वीक 27 फिक्स्चर है जो माइकल आर्टेटा की टीम को प्रीमियर लीग टाइटल के एकदम करीब ले आ सकता है, टू द ब्रिंक ऑफ देयर फर्स्ट प्रीमियर लीग टाइटल इन 22 years. अभी द गनर्स 2 अंक आगे हैं मैनचेस्टर सिटी से, और एक जीत उन्हें 5 अंक आगे ले जाएगा और एक मैच रह जाएगा खेलने के लिए। सिटी को कोई भी मार्जिन ऑफ एरर नहीं होगा, उसको सभी दोनों मैच खेलने होंगे, जीतने होंगे। सो आज ये मैच होगा एमिरेट्स स्टेडियम लंदन में, रेफरी पुल चेहने और वापे होगा जेम्स बेल।

ये बताना जरूरी हो गया है क्योंकि आजकल काफी बार वार कर रहा है, जैसे कल के मैच में भी। तो ये आज देखा जाए तो अभी आर्सेनल एक्सेप्शनल डोमेस्टिक शेप में है, 3 मैच जीत कर लगातार 3 मैच विनिंग स्ट्रीक और वो भी क्लीन शीट्स, जबकि बर्नले अभी उनका सीजन बहुत खराब गया अंडर स्कॉट पार्कर, जो इस महीने उसको साक कर दिया गया। दे सिट 19th और 21 पॉइंट्स, यानी वो लोग रिलेगेट हो चुके हैं। वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस इन दोनों के बीच। आर्सेनल में डिफेंसिव सिलेक्शन हेडेक, बेन वाइट सीजन पूरा सीजन मिस कर गया एमसीएल नी इंजरी को लेकर, जूरियन टिम्बर ग्रॉइन इंजरी, मिकेल मोरिनो फुट इंजरी, ये लोग भी नहीं खेल पाएंगे। रिकार्डो कालाफ्योरी इज डाउट और पियेरो हिंकापिए को शुरू में भेजा जा सकता है, जबकि बर्नले के कुछ अच्छे खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं। सो प्रेडिक्टेड आर्सेनल 11, राया, मोस्केरा, सालीबा, गैब्रियल, हिंकापिए, राइस, लेविस, स्केली, साका, ओडेगार्ड, ट्रोसा और क्योकरेस। और बर्नले में जुब्रावका, वॉल्कर, ट्रांजेबे, एस्टेवे, पिरेज, ओगोचुकू, फ्लोरेंटिनो, चुआना, अनिबाल, एंटोनी और फ्लेमिंग। सो ये आज मैच हिस्ट्री फेवर्स गनर्स, क्योंकि 10 मैच प्रीमियर लीग में इस टीम के खिलाफ जीत चुके हैं और द ग्योकरेस फैक्ट भी है इसमें, जो 4 गोल स्कोर कर चुका है इन हिज लास्ट 4 होम गेम्स। तो बहुत मुश्किल होगा आर्सेनल के खिलाफ प्रेडिक्ट करना, यहाँ तक कहा जा रहा है कि अपने गोल डिफरेंस को भी संभालेगा आज आर्सेनल, क्योंकि अभी गोल डिफरेंस में मैनचेस्टर सिटी का गोल डिफरेंस आर्सेनल से बेहतर है। तो ये आज का मैच और कुछ फिक्स्चर्स हैं फुटबॉल में एक्सेप्ट दी ये प्रीमियर लीग वाला, यानी आर्सेनल बर्नले, फिर मैच होंगे कहाँ पर, स्वीडन में भी, सो नॉट दैट नामी चैंपियनशिप में। फिर कल एक निर्णायक मैच हो सकता है बोर्नमुथ मैनचेस्टर सिटी के बीच, अगर बोर्नमुथ के खिलाफ हार हुई बाय बाय प्रीमियर लीग टाइटल, ऐसा मैं नहीं पेप गॉर्जुला ने कहा। और चेल्सी के लिए भी एक निर्णायक मैच, सेम फॉर स्पर्स, चेल्सी जो यूरोपा लीग या फिर कॉन्फ्रेंस लीग के लिए क्वालिफाई होना चाहेगा, जबकि स्पर्स अगर अपना मैच ड्रॉ करते हैं दे विल बी सेफ एंड साउंड, क्योंकि वेस्ट हैम यूनाइटेड की कल हार हुई। तो कल के मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे और आज का मैच भी बच के रहना होगा आर्सेनल को, क्योंकि जब एक टीम घायल होती है, जल रही हो, तो उसको छूना थोड़ा खतरा होता है। मोहम्मद साला को सेल्फिश, स्वार्थी कहा ये रूने ने, लिवरपूल के फॉरवर्ड मोहम्मद साला ने सेल्फिश जो उसको सेल्फिश कहा गया और उसको ड्रॉप कर देना चाहिए इन दी फाइनल मैच ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ, ये वेन रूने ने बताया। साला ने कुछ दिन पहले कहा था कि लिवरपूल को वापस अपना हैवी मेटल अटैकिंग फुटबॉल खेलना चाहिए, जब 4-2 से एस्टन विला की हार हुई थी, जिससे कि चैंपियंस लीग प्लेस अभी इन डाउट हैं। सो इस फुटबॉल ऐसा कहना उसको शोभा नहीं देता, इसीलिए उसे अंतिम मैच में ड्रॉप कर देना चाहिए। आई फाइंड इट सैड एट द एंड ऑफ व्हाट ही इज डन, ऑफ व्हाट ही इज अचीव्ड एट लिवरपूल। ये ऑनेस्ट लोट क्या करेगा ये आज पता चलेगा। ऑनेस्ट लोट जिसके बारे में कहा जा रहा है लगभग 5 to 6 million साइनिंग्स हो गए हैं उसको निकालने के लिए, ये लिवरपूल का आखिरी मैच ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ होगा। अभी तक फुटबॉल में उनको क्वालिफिकेशन, चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन लॉक नहीं है। वेस्ट हैम यूनाइटेड अगर रिलीगेट हो गया तो न केवल क्लब को बल्कि वेस्ट हैम यूनाइटेड लंदन टैक्सपेयर्स को 2.5 million pounds स्टर्लिंग खर्च करना होगा। सो लंदन टैक्सपेयर्स क्योंकि रिलीगेट हो जाएगा तो ये क्लब लीज एग्रीमेंट जो है लंदन स्टेडियम में, इसको लेकर प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। अभी जो वेस्ट हैम यूनाइटेड की हार हुई, सो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग रिलीगेट हो जाएंगे और टैक्सपेयर्स को जेब में हाथ डालना होगा। और फुटबॉल में ही डिजेर्बी अपनी टीम के बारे में बता रहा है कि अभी लक उनके साथ है, इसीलिए वो हाथ से इसको जाने नहीं देंगे। विल टॉक अबाउट क्रिकेट। क्रिकेट में अब टॉप 4 का नज़ारा साफ होता दिख रहा है। एक तरफ अभी आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच होगा, कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीत गए और दे आर टॉपर्स नाउ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 18 पॉइंट्स, गुजरात टाइटन्स 16 पॉइंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद 14, पंजाब किंग्स 13, चेन्नई सुपर किंग्स

0: भी फिफ्थ पोजीशन पे 12, राजस्थान रॉयल्स के पास भी 12 पॉइंट्स, दिल्ली कैपिटल के पास भी 12 पॉइंट्स, मुंबई 8 पॉइंट्स नाइन्थ पोजीशन, और लास्ट पोजीशन पे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स। सो ऑल सेट फॉर टुडेज मैच। आर्सेनल धीरे धीरे हॉली हॉली लीग टाइटल की ओर, आज बर्नले को जलाएगा या खुद भस्म हो जाएगा,
1: देखते हैं। वैसे अभी के लिए थोड़ी देर में हम एक नजर डालेंगे फीफा वर्ल्ड कप की कुछ नई खबरें।
2: Get ready for the biggest World Cup ever,
3: 2026 FIFA World Cup.
2: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ
3: चलिए
2: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
0: लेट्स गो वर्ल्ड कप 2026, काउंटडाउन जारी है। आज ग्रुप एफ पर फोकस है। इस ग्रुप में है नेदरलैंड्स, जापान, स्वीडन और ट्यूनिशिया। सभी टीमों की अलग अलग पहचान और अस्तित्व है, यूनिक फुटबॉल लेगेसी, कंट्रास्टिंग स्टाइल ऑफ प्ले और मार्की प्लेयर्स। नेदरलैंड्स टोटल फुटबॉल डच टीम, तीन बार रनर अप, 2022 में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच पाई थी। हिस्टोरिक पेनाल्टी शूटआउट पर वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना से हारी थी नेदरलैंड्स की टीम। कप्तान है वर्जिल वैन डाइक, साथ में है फ्रांकी डी योंग, कोडी गाकपो। जापान की टीम एशिया पावर हाउस, पिछले वर्ल्ड कप में जापान ने पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन जर्मनी को हराया था। खिलाड़ियों में है रियल सोसिएदाद का ताकेफुजा कुबो, साथ में वताहु एंडो और तोमियासु। स्वीडन की टीम 13 बार वर्ल्ड कप अपीयरेंस, 2018 में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच पाई थी स्वीडन की टीम। खिलाड़ियों में हैं विक्टो ग्योकेरेस, इसाक कुलुजेवस्की। और ट्यूनिशिया अफ्रीका का प्रतिनिधि, सातवां पार्टिसिपेशन। अभी तक ट्यूनिशिया की टीम ग्रुप स्टेज नहीं पार कर पाई है, पर 2022 में इस टीम ने फ्रांस को 1-0 से हराया था। की प्लेयर्स यूनियो बेनले का मिडफील्डर खेडिरा, फिर हनीबाल मेच ब्री भी हैं। इस ग्रुप ई में नेदरलैंड्स, जापान, स्वीडन और ट्यूनिशिया। मामला टाइट होगा नॉकआउट क्वालिफिकेशन के लिए। वर्ल्ड कप 2026, हमारे साथ जुड़े रहिए फॉर द लेटेस्ट न्यूज, व्यूज एंड रिव्यूज।
1: वेल थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट्स।
2: FIFA World Cup 2026, 11 जून से 19 जुलाई। कैच ऑल द न्यूज, व्यूज, रिव्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट्स।

श्रेया घोषाल की आवाज में फॉर यू भूल भुलैया 3 मूवी से लिया गया ये गाना स्पेशली फॉर ऑल दोस ट्यूनिंग टू आरएम2 रेडियो मस्ती. गुड आफ्टरनून, 5:10 हुए हैं. एक छोटा सा ब्रेक, देन विल बी बैक ऑफ कोर्स पीके मूवीज.

बनके हमारे मेहमान यहाँ पर उनसे बस 15 मिनट बाद बात करेंगे ऑन एयर लेडीज एंड जेंटलमैन। जी हाँ, वो लोग शॉर्टलिस्टेड हुए फॉर द लकी ड्रॉ फॉर टुनाइट। फिर से एक शॉर्टलिस्ट होगा, कौन है जो शॉर्टलिस्ट के पूल में आ जाएंगे फॉर दिस हेलीकॉप्टर राइड। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, MBC प्ले एंड मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड इज गिविंग लिसनर्स, एक्चुअली हमारे जो सारी ऑडियंस को चांस मिल रहा है टू विन द हेलीकॉप्टर राइड फॉर अ कपल। कैसे चलता है आपको बस डाउनलोड करना पड़ेगा।

आपको MBC Play 1.0 the new version okay and after downloading it आपको बस register करना पड़ेगा. register करने के बाद आपको message मिल जाएगा automatically और आपको बस screenshot खींचकर हमको भेजना पड़ेगा MBC OTT का. जी हाँ, message में लिखा होगा आपका नाम और MBC

सीना कसूर किसका कसूर होगा जो बस जल्दी से जवाब न दे पाएंगे, वैसे थोड़ी देर में हम लेंगे हमारे जो मेहमान हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती और देखेंगे कौन है जो शॉर्ट लिस्ट हो पाएगी फॉर द फाइनलिस्ट पूल ऑफ द हेलीकॉप्टर राइड।

0: So yeah, I hope everybody's ready for our lucky draw. Here we go, ladies and gentlemen. Stay well connected. You're listening to RM2 Radio Masti. Here we go for the game.
1: Raftaar Vibes. Filmy Rides.
2: RM2 Radio Masti.
0: चलिए जी लेडीज एंड जेंटलमैन, 5:30 हुए हैं, 5:30 है अभी के लिए. हम सीधा बात करते हैं विद द फर्स्ट सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट. उनका नाम है तुशिला जी. हेलो, नमस्ते.
3: नमस्ते,
0: कैसे हो आप?
3: ठीक हूँ मैं.
0: यू श्योर? आप सच में ठीक हो? देखो टेंशन ना लो, क्योंकि ये गेम मस्ती के लिए भी हो रही है. सो आई होप कि आप टेंशन ना लो और बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चन ऑफ द डे. ओके जी तुशिला जी.
3: यस ओके
0: जी. आप रहती कहाँ हो?
3: होजेल.
0: ओके जी. तो तुशिला जी, आपके बगल में हम बात करेंगे विद सिमी ऑल्सो. सिमी जी नमस्ते, वेलकम ऑन RM2 रेडियो मस्ती.
4: नमस्ते.
0: नमस्ते. और ये ज्यादा टेंशन में आ गई, क्या होगा? नहीं, टेंशन नहीं लेने का, जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चन. तो फटाफट आप दोनों से. ओके जी, मैं आपको बता रही हूँ कि तुशिला और सबसे पहले गेम शुरू करने से पहले मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि यू नो तुशिला जी और सिमी जी को शॉर्टलिस्ट भी किया गया है आफ्टर यू नो डाउनलोडिंग द MBC प्ले. उन्होंने रजिस्टर किया है हमारे MBC प्ले के साथ और को OTT मिला है, MBC OTT मिला है. उन्होंने एक पिक्चर लिया है, हमको भेजा है. RM2 रेडियो मस्ती का जो फोन नंबर ऑफिशियल है

0: 549-9129 पर व्हाट्सएप के जरिए, और ये दोनों शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। और इस शॉर्टलिस्ट में एक और शॉर्टलिस्ट होने वाला है, उन दोनों में मुकाबला। सबसे पहले और सबसे जल्दी जवाब देने वाली को मिलेगा ये मौका टू पार्टिसिपेट इन द फिनाले। ओके जी, तुशला जी, सिमी जी, आप रेडी हो?
1: हाँ।
0: थोड़ा सा जोश दिखाइएगा। तुशला जी, सिमी जी, क्या आप रेडी हो?
1: हाँ
0: जी। तो अभी के लिए हम आपको एक सवाल करेंगे, ओके, जल्दी से। जो सबसे पहले जल्दी ने, किसी जिसने जल्दी से जवाब दिया है उनको मिलेगा ये मौका टू पार्टिसिपेट अगेन। ओके, तैयार रहिए। 3, 2, 1। What is the full name of the MBC application?
1: MBC Play.
0: मिल गया सिमी जी, हेलो।
1: हाँ
0: हाँ, आपने आपने जवाब नहीं दिया सिमी जी, तोशिला ने जवाब दे दिया।
1: हाँ
0: हाँ, लेट हर। थैंक यू सो मच सिमी जी फॉर पार्टिसिपेटिंग दो, थैंक यू सो मच। आप बस एमबीसी प्ले का जो एप्लीकेशन है उसका लुफ्ट उठाते रहिए। आपने रजिस्टर तो कर लिया, आपके मोबाइल में एमबीसी प्ले का एप्लीकेशन हो गया। यहाँ पर तुशला जी, कंग्रेचुलेशंस, क्या बात है। वैसे आप तो जानती ही हैं कि ये जो एमबीसी एप्लीकेशन है कैसा चलता है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग विद अस हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती। आप सिलेक्टेड हुए फॉर द ग्रैंड फिनाले। थैंक यू सो मच, बाय बाय तुशला जी।
2: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
3: RM2
2: रेडियो मस्ती।

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
1: OM2,
2: रेडियो मस्ती।
3: बेबी मेरी हाय हाय कोली मारे।

0: क्यों से गोली मारे, लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो फॉर द फैशन टिप्स।
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
0: ऐसे नाच रहो, खुश रहो और यूं ही साथ निभाते चलो। यहाँ पर विंटर सीजन में कंफर्ट और स्टाइल के दोनों की बात हो रही है। सॉफ्ट निटेड स्वेटर्स, हाई नेक टॉप्स और वार्म जैकेट के साथ सिर्फ कोजी नहीं लगता, लेकिन बल्कि वी कैन से दैट सुपर ट्रेंडी भी दिखता है। स्किनी जीन्स या वाइट लेग पैंट्स के साथ एंकल बूट्स परफेक्ट विंटर कॉम्बो है। ये बहुत ही ज़्यादा है एक साथ, ओके। और एक छोटी सी टिप हम आपको देना चाहते हैं कि विंटर आउटफिट्स में न्यूट्रल शेड जैसे बेज, ग्रे, व्हाइट और ब्राउन उसको यूज करो। क्लासी भी दिखेगा और फोटोज भी एस्थेटिक आएगा।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
3: RM2।

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: यो वेलकम आर एम टू रेडियो मस्ती लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलेंगे वापस 6:30 बजे के बाद. ओके, अभी के लिए 6 बजे के समाचारों का हम स्वागत करेंगे थोड़ी देर में ही.
3: आर एम टू रेडियो मस्ती.
4: The time is brought to you by
5: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
4: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
6: North, South,
7: 103.5.
6: East, West,
7: 96.4.
6: Center,
7: 99.4.
1: RM2
0: Radio Musti.
2: Time check. शाम के ठीक 6 बजे हैं.
8: सोमवार 18 मई 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है. सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. कल कोंटोगैल में कुछ हिंसक घटनाएं हुई. एक हेल्थ ट्रक पर क्वाइट बाइक चलाने को लेकर दो गुटों के बीच तनाव पैदा हो गया था. इस हंगामे के दौरान कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाने के लिए मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की ली गई मदद. इस घटना को लेकर 5 लोगों के साथ की जा रही है पूछताछ. कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल इस मंगलवार

0: को राष्ट्रीय सभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में एक ऐसे आयोग का गठन का प्रस्ताव है जो मौलिक अधिकारों, लोकतांत्रिक संस्थानों और राज्य के कामकाज से जुड़े कई बड़े सुधारों की समीक्षा करेगा। पिछले साल 15 लाख से अधिक पर्यटकों ने देश का दौरा किया, जिससे लगभग 103 बिलियन रुपए की कमाई हुई। समुद्र तट के होटलों को चुनने वाले पर्यटकों के अलावा अब ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो अपार्टमेंट, विला और बंगले किराए पर लेना पसंद करते हैं। और विदेश में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वीडन के गोटेनबर्ग शहर में यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उनकी 5 देशों की यात्रा का एक अहम पड़ाव पूरा हो गया है। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि कल कोंटोरेल में कुछ हिंसक घटनाएं पेश आई, प्राप्त जानकारियों के अनुसार एक हेल्प ट्रक पर क्वाड बाइक चलाने को लेकर दो गुटों के बीच तनाव पैदा हो गया था। इस हंगामे के दौरान कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाने के लिए मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की मदद ली गई। इस घटना की सही वजह और पूरी सच्चाई का पता लगाने की दिशा में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। इसके चलते 5 लोगों के साथ भी पूछताछ की जा रही है। रिया काम्बुजन की रिपोर्ट पर विवरण करुणा लालू का।
1: कोंटोरेल में सोमवार सुबह माहौल सामान्य दिखाई दिया, लेकिन कल रात की घटनाओं के निशान अब भी मौजूद हैं। यह हेल्प ट्रक उन घटनाओं का गवाह बना जब एक समूह क्वाड बाइक्स लेकर यहां पर आया।
2: Moi, je pars galber vers 4h par là. Right. Je me pars galber, me trouve un quad bike. Le terrain. Nous laisser que ça, c'est pas fait, hein, pas fait, hein. Je ne comprends pas. Et Lola, quand fini, ça fait un fil correct. Et l'autre groupe est venu. Je me suis regardé là. Maintenant, je suis là, je ne sais pas comment je donne le temps. Causer non.
3: Moi, je suis allé au pique-nique dans mon bus avec ma famille. Moi, quand je retournais, mon nièce Pédiama et papa là-haut. C'est, en d'autres mots, c'est une nouvelle découverte. Là, je me fais à Saint-Pierre, je suis venu. Donc, voilà, là-bas, moi. Là, le matin, quand je me levais, je me disais, il y a un quad bike, puis pédale de quad bike dans beaucoup de sentiers.
1: स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले इस स्थल पर पहली बार इस तरह की घटना हुई है।
4: Habitué arrivé dans affaire comme ça dans l'endroit?
5: Non, comme il faut y arriver là. Comme il faut.
4: Sinon, dans sa parcours de santé là, beaucoup de monde fait jogging là-bas?
5: Un matin, oui, c'est un matin, tantôt je t'allais.
1: रविवार शाम 6 बजे के करीब इत्तला करने पर पुलिस ने तुरंत कदम उठाया। विशेष इकाइयों जैसे कि स्पेशल सपोर्टिंग यूनिट और स्पेशल मोबाइल फोर्स को भी तैनात किया गया।
6: Vu qu'il y a une altercation entre des groupes, la police, dans un premier temps, la priorité c'était qu'il y amène un accalmie dans la situation. Pendant l'opération, il y a une information qui finit dans la police concernant un groupe de personnes qui finit refuser dans un terrain boisé aux alentours. Et la police, dans une logique opérationnelle, nous finit un chou qui, ça va une personne-là, capable d'être évacuée dans une place qui est safe. En toute sécurité. Et que la police finit réussir avec le support de plusieurs unités pour évacuer cette personne-là dans l'endroit sécurisé aux alentours de minuit.
1: Deux vahanon et un quad bike ko aake hawale kar diya gaya. Ek aupcharik shikayat darj ki gayi hai aur ghatna ki satyik paristhitiyon ki jaanch jari hai.
6: Et là, ben, exercice d'identification qui finit déjà commencé. Maintenant, la priorité pour la police, c'est d'établir tout bande fait et circonstances de cet incident-là. Et par rapport à ça, pour une bande action policière qui poursuive.
1: Filhal, suraksha banaye rakhne ke liye, ilake mein subah se hi gashti jari hai.
0: साल की शुरुआत से अब तक देश में चिकुनगुनिया के 3

0: 476 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि सर्दी की शुरुआत के साथ मामलों की संख्या में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। साल की शुरुआत से ही अमेरिकी संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन चिकुनगुनिया को लेकर यात्रा स्वास्थ्य सलाह जारी कर रही है। पिछले हफ्ते मॉरिशस को लेकर स्तर 2 की स्वास्थ्य सलाह जारी कर दी गई है। सिंचा मुटु की रिपोर्ट पर विवरण पूजा हस्ताबिर सुकालू का।
1: इस वर्ष की शुरुआत से देश में चिकुनगुनिया के 3000 से भी अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि सर्दियों के आगमन के साथ मामलों में कमी की उम्मीद है, फिर भी कई इलाकों से हर दिन नए मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। डॉक्टर फैजिल कुदाबुकस कहते हैं, शनिवार को चिकुनगुनिया के 87 मामले दर्ज किए गए। वर्तमान में 110 सक्रिय मामले पाए जा रहे हैं। साल की शुरू से मॉरिशस में चिकुनगुनिया के 3478 मामले पाए जा रहे हैं और रोड्रिक्स में 11 मामले। सर्दी के प्रवेश से चिकुनगुनिया के मामलों में कमी नोट की जा रही है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की टीमों ने एसएमएफ के सदस्यों के समर्थन के साथ बोबासा में कोलोनल मैगाव का दौरा किया, जहां चिकुनगुनिया के 2 नए मामले पाए गए। वहां के निवासी इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं। रीता मुरार कहती हैं, बहुत से लोग इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, चाहे पड़ोसी के यहाँ ये बीमारी पाए जा रहे हो। राजन किसना कहते हैं, यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ लोग सतर्क हैं, जैसे कि कचरे को जहाँ पर फेंकना चाहिए वहाँ पर फेंका जाता है। रोजमे अमा कहती है, मैं सावधान रहती हूँ, मैं फूल के गमले को साफ सुथरा रखती हूँ, पानी जमा नहीं होने देती, पत्ते हो या कचरा सब हटा देती हूँ। जहाँ कुछ निवासी सतर्क बने हुए हैं, वहीं अन्य कम सतर्क दिखाई दे रही है। लिजेट एलियोनो कहती है, कुछ लोग अभी तक लापरवाही कर रहे हैं, सड़कों पर कचरा फेंकने से नहीं हिचकिचाते। इस वर्ष की शुरुआत से चिकुनगुनिया के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण 14 मई को अमरीकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने मॉरिशस यात्रा को लेकर दूसरे स्तर की स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। स्तर 2 पर सख्त सावधानियां बरतने की सिफारिश दी जाती है।
0: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल इस मंगलवार को राष्ट्रीय सभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में एक ऐसे आयोग के गठन का प्रस्ताव है जो मौलिक अधिकारों, लोकतांत्रिक संस्थानों और राज्य के कामकाज से जुड़े कई बड़े सुधारों की समीक्षा करेगा। वकील रामा वालाइदेन का मानना है कि इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र को और मजबूत करना और मॉरिशस को भविष्य की नई चुनौतियों और वास्तविकताओं के लिए बेहतर ढंग से तैयार करना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने आज दोपहर को भारतीय श्रमिकों की ऑनलाइन भर्ती के लिए एक सिस्टम का आधिकारिक तौर पर शुरुआत की। मॉरिशस और भारत के बीच हुए समझौते के बाद ये प्रोजेक्ट हकीकत में बदला है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मॉरिशस के कंपनियों के सामने आ रही कर्मचारियों की कमी की समस्या का समाधान करेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड का कहना है कि निर्माण और कृषि उद्योग जैसे सेक्टरों को कर्मचारियों की भर्ती में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कंपनियों के विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है। पिछले साल 15 लाख से अधिक पर्यटकों ने देश का दौरा किया, जिससे लगभग 103 बिलियन रुपए की कमाई हुई। समुद्र तट के होटलों को चुनने वाले होटलों पर्यटकों के अलावा अब ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो अपार्टमेंट, विला और बंगले किराए पर लेना पसंद करते हैं। इससे उन्हें अपनी यात्रा के दौरान देश को बेहतर ढंग से जानने का भी मौका मिलता है, साथ ही वे मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान दे रही हैं। एमएसएम की शिक्षा समिति ने आज दोपहर को शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा पौसाद की कड़ी आलोचना की। यह आलोचना लीला देवी दुखन लक्ष्मण की अध्यक्षता में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। लीला देवी दुखन लक्ष्मण ने विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट की कमी की निंदा की और कहा कि मंत्री को एक सही रोडमैप पेश करनी चाहिए। उन्होंने जनवरी 2027 से पूर्व प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त शिक्षा को समाप्त करने की घोषणा की भी आलोचना की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और मुद्दा उठाया गया, स्कूलों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल। समिति का मानना है

0: कि मोबाइल फोन एक उपयोगी शैक्षिक उपकरण हो सकता है, बशर्ते कि इसके लिए स्पष्ट नियम बनाया जाए। सगा उनो की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
1: प्रेस के समक्ष दल के शिक्षा आयोग ने शिक्षा मंत्री द्वारा ऐलान किए गए शिक्षा सुधार पर चर्चा की। पूर्व शिक्षा मंत्री लीला देवी दुखन लक्ष्मण ने सुधार की तरक्की और शिक्षा प्रणाली के लिए ठोस दिशा निर्धारण पर सवाल उठाया।
2: Une en forte demande que le ministère dévoile enfin son plan d'action. Vous êtes un blueprint. Les révèle quoi? Un plan d'action, un plan de construction. Et malheureusement, jusqu'ici, personne, absolument personne, pas connu, qui est non dans ce plan-là. Le peuple, les étudiants, expectent qu'il ministre finalise ce document de la réforme éducative.
1: इस प्रेस वार्ता के दौरान शिक्षा प्रणाली से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, खासकर नई शैक्षणिक और तकनीकी वास्तविकताओं के अनुरूप ढलने की चुनौतियों पर।
0: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। इंटरफेथ सिंपोजियम यानी कि अंतर धार्मिक सम्मेलन का चौथा संस्करण इस समय पाई के बहाई केंद्र में हो रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र के विभिन्न देशों से आए कई प्रतिभागी इससे 3 दिवसीय सम्मेलन में भाग ले रही है। इसका उद्देश्य है लोगों के बीच बेहतर समझ बढ़ाना और विविधता में एकता को बढ़ावा देना। उर्वशी बिकारी बंजन की रिपोर्ट पर विवरण करुणा लालू।
1: विचार विमर्श का मुख्य विषय रहा साथ मिलकर रहने की भावना और सामाजिक एकता, न केवल मॉरिशस में बल्कि पूरे क्षेत्र में। काउंसिल ऑफ रिलीजन के अध्यक्ष पादरी फिलिप गुपी ने कहा,
3: de découvrir dans les textes sacrés.
1: हर एक धर्म के धर्म ग्रंथ को जानना जरूरी है ताकि साझा मूल्यों को जान सके, ताकि व्यक्ति एक धर्म की पूर्व धारणा से परे उसे बेहतर समझ सके उसके केंद्र में क्या है। इस दौरान सहिष्णुता, आपसी सम्मान और विभिन्न समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। रिलीजन्स फॉर पीस के सचिव डॉक्टर कुरिया फ्रांसिस ने कहा, हमारे पास चिकित्सा, सुलह और क्षमा पर मैनुअल हैं। विभाजन और सामाजिक तनाव के इस वैश्विक दौर में वक्ताओं ने अंतर धार्मिक वार्ता के महत्व को उजागर किया।
0: कहानी एक ऐसे शिक्षक और लेखक की है जिन्होंने अपने ज्ञान और कड़ी मेहनत से न केवल विद्यार्थियों को प्रेरित किया अपितु साहित्यिक दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई। फॉरेस्ट साइड SSS बॉयज कॉलेज में कार्यरत गौतम लाल बिहारी की पहली सृजनात्मक रचना का लोकार्पण कौंजाबल के काशीनाथ मंदिर में किया गया। कई महानुभाव उपस्थित रहे जिनमें कला एवं सांस्कृतिक मंत्री शामिल थे। पूजा सुकालू की रिपोर्ट।
4: जनता की सत्ता कब होगी साकार? सत्ता से छूटेगा कब निजी अधिकार? मानवता की सत्ता का भव्य आगार निर्मित होगा कब अखिल संसार?
5: आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से परिचित करा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में 38 वर्षों का अनुभव हासिल किया है। हम बात कर रहे हैं गौतम लाल बिहारी के बारे में। कोविड काल के दौरान उनकी लेखन यात्रा शुरू हुई और इसी का परिणाम है उनकी नई पुस्तिका गंतव्य, जिसका हाल ही में कौंजाबला के कैलाशनाथ मंदिर में लोकार्पण समारोह हुआ।
6: लेखन क्यों होता है? ताकि हम एक अच्छे समाज, एक अच्छे व्यक्ति को हम बना सके। गंतव्य में 51 कविताएं हैं और 22 कहानियां हैं, लघु कथाएं हैं जिसको मैं कहता हूं। और देखिए, जीवन में सभी लोग किसी न किसी रूप में अपने गंतव्य की तलाश में है। गंतव्य का मतलब है मंजिल। मंजिलें बहुत होती हैं, लेकिन मंजिल को पाने के लिए रास्ते जो होते हैं, उन रास्तों से गुजरते समय आप जो करते हैं, जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में आप लग्न हो जाए।
5: वर्तमान में गौतम लाल बिहारी फॉरेस्ट साइड के SSS बॉयज में हिंदी पढ़ा रही है। उनकी लेखन और शिक्षा

0: शिक्षण के प्रति समर्पित मेहनत ने उन्हें शिक्षा जगत में विशेष सम्मान और पहचान दिलाई है। इस समारोह में कई महानुभाव उपस्थित रहे, जिनमें कला एवं सांस्कृतिक मंत्री महेंद्र गोंदिया शामिल रहे।
1: मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है।

0: saisissent quand on arrive là-haut.
1: सफलता केवल वो नहीं जब हमें किसी उपलब्धि के लिए सराहा जाता है या सम्मानित किया जाता है, ये एक सच्चाई है। असली सीख तब मिलती है जब हम गिरते हैं और खुद ही उठना सीखते हैं। इसी क्षण में हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, खुद पर संदेह होने पर भी हम अपने आप में सुधार लाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही प्रक्रिया हमें प्रगति की ओर ले जाती है और हमारे लक्ष्यों को पाने में मदद करती है।
2: जीवन के अनेकों रास्ते चलते रहते अनवरत बल वास्ते।
1: अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
3: कल रविवार को ये खबर बड़े झटके की तरह आई। कला के क्षेत्र में कई लोग इसे एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक नुकसान बता रहे हैं। मूर्ति नागालिंगम उन कलाकारों में से एक थे जो दूसरों के साथ ज्ञान बांटने और अपनी बेमिसाल सादगी के लिए जाने जाते थे। इस साल जुलाई में आयोजित होने वाला सालों दु मे में उन्हें विशेष श्रद्धांजलि दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने ही इस बड़े कलात्मक आयोजन की शुरुआत की थी। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वीडन के गोटेनबर्ग शहर में यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उनके 5 देशों की यात्रा का एक अहम पड़ाव भी पूरा हो गया, जिसमें इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात और नेदरलैंड्स की उच्च स्तरीय यात्राएं शामिल थी। तफसील के साथ सुमेहरा अकबर अली।
4: भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा के नतीजे में 6 अहम रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत बुनियाद डाली गई। मानव विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर देते हुए सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में बातचीत की गई। व्यापार, निवेश, प्रतिरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवीनीकरण, जलवायु परिवर्तन पर खास बल दिया जा रहा है।
5: हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे।
4: स्वीडन के प्रधानमंत्री क्रिस्टेसन ने इस दौरे को संगमीर की हैसियत दी। उन्होंने कहा,
6: टुडे वी हैव लॉन्च्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड जॉइंट एक्शन प्लान।
4: आज हमने एक रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की। हमने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संयुक्त कार्य योजनाओं पर सहमति जताई। हम सहयोग के क्षेत्रों को बढ़ा रहे हैं, नए सेक्टरों को शामिल कर रहे हैं जो भविष्य का निर्माण करें।
6: इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, AI, स्पेस एंड जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी अलोंग विद द ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ कोर्स।
4: ये स्वीडन यात्रा ऐतिहासिक भारत EU समझौते के लिए भी महत्वपूर्ण रही। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डर लायन से भी मुलाकात की।
7: We succeeded indeed in concluding our landmark trade agreement. We call it the mother of all deals.
4: हमने कामयाबी के साथ अपने ऐतिहासिक व्यापारिक समझौते पर बात की, जो सभी समझौतों की माँ यानी मदर ऑफ ऑल डील्स है। करीब 2 बिलियन लोगों की आबादी, जो वैश्विक GDP के 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है और 90% से ज्यादा टैरिफ छूट की अक्कास है। तिजारत और निवेश को बढ़ाने की संभावनाएं हैं स्वीडन से भारत तक। इस संधि से हमारी जनताओं को लाभ होगा। इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकते, इसीलिए साल के आखिर तक इस संधि पर दस्तखत करना चाहते हैं।
7: There is no time to lose in turning this opportunity in reality. And that's why we are committed to sign the agreement by the end of the year and making it fully operational at record speed.
4: भारतीय प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के बेहतरीन और कामयाब तरीन उद्योगपतियों से भी मुलाकात की और कारोबार की नवीन और उभरती संभावनाओं पर बात की।
5: सरकारें केवल फ्रेमवर्क सपोर्ट और पॉलिसी डायरेक्शन दे सकती है। जमीनी स्तर पर असली बदलाव

0: आप सभी के प्रयासों से ही संभव रहेगा। इसलिए आज मैं आपको भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित करने के लिए आया हूं। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के रूप में भारत आज एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा।
1: उधर अमेरिका के साथ चल रहे युद्ध के बीच ईरान में आम नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी धमकियों और संभावित अमेरिका इजराइल हमलों के डर के चलते तेहरान सरकार अपनी जनता को जमीनी हमले के लिए तैयार कर रही है। पिछले कुछ दिनों में तेहरान समेत अलग अलग शहरों से आई तस्वीरों और वीडियो में सार्वजनिक स्थानों पर गन ट्रेनिंग के कियोस्क नजर आ रही है। और अंत में मौसम का हाल, आम हालत। पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह पूर्व, दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटो पर थोड़े से बादल घिराएंगे और हल्की सी बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के उस पार लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः पश्चिमी तथा दक्षिणी समंदरों के उस पार न जाने की मांग की जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्यास्त 5:40 पर, जबकि कल सूर्योदय 6:32 पर।

तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम शिव को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में हम सुन पाएंगे शोक समाचार।

0: news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: आयुषोक समाचार सुनते हैं। राल रोड रियांबेल सुरीनाम में, राल रोड रियांबेल सुरीनाम में 72 साल के 72 इयर्स ओल्ड के श्री नवरतम हीरा जिन्हें सब लोग नान के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर राल रोड रियांबेल सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। एवेन्यू उस्मान सैंपल में 79 साल की 79 इयर्स ओल्ड की श्रीमती सुबावती कोसी जिन्हें सब लोग सनमत के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके भांजे श्री रवि अविनाश उचाईबा के घर एवेन्यू उस्मान सैंपल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 10 AM। गोपाला लेन मीबर्ग में 83 साल की 83 इयर्स ओल्ड की श्रीमती पेचाई कोरा चिनिया रामुना जिन्हें सब लोग सूर्या के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर गोपाला लेन मीबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो मीबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। रॉयल रोड रिश्तिया में 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड के श्री धनराज बिहारी जिन्हें सब लोग सुनील कोको के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उनकी माँ श्रीमती अनीता गनु के घर रॉयल रोड रिश्तिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। एसएसओ लेन बुनाकई में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देवंती लक नारायण जिन्हें सब लोग रीता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उनके बेटे श्री विक्रम भजन के घर एसएसओ लेन बुनाकई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुनाकई की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। नंबर 12 एवेन्यू लासूस पाल्मा कैथोबोन में 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी सोनिया पैदाशी नाम इटू और जिन्हें सब लोग आजी गोनू के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के घर नंबर 12 एवेन्यू लासूस पाल्मा कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 11 AM। मोंडेजिया रोड प्लेमायो में 54 साल की 54 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शीला गुजादा पैदाशी नाम नंदलोल और जिन्हें सब लोग नीता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके पति श्री रविंद्रनाथ गुजादा के घर मोदेजिया रोड प्लेमायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Raftaar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2,
4: Radio Musti.

वेल, आपने भी हमारा दिल चुरा लिया है और हम भी कुछ ऐसा ही करने का इरादा रखते हैं। 7:05 हो चुके हैं। लवली गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कल हमारी मुलाकात बिल्कुल नहीं हुई थी और एक दिन जब मुलाकात नहीं होती है ना तो वी कीप लुकिंग फॉरवर्ड कि कब मिलना होगा और कब आपको बस इन खूबसूरत गीतों के साथ एंटरटेन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हर एक गाने के साथ साथ हमारा और आपका जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो और भी स्ट्रॉन्ग बनता है और हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब आप वापस से इस प्यार को मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा और ऐड करते हैं और इसको रेसिप्रोकेट करते हैं। वेल, आर एम टू

रेडियो मस्ती में दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक इन योर इवनिंग लाउंज बहुत ही प्यार से इट्स टाइम फॉर यू टू सिट बैक रिलैक्स एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल कूल सूदिंग म्यूजिक ऑन द वेव्स जहां पर आपको सच में ऐसा लगेगा कि जिंदगी एकदम से ठहर गई है। कभी कभी ये जो पीस ऑफ माइंड होता है बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि सोचने वाली बात यही है कि दिन भर की थकान को दूर करने के लिए ऑल वी नीड टू डू इज़ टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट द टायर्डनेस। और हम क्या करते हैं जब हम घर वापस आते हैं तो काम का प्रेशर, काम का लोड या फिर घर में जो कुछ भी हो रहा है इन सारे हलचल को हम अपने छोटे से दिमाग में बसा कर रख लेते हैं और कभी कभी हम रिलैक्स करने के बारे में भी सोचते हैं ना तो हमारा मन इतना चंचल होता है कि ये रिलैक्स नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं द बिगेस्ट एक्सरसाइज इज टू ट्रेन योर माइंड रादर देन ट्रेनिंग योर बॉडी। ये सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। तो चलिए अभी के लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आप अपने माइंड को एकदम फिर से रिसेट कीजिए और हमारा साथ देते रहें ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। एंड डोंट फॉरगेट लाइन खुली हुई है हमेशा की तरह, आपसे दो तीन प्यारी बातें हम जरूर करना चाहते हैं ऑन 402-8035-4200 पर हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जब भी चाहे जिस वक्त भी चाहे हमें फ़ोन कर सकते हैं, साथ में आपके मैसेजेस का इंतजार ऑन 5499-1294।

0: बिल्कुल, आपने हमारा दिल चुराया हुआ है और हम जैसे कह रहे थे शुरुआत में, हम भी आपका दिल चुराने आए हैं और आपके बेकरार बेचैन दिलों को थोड़ा सा करार देने के लिए हम खूबसूरत गाने पेश कर रहे हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। 7:13 टू ऑल दोज हैविंग द डिनर राइट नाउ, आपको विश करेंगे बन पिछे शुभाहार। चलिए इस शो को और भी हम खास बनाएंगे आपके जरिए, क्योंकि आप लोग जब हमें फ़ोन करते हैं तो हमारे शो में चार चांद लग जाता है। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने प्यार से हमें याद कर रहे हैं। और चलिए अभी के लिए वी हैव राधा जी और ऑल द वे फ्रॉम सैंखवा, तो उनसे हम जरूर बात करेंगे। हेलो राधा जी, नमस्ते आपको।
1: नमस्ते आपको दीदी जी, आपका आवाज सुनकर हमारा दिल और सब खुशहाल बन जाएगा।
0: थैंक यू सो मच, आपकी भी आवाज बहुत ही स्वीट है। और बताइए सब कुछ घर में ठीक ठाक है?
1: सब ठीक है, आपको दिल से धन्यवाद करूंगी क्योंकि उस दिन आपने मेरे बेटे के लिए संगीत गाया था ना
0: जी। ये तो हमारा प्लेजर है, ये हमारा प्लेजर है। जब हम आपके लिए गाना बजाते हैं ना तो हम उतने ही खुश होते हैं, और जब आप खुश होते हैं तो ये हमारे दिल में जाकर लगता है कि हमारे लिसनर्स, हमारे जो दिल के करीब हैं वो खुश हैं, तो हमारे लिए यही मायने रखता है।
1: हाँ, ये आज मैं आपके लिए, आपसे खास कर मेरे पति के लिए एक गाना मांगना चाहती हूँ। कल हमारी शादी को 35 हो जाएंगे।
0: Oh my God, 35 years. किसी इंसान के साथ इतने लंबे समय तक निभाना आजकल बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप लोग एग्जांपल हैं।
1: है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि उतार चढ़ाव होता है जिंदगी में, हमें मैनेज करना आना चाहिए।
0: एग्जैक्टली, ये आपने बिल्कुल सही कहा।
1: उतार चढ़ाव हो जाएंगे, आप छोड़कर चले जाएंगे तो वो क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हम नारी सहना जानते हैं और थकान रखना जानते हैं।
0: ये तो आपने सही कहा। तो चलिए राधा जी, आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: अगर हो सके तो मेरे हम सफर से गाना,
0: रेफ्यूजी मूवी से।
1: बार उसने मुझे गाना दिया था मेरे हम सफर,
0: रेफ्यूजी मूवी से।
1: यस, मेरे हम सफर,
0: मेरे हम सफर,
1: किसी राह में किसी मोड़ पर।
0: ओ ओके ओके ओके, वो मुकेश साहब का गाया हुआ। ओके, तो चलिए आपका ये गाना हम आपका ये गाना हम चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड
1: मेरे पति के लिए, जो कि थोड़ा बीमार है, जाने दस्तक, मैं दुर्गा माँ से प्रे करूंगी कि वो जल्दी से ठीक हो जाए।
0: बिल्कुल, हम भी प्रे करेंगे।
1: बच्चे, चार बच्चे की तरफ से, बेटी है, छोटा पोती है आराया, याशना, जीत और मेरे बेटे आविश की तरफ से।
0: ओके, थैंक यू सो मच राधा जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
1: आपको, आप जहाँ भी रहेंगे माँ आपका जरूर सहायता करेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं।
0: थैंक यू सो मच राधा जी, मींस अ लॉट।
1: नहीं कि आपने मुझे लाइन लिया, नहीं, क्योंकि मैं रोज आपकी आवाज सुनती हूँ, आप रोज किसी से बहुत प्यार से बात करते हैं।
0: थैंक यू सो मच राधा जी, मींस अ लॉट फॉर अस।
1: बाय
0: राधा जी, टेक केयर, बाय
1: बाय।
0: तो चलिए एक और कॉलर है लाइन में, हम उनसे जरूर बात करेंगे। हेलो जी।
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते, आपका नाम?
2: नमस्ते, मैं उर्वशी बोल रही हूँ।
0: उर्वशी, उर्वशी, टेक इट इजी उर्वशी।

0: जी बोलिए, आप आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है?
1: ठीक है ठीक है।
0: चलिए
1: मैं एक पुराना गीत
0: अच्छा बताइए, अगर हो सके हो तो हम चलाएंगे। कौन सा गाना?
1: मोहम्मद रफी।

0: सो स्वीट।
1: जी
0: चलिए उर्वशी जी,
1: बच्चा लोग नया गाना पसंद करते हैं ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो उर्वशी जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, एंड गॉड ब्लेस यू, एंड उम्मीद करते हैं कि आप फिर से दोबारा फोन करेंगे हमारे नेक्स्ट शो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट। तो चलिए, ये थी राधा जी और उर्वशी जी, जिन्होंने पुराने गीत की फरमाइश की है। तो चलिए, बैक टू बैक हम इसको चलाने की पूरी कोशिश करेंगे, और बीच बीच में कुछ 90s कुछ नए गाने फिट इन करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन कॉल अस ऑन 4028035 4028035 पर हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आप हमें याद कर सकते हैं ऑन 5491294। मैसेजेस के ज़रिए भी आप अपना प्यार पहुँचा सकते हैं, और उतने ही प्यार से हम आपके मैसेजेस को हम रिसीव करेंगे। 7:17। तो चलिए, अभी के लिए इस कारवां को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और आपके फोन कॉल्स का हम इंतजार करते रहेंगे।
2: इवनिंग लाउंज,
3: इवनिंग लाउंज,
4: RM2
2: रेडियो मस्ती।

0: We have this beautiful Gaana and the beautiful mesmerizing voice of Javed Ali Diwana kar raha hai tera roop sunehra aur किसी को याद कर रही है इन गानों को सुनने के बाद तो जरूर अपना प्यारा सा पैगाम ऑन 5499-1294
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

वेल चलिए इस गाने की फरमाइश की है उर्वशी जी, एंड चलिए ये गाना गुजारा स्पेशली फॉर यू, एंड जितने भी सारे लोग आपको जानते हैं खास तौर से ये गाना उनके नाम भी।

वेल मुझे पता है कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने दिल का हाल बयां करना चाहते हैं तो कभी आप हिचकिचा रहे होंगे या फिर आपको डर लग रहा है, तो क्लैरिटी इज़ ऑलवेज बेटर दैन रिजेक्शन। कभी कभी आप ये भी सोचे कि मे बी यू कैन शेयर योर फीलिंग्स थ्रू अ सॉन्ग, और ये गाने हम इसीलिए चला रहे हैं ताकि ये आपके फीलिंग्स को थोड़ा और ट्रिगर करे और आप

0: हमें वापस से मैसेजेस भेजिए। चलिए यहाँ पर आपके मैसेजेस का इंतजार है 1549912294। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पर फ़ोन कॉल्स के लिए अगर आप हमें फ़ोन कर रहे हैं तो आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है और हम इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आज लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, देयर इज़ ऑलवेज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। तो हम वेलकम कर रहे हैं आपके मैसेजेस को आज ऑन 5499 1294। एंड चलिए यहाँ पर अगला गाना हम ख़ास तौर से डेडिकेट कर रहे हैं स्पेशली फॉर संगीता जी। जुर्म का गाना आपको सुनना है, जब कोई बात बिगड़ जाए। चलिए अगर पॉसिबल हुआ तो ये गाना चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ में बदवक विदेशी जी अफताया के नी रोमांटिक सॉन्ग फॉर अनुषा ऑफ मोताबा। थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। एंड चलिए यहाँ पर आप कहते हैं गुड इवनिंग दिव्या, एक गीत मेरे बेटे नितिश के लिए, सभी फैमिली के लिए। और मीला जी आप हैं मोताई ब्लॉच से, एंड गोज़ आउट टू ऑल रामदिकल फैमिली। वैसे काफ़ी लोगों ने गाने की फरमाइश की हैं, तो चलिए जितने भी सारे लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से आपको याद दिला रहे हैं, आई नो हमने शुरुआत में कहा था कि लाइन खुली हुई है और आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन अनलकीली हमें बस मौका मिला दो लिसनर से बात करने के लिए, और इसके बाद हमें कुछ टेक्निकल इशू आना शुरू हो गया है फ़ोन कॉल्स के साथ। तो अगर आप हमें मैसेजेस भेजे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। ऑन 5499 1294
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: दिल भी कितना दीवाना होता है, इसको लाख समझाने की कोशिश करो तो ये समझता ही नहीं है। शायद इसी वजह से कहते हैं कि दिल तो बच्चा है, थोड़ा सा कच्चा है, और दिल को अगर आप समझाने में लग जाएंगे ना, तो दिल आपको समझाएगा कि भाई दिमाग, प्यार में तुम्हारा कोई काम नहीं है। शायद इसी वजह से कहते हैं ना कि प्यार में लॉजिक नहीं, बस मैजिक ही चलता है, और ऑल यू हैव टू डू इज कीप बिलीविंग इन द मैजिक ऑफ लव। वेल फ्रेंड्स, रात्रि के 8:08 हो चुके हैं और मंडे इवनिंग 18 मई 2026, ऐसे में एक बार फिर से आप लोगों से मुलाकात करने के लिए आ चुके हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती टिल 9 PM, जहां पर दिव्या का साथ है। तो चलिए आपके कुछ मैसेजेस की ओर हम ज़रूर बढ़ना चाहेंगे। हाई, डेडिकेटिंग द नेक्स्ट गाना फॉर जान रवि हु इज़ फार अवे फ्रॉम मी फ्रॉम वाइफ करिश। तो चलिए, करिश अभी अपने पति को बहुत ही याद कर रही हैं, एंड साथ में किसी ने कहा है, हाय दिव्या, वर्किंग एट G2 हॉस्पिटल नाइट शिफ्ट एंड लिसनिंग टू यू एज वेल। हे, आपको बोन कुआज मीशा, लवली सिलेक्शंस, थैंक यू सो मच टू मेक दिस नाइट फ्लाई वेरी क्विकली, विशिंग बोन कुआज टू ऑल दोज वर्किंग ऑल्सो टू यू फ्रॉम मीशा। मीशा, दैट्स रियली स्वीट, एंड आपको बोन कुआज हमारी तरफ से बहुत बहुत सारा प्यार। यू डूइंग अ फैबुलस जॉब, एंड नाइट शिफ्ट करना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी विद अ स्वीट स्माइल ऑन योर फेस, आप लोग मुस्कुराकर हमेशा हर एक काम को आसान बना देते हैं। सो ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज कीप लिसनिंग टू रेडियो मस्ती। हाई, वुड लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर वाइफ वर्षा गंगू ऑफ न्यू ग्रोव। वी गॉट मैरिड जस्ट 4 मंथ एगो एंड वॉन्ट हर टू नो हाउ मच आई लव हर। माई लव फॉर यू ग्रोज स्ट्रॉन्गर एवरी डे, एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ। आई लव यू सो मच फ्रॉम हस्बैंड देव। चलिए देव जी, आई जस्ट होप कि इस वक्त वर्षा ज़रूर प्यार का इजहार सुन रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। चलिए, 4 महीने हो गए हैं शादी को, एंड आई जस्ट होप कि 4 साल के बाद भी या फिर 40 साल के बाद भी आप उतने ही प्यार से उनके लिए डेडिकेशन करेंगे और उतने ही प्यार से आप उनको याद करेंगे। ये प्यार उतना ही ताज़ा ज़रूर होना चाहिए। Well, we have Roshni from Katribon. Thank you for liking the song selections, Roshni. वैसे आपने गाने की फरमाइश की है, अगर हो सके तो चलाएंगे, and यहाँ पर आप ज़रूर अगला गाना goes out for someone very special. उनको मिस किया जा रहा है from Vanisha. जैसे हम कह रहे थे, शायद आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन इस फीलिंग को आप दबा के रखते हैं, लेकिन प्यार जब होता है ना तो फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार में फीलिंग्स को जताना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत आपको करेज मिले एक दिन उस स्पेशल इंसान के लिए अपना प्यार जाहिर करने के लिए। हाई, गुड इवनिंग, प्लीज़ डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर फ्रेंड रीना पुलवन फ्रॉम हर बेस्टीज रितिशा, मनीषा, लतिका एंड ऊष्णा। गॉड ब्लेस हर एंड थैंक यू अ लॉट आपको कि आप इतने प्यार से साथ रहे हैं। एंड चलिए, जितने भी सारे लोग इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपको हम ज़रूर प्यार से पैम्पर करेंगे। ऑफ कोर्स विल बी रिसीविंग योर मैसेजेस ऑन 5499-1294, क्योंकि लाइन अभी के लिए खुली नहीं है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अनलकीली आई गेस आज आप लोगों से बात नहीं हो पाएगा। लेकिन हमेशा जैसे शुरुआत में कह रहे थे कि हर प्रॉब्लम एक सोल्यूशन लेकर आता है, तो ऑफ course you have a plan B, that is to keep us keep sending your messages on 5499-1294.
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2
1: Radio Musti.

0: वन ऑफ माई फेवरेट्स, कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। कभी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि प्यार बहुत ही ऑर्डिनरी होता है, लेकिन प्यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और इसका फीलिंग्स भी, जब भी आप इसको एहसास करो ना, तो जस्ट नो दैट लव इज़ नॉट ऑर्डिनरी, और ये आपकी ज़िंदगी को इतना एनहांस करता है, इतना खूबसूरत बना के रखता है कि वी टेंड टू थिंक कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ नॉट नॉर्मल, दिस इज़ मैजिक। और इस प्यार के मैजिक को आप भी एक्सपीरियंस करें, हम तो यही चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की ओर एक बार फिर से। एंड यहाँ पर आप कहते हैं, हेलो, विशिंग हैप्पी बर्थडे टू नीस, संजना फकीरा फ्रॉम चाची प्रिया, चाचा संजीव, दीदी लीजी फ्रॉम पेरिस, और साथ में आप कहते हैं, हेलो दिव्या हंसनी ही, नेक्स्ट गाना गुज आउट फॉर हबी विशाल, युवांश, वी हैव किवांशु एंड दोमन फैमिली एंड आरजे हंसनी के लिए भी, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू, ज़रूर आपका ये पैगाम उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और साथ में जितने भी सारे लोग इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मे बी आप घर पर हैं, आराम फरमा रहे हैं, या फिर फैमिली के साथ कुछ गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं और बैकग्राउंड में हमारी आवाज़ और हमारे गाने गूंज रहे हैं, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप हर एक गीत को उतना ही एंजॉय कर रहे हैं। और कभी कभी जब आपके मैसेजेस आते हैं ना, तो हम आपके मैसेजेस को दिल के करीब और दिल में उतार लेते हैं, क्योंकि उसमें साफ आपका प्यार झलक जाता है। यहाँ पर किसी का मैसेज आया है, आपने बस हाय कहा है, हेलो जी, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप, ज़रूर थोड़ा डिटेल आप भेजेंगे तो आपका नाम भी ऐड कर पाएंगे फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग। तो चलिए अगला गाना गोज आउट टू ईच एंड एवरी वन लिसनिंग टू रेडियो मस्ती।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Musti.
3: प्यार में एक दूजे के वास्ते आपको जीना है, और वैसे सब लोग साथ मरने की कसमें खाते हैं, लेकिन अगर आपको कसम खाना है तो ये कसम खाइए कि आपको हमेशा साथ साथ रह के ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना है।

क्योंकि प्यार में तो बस उसी का, प्यार में बस वही का बसेरा है जहाँ पर आप अपना दिल और अपनी पूरी जान लगाए. वेल वेल 8:37 ऑलरेडी एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल सा गाना दिल तो पागल है मूवी से लिया गया एंड ऑफ कोर्स आशा जी की आवाज़ों में नहीं बल्कि लता जी की आवाज़ में ऑफ कोर्स ये गाना सुनने को मिल रहा है. इट्स टोटली कम्प्लीटली मैजिक.

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Musti.
3: चलिए बिखरी रोशनी जी, ये आपका गाना चल पड़ा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। और वैसे जो साथ निभाए उसको लाइफ पार्टनर कहते हैं। और आई जस्ट होप कि आप ये गाना सुने ना तो आप अपने लाइफ पार्टनर्स को ज़रूर थैंक यू कहेंगे फॉर ऑल द एफर्ट्स दे पुट इन। एंड आई जस्ट होप कि वो भी आपको थोड़ा बहुत एक छोटा सा थैंक यू, इट वर्क्स वंडर्स। और प्यार में जब भी आप अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं ना, इट रियली लुक्स वेरी स्पेशल। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि आपको सही मौके का इंतज़ार नहीं करना है। अगर आप बार बार वैलेंटाइंस का वेट करेंगे तभी जाकर आप कुछ स्पेशल करेंगे तो बात नहीं बनेगी। आपको हमेशा प्यार को सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। चलिए यहाँ पर किसी का मैसेज आया है, कहते हैं कि आई एम लिसनिंग फ्रॉम फ्लिक ऑफ लक होटल। आई एम मॉरिशस बाय बर्थ बट लिव्ड इन यूके फॉर 50 years। ओ माई गॉड। नौशाद हीरू, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। ऑरिजिनरी आप थ्रियोली से हैं और नौशाद जी आपने हमें याद किया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। एंड आप कहते हैं नाइस म्यूज़िक, वेरी लिटिल चांस इन यूके टू लिसन टू म्यूज़िक। चलिए आपको मौका मिल रहा है मॉरिशस में आकर थोड़ा सा रिलैक्स करने का और हमारे गीतों को एन्जॉय करने के लिए। आई जस्ट होप कि आप बस इन गीतों के सिलसिले को पसंद करेंगे। हाई प्लीज़ प्ले अ लवली सॉन्ग फॉर लवली सिस्टर इन लॉ नीलम एंड लवली ब्रदर इन Kunal, wishing them a happy wedding anniversary from lovely sister-in-law. बस इतना ही मैसेज आया है। कभी कभी क्या होता है, मैसेजेस गायब हो जाते हैं, तो अगर आप एक बार फिर से अपना मैसेज कंप्लीट करना चाहते हैं, यू कैन सेंड यू मैसेजेस ऑन 5499-1294 व्हाट्सएप के जरिए। अगर आप मैसेज भेजेंगे ना तो आपका पूरा मैसेज कंप्लीट आएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए वी हैव दिस ब्यूटिफुल वन डेडिकेटेड टू ईच एंड एवरी वन लिसनिंग टू अस राइट नाउ। Don't forget, Divya ka saath hai abhi se lekar ratri ke 9 baje tak in your evening lounge.

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Musti.
3: Well, friends, about to be 9 PM और चलिए इसी के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. हमारी और आपकी मुलाकात सुबह के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक. तब तक के लिए बस हमें दीजिए इजाज़त. टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय.

इवनिंग माय डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? सर्दी का मौसम, सर्दी बोले तो रोमांटिक मौसम, वेलकमिंग यू ऑल इन लेट नाइट ग्रूव्स। 3 घंटों का सफर है, सो व्हाटएवर यू माइट बी, स्टे वेल ट्यून्ड एंड इन गानों के जरिए अपने दिल को थोड़ी सी राहत पहुंचाइए, सुकून दिलाते हैं नीतू आपके साथ।

So when we talk about romantic songs, Bollywood ki romantic melodies सिर्फ गाने नहीं हैं, ये तो दिल के जज्बातों का एक खूबसूरत सफर भी होते हैं। जब रात की तन्हाई में कोई सॉफ्ट मेलोडी बजती है तो मन धीरे धीरे से शांत होने लगता है। पुराने हो नए गाने हो, रोमांटिक सॉन्ग्स दिल को एक अजीब सा सुकून देते हैं, जैसे हर लफ्ज किसी की याद लेकर आता है। और म्यूजिक का यही जादू इंसान के मूड को इंस्टेंटली फ्रेश और इमोशनल बना देता है।

कभी कुछ नोटिस किया है आपने, जब मूड थोड़ा उदास हो और अचानक कोई रोमांटिक बॉलीवुड मेलोडी सुनाई दे तो दिल हल्का सा मुस्कुराने लगता है। गिटार की सॉफ्ट ट्यून्स, फ्लूट की मधुर आवाज और प्यार भरे लिरिक्स एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर देते हैं। यही मेलोडीज स्ट्रेस को कम करती हैं और मन में पॉजिटिविटी भर देती हैं।

लीड रोमांटिक गाने हर जेनरेशन के दिल के करीब रहे हैं, बी द 60s के सोलफुल मेलोडीज या फिर आज के सूदिंग लव सॉन्ग्स। हर मेलोडी में एक इमोशनल कनेक्शन होता है। जब कोई प्यारा सा गाना हेडफोन्स में बजता है तो लगता है जैसे दुनिया की सारी टेंशन कुछ पल के लिए रुक

थैंक यू सो मच, हाँ बड़े प्यार से साथ निभा रहे हैं एंड रोमांटिक मेलोडीज का असर आप पर भी पड़ रहा है, यही तो हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे इनका असर सिर्फ दिल पर ही नहीं पूरे मूड पर पड़ता है। एक अच्छा बॉलीवुड सॉन्ग थके हुए दिन को भी खूबसूरत बना देता है। बारिश का मौसम हो, लॉन्ग ड्राइव हो या रात की चाय, फिर से चाय पे अटक गई नहीं तो, रोमांटिक म्यूजिक हर मोमेंट को सिनेमैटिक फील दे ही देता है। क्या हो?

What a lovely gana. And Bollywood के गाने जैसे भी हो, किसी भी एरा के हो, वो एकदम मस्त ही है. वैसे बॉलीवुड के रोमांटिक सॉन्ग्स में एक अजीब सी वार्म्थ होती है ना. कुमार सानू, उदित नारायण, अरिजीत, किशोर कुमार, श्रेया घोषाल, इन सब की आवाजें जब दिल तक पहुंचती हैं तो इमोशंस और गहरे हो जाते हैं. म्यूजिक इंसान को डर से काल्म करता है और प्यार की फीलिंग को कभी खूबसूरत बना देता है.

कभी कभी ना एक मेलोडी हमें पुरानी यादों में ले जाती है, किसी खास इंसान के साथ गुजारे हुए लम्हे याद आ जाते हैं। बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स की सबसे बड़ी खूबसूरती तो यही है कि ये सिर्फ एंटरटेन नहीं करते बल्कि इमोशंस को भी जिंदा कर देते हैं।

लेट नाइट ग्रूव्स में सॉफ्ट रोमांटिक मेलोडीज सुनने का मजा ही कुछ और होता है। धीमी आवाज में बजता हुआ एक प्यारा सा गाना दिल को रिलैक्स करता है और मन को सुकून दे जाता है। ऐसे गाने एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस को भी कम करने में काफी मदद करते हैं।

wherever you might be, thank you so much. काम पर होंगे, बोको हाश, आराम फरमा रहे होंगे, stay well tuned. वैसे बॉलीवुड के म्यूजिक कंपोजर्स ने हमेशा रोमांस को मेलोडीज के जरिए खूबसूरती से प्रेजेंट किए हैं. वायलिंस, पियानो, सॉफ्ट बीट्स के साथ जब रोमांटिक लिरिक्स जोड़ते हैं तो एक मैजिकल एटमोसफियर क्रिएट हो जाता है. ये गाने इंसान के मूड को रोमांटिक और सुकूनदायक पीसफुल बना देते हैं, है ना?

एक रोमांटिक मेलोडी का इफेक्ट भी कभी कभी दवा की तरह काम कर जाता है। जब दिल उदास हो और कोई सोलफुल सॉन्ग बजने लगे तो आंखों में चमक और होठों पर हल्की सी स्माइल आ ही जाती है। वाकई में म्यूजिक में हीलिंग पावर्स होती ही है।

Late Night Grooves on the Waves of Radio Musti with Neetu. Thank you so much. और बॉलीवुड के लव सॉन्ग्स सिर्फ कपल्स के लिए नहीं होते हैं दोस्त. ये तो हर उस इंसान के लिए होते हैं जो इमोशंस को महसूस करता हो. कभी कभी एक गाना तन्हाई को दोस्त बना देता है और मन को पॉजिटिविटी से भर देता है. Have you ever experienced?

रोमांटिक मेलोडीज का सबसे खूबसूरत इफेक्ट यही है कि ये इंसान को ड्रीम ही बना देता है, प्यार की दुनिया में खो जाने का मन होता है ना। गाने सुनते सुनते मन ख्यालों में खो जाता है, हर लिरिक एक कहानी बन जाता है और हर ट्यून दिल को सॉफ्टली टच कर जाती है।

पुराने बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स में जो सिंप्लिसिटी और सोल थी वो आज भी लोगों के दिल पर राज करती हैं। लता जी, रफी साहब के डुएट्स आज भी मूड को इंस्टेंटली पीसफुल बना देते हैं। उन मेलोडीज में वाकई में एहसास महसूस हो सकता है।

0: इट्स योर लास्ट आवर ऑफ लेट नाइट ग्रूव्स एंड म्यूजिक और मूड का कनेक्शन बहुत ही गहरा होता है। जब बॉलीवुड का कोई रोमांटिक ट्रैक चल रहा हो तो सराउंडिंग्स भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगती है। मौसम, हवा, रात की खामोशी, सब कुछ मेलोडी के साथ और हसीन लगती है।
1: लेट नाइट ग्रूव्स,
2: RM2, रेडियो मस्ती।

बॉलीवुड रोमांटिक मेलोडीज दिल को होप देती हैं, उम्मीद देती हैं। ये गाने हमें प्यार, इमोशंस और जिंदगी की खूबसूरती का एहसास दिलाते हैं। दैट्स व्हाई जब भी दिल हैवी लगे, एक अच्छा सा रोमांटिक सॉन्ग मूड को फ्रेश कर देता है।

अभी तो शुरुआत की थी हमने, अभी जाने का टाइम भी आ गया। यस, इशारा पा ही लिया आपने। अभी ये जो प्रोग्राम है लेट नाइट ग्रूव्स, इट्स अबाउट टू एंड। बस जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि एक प्यारी सी बॉलीवुड मेलोडी कभी कभी पूरा दिन ब्यूटीफुल बना देती है और रात को हसीन। मॉर्निंग वॉक हो या लेट नाइट रिलैक्सेशन, रोमांटिक म्यूजिक हर वक्त एक इमोशनल कंपेनियन की तरह साथ देता है। शायद इसीलिए बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। टेक केयर, स्टे वार्म एंड स्टे कनेक्टेड टू रेडियो मस्ती। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले जब दिल मिले तब गुल खिले जब गुल खिले तब दिल मिले मिले मिले मिले मिले दिल मिले

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।